ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 33 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा। हमारे सभी श्रोताओं का मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हार्दिक अभिनंदन है।

सुप्रभात की मंगल बेला में आकाशवाणी लखनऊ पर आप सुन रहे हैं नमस्कार लखनऊ। आज इस मंगलमय सुप्रभात की बेला में आपके साथ है लवि सिन्हा। ट्यून रखिए मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज। हमको ऊर्जावान और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का दिशा प्राप्त होता है मंगलमय सुप्रभात से। आइए एक बार फिर से खुद को ऊर्जावान महसूस करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के दिन का। सुबह के 6 बजने वाले हैं, ये वक्त हो रहा है देश और दुनिया के ताजा तरीन समाचारों से जुड़ने का, जिसे आप सुनते हैं हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेन प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 22 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में

0: अंधा मिला कर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आपने ट्यून इन किया है नमस्कार लखनऊ। सुबह के 6:05 पर आप सुनते हैं रोजाना कृषि चर्चा। तो आपको बता दें, आज की चर्चा हमारे किसान भाई बहनों के लिए बड़ी ही उपयोगी है। और आज हम जानते हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से बीज उत्पादन की उन्नत तकनीक विषय पर जानकारी।
3: शुभ प्रभात। बीज पौधे का वह अंग है जो परिपक्व होने पर नई पीढ़ी को जन्म देता है। यानी बीज से तात्पर्य विभिन्न फसलों के बीज या फिर बीज के समान प्रयुक्त होने वाले पौधों के उन भागों से है जो संवर्धन यानी बुआई अथवा रुपाई के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। विभिन्न फसलों एवं पौधों के बीज, फल, कंद, जड़ युक्त तना, उतक संवर्ध या फिर अन्य भाग को संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार खाद्य अनाज एवं बीज एक दूसरे से भिन्न है। खाद्य अनाज में आनुवंशिक शुद्धता एवं अंकुरण क्षमता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। बीज सामान्यतः एक निश्चित अवधि तक प्रयुक्त रहने के बाद आवश्यकता अनुसार उचित जलवायु एवं तापमान मिलने पर अंकुरित होता है। प्रत्येक स्वस्थ एवं परिपक्व बीज में जीवित पौधे का एक छोटा प्रारूप पाया जाता है जो बड़ा होकर पूर्ण पौधा बनता है या पेड़ बनता है। अधिक उपज देने वाले किस्मों के उच्च गुणवत्ता युक्त बीज के प्रयोग से उत्पादन 20% तक बढ़ता है, परंतु इतने प्रयास के बाद भी बोए जाने वाले बीजों की कुल मात्रा का लगभग 30% ही, जो कि 2008 से लेकर 2009 के बीच सर्वे किया गया था, उसमें यह तथ्य सामने आया था। यानी अधिकांशतः किसान स्वयं द्वारा पैदा किए गए बीज का प्रयोग करते रहे हैं। ऐसी दशा में काफी कुछ प्रयास किया गया सरकार के द्वारा और विभिन्न तरह की कंपनियां हमारे बीच आई जो विदेशों से भी संबंधित रहीं। उनके बीज अलग तरह के रहे, संकर प्रजाति विशेष

0: रूप से हमारे बीच आई, तो अब यह स्थिति बदलती जा रही है और साल दर साल यह बदल रही है। अच्छा बीज जरूर होना चाहिए, इसलिए आपको यह देखना है कि किसी फसल किस्म विशेष के बीजों में दूसरी फसल या खरपतवार के बीजों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। बीजों की अंकुरण क्षमता को भी परखना चाहिए। फसलों के बीज का मूल्यांकन उनकी अंकुरण क्षमता पर निर्भर करता है, इसलिए फसलों की अंकुरण क्षमता के आधार पर ही प्रति इकाई क्षेत्रफल में बीज की मात्रा निर्धारित करें। सामान्यतः परिपक्व बीज चमकीला, साफ, स्वस्थ एवं भरा हुआ होता है। बीज के आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वस्थ होने पर जीवन क्षमता, स्वस्थ पौधा उत्पन्न करने की क्षमता अच्छी होती है। अपर्याप्त पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई के अभाव, अपरिपक्व होने, बीमारियों द्वारा क्षति पहुंचाने, अधिक नमी एवं ताप पर भंडारण करने पर बीजों की जीवन क्षमता कम या फिर समाप्त हो जाती है। बीज का प्राकृतिक रंग, सुडौलता व आकृति में समानता के साथ साथ वह रोगाणुओं से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए। अगर आपने इतना सब कुछ देख लिया तो आप मान करके चलिए कि उपज अच्छी प्राप्त होगी, प्रजातीय शुद्धता बरकरार रहेगी, खरपतवार कम निकलेंगे क्योंकि बीज स्वस्थ होता है तो बढ़वार उसकी तीव्र गति से होती है। अधिक पैदावार व अधिक लाभ आपको इसके परिणाम स्वरूप मिलेगा। बीज की श्रेणियां भी होती हैं जिनको पहचानना, जानना, समझना आवश्यक होता है, जैसे कि प्रजनक सीड जिसे ब्रीडर सीड कहते हैं, आधार सीड को हम फाउंडेशन सीड कहते हैं, और सर्टिफाइड सीड जिसे हम प्रमाणित बीज कहते हैं। ये तीन तरह के बीज होते हैं जो बोए जाते हैं फसल उत्पादन के लिए। लेकिन ब्रीडर सीड जो है वह बीज जो पादप प्रजनक या जिस संस्था द्वारा पैदा किया जाता है उससे सीधा संबंधित होता है। यह आनुवंशिक रूप से 100% शुद्ध होता है। इसकी थैली पर सुनहरे पीले रंग का लेबल लगा होता है जिस पर फसल एवं किस्म के विवरण के साथ प्रजनक की सील एवं हस्ताक्षर भी होते हैं। आधार बीज प्रजनक बीज से उत्पन्न किया हुआ रहता है। इसका उत्पादन इस प्रकार किया जाता है कि विशेष मानकों के अनुसार इससे आनुवंशिक गुण और शुद्धता बनी रहे। इसके थैलों पर सफेद रंग का टैग लगा होता है जिस पर संस्था के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी होते हैं। आधार बीज की भी दो श्रेणी होती है, आधार बीज एक एवं आधार बीज दो। आधार बीज एक से आधार बीज दो उत्पादित किया जा सकता है जिनके मानक समान होते हैं। आधार बीज दो का प्रयोग पुनः आधार बीज बनाने में आप नहीं कर सकते हैं। प्रमाणित बीज जो होता है, सर्टिफाइड बीज, बाजार में जो मिल रहे हैं बहुतायत से वही होते हैं। यह आधार बीज की संतति होता है जो बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार प्रमाणित किया जाता है। इनके थैलों पर नीला टैग लगा होता है। बीज की कमी होने पर प्रमाणीकरण संस्था स्वपरागित फसलों में प्रमाणित बीज से प्रमाणित बीज पैदा करने की अनुमति प्रदान कर सकती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा में बीज उत्पादन की उन्नत तकनीक विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। और श्रोता, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की इस जानकारी से लाभ अवश्य हुआ होगा और आप इसका फायदा जरूर उठाएंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ पर नमस्कार लखनऊ, और ये समय होता है सुविचारों के संग विचार मंथन का। आइए आज सुनते हैं न्यायप्रिय शनि भगवान विषय पर शिवा राकेश के स्वर में सुविचार।
2: हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा विभिन्न धर्मावलंबियों द्वारा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सप्ताह में 7 दिन होते हैं और ये 7ों दिन अलग अलग देवी देवताओं के दिन विशेष माने जाते हैं। जैसे सोमवार को महादेव, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, गुरुवार को विष्णु जी, शुक्रवार को माँ संतोषी और शनिवार को शनिदेव महाराज का दिन माना गया है। आज हम शनिदेव महाराज, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, उन्हीं की बात करेंगे। भगवान सूर्य और माता छाया के सुपुत्र शनि देव को न्याय का देवता और कर्मफल दाता भी कहा जाता है। वो अपने भक्तों को उनके कर्मों के अनुरूप फल देते हैं। वो शनि ग्रह के अधिपति भी हैं और उनको मकर और कुंभ राशि का स्वामी भी कहा जाता है। शनिवार का दिन शनिदेव महाराज को पूर्ण रूप से समर्पित है। कहा जाता है कि शनिदेव का वर्ण नीला और काला है। वो नीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और गिद्ध और कौआ

0: उनके वाहन हैं। उनके हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल और वरमुद्रा है। शनिदेव व्यक्ति को उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। अच्छे कर्म करने वालों पर उनकी कृपा दृष्टि और बुरे कर्म करने वालों को प्रभु दंड देते हैं। भक्त शनिवार को संध्या के समय पीपल वृक्ष के नीचे सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम नीलांजम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चराय जैसे मंत्रों का निरंतर जब भी किया करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने और जल चढ़ाने तथा जरूरतमंदों को दान देने से भी शनि भगवान प्रसन्न होते हैं। शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। वे व्यक्ति को अनुशासन और उसके कर्म के अनुरूप सही मार्ग पर लाते हैं। शनि देव को न्याय का देवता स्वयं भगवान शिव ने बनाया था। भगवान शिव ने ही उन्हें तीनों लोकों का न्यायाधिपति नियुक्त किया था, जहां वे बिना किसी भेदभाव के अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का कठोर फल प्रदान करते हैं। फिर चाहे वो मानव हो या देवता, असुर हो या फिर गंधर्व, सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही वो निष्पक्ष फल देते हैं। इसके पीछे की सही पौराणिक मान्यता ये है कि शनि देव ने कठोर तपस्या करके ये शक्ति प्राप्त की कि वो संसार के हर प्राणी को न्याय दिलाएं। इसके अलावा शनि देव को उनकी न्यायप्रियता के लिए मृत्यु के देवता यमराज से भी सम्मान मिला। ये भी कहा जाता है कि जब ज्येष्ठ अमावस्या शनिवार को शनि देव का जन्म हुआ, उस समय उनका वर्ण बहुत काला था। पुत्र का ये वर्ण देखकर उनके पिता सूर्यदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। इसके बाद उन्होंने शनिदेव की माता छाया से कहा कि वो उनके पुत्र हो ही नहीं सकते। अपनी माता का अपने पिता द्वारा यह अपमान देखकर शनिदेव को बड़ा आघात पहुंचा। शनिदेव ने माता के अपमान का बदला लेने के लिए और सूर्यदेव से अधिक शक्ति प्राप्ति के लिए महादेव की तपस्या की और अन्य जल त्याग दिए। शनिदेव की भक्ति से महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर उनसे वर मांगने को कहा। तब शनिदेव ने कहा कि मुझे कोई ऐसी शक्ति मिले जो मेरे पिता से भी श्रेष्ठ हो और वो शक्ति तीनों लोकों में पूजनीय हो। तब महादेव ने शनिदेव को नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान के साथ साथ तीनों लोकों का दंडाधिकारी भी नियुक्त किया। महादेव ने शनिदेव से कहा कि तुम मानव, देवता, असुर सभी के न्यायाधीश होगे। इसीलिए शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शनि ग्रह को सबसे धीमा ग्रह माना जाता है। यही वो समय होता है जब व्यक्ति जीवन के सबसे जटिल संघर्षों का अनुभव करता है और उस समय ये कहा जाता है कि उसका शनि दोष है या उसकी साढ़े साती या ढैया चल रही है। परंतु वास्तविकता ये है कि ये धीमी गति से चलने वाला ग्रह ही हमारे कर्म का ग्रह है। जो व्यक्ति ईमानदारी से सच के मार्ग पर चलता है, उन्हें शनि देव का आशीष सदैव प्राप्त होता है। उसका जीवन सुख समृद्धि और आनंद से युक्त व्यतीत होता है। वहीं यदि व्यक्ति गलत कर्म करके अपना जीवन यापन करता है, उस पर शनि देव की कृपा दृष्टि कभी नहीं होती। कठोर परिश्रम के बावजूद उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। शनि देव वृद्धावस्था, श्रमिकों एवं निरीह जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में वृद्धजन, माथत एवं पशु पक्षी एवं समस्त जीव जगत के कल्याण एवं सम्मान हेतु उन्मुख हों, जिससे शनि हमारे सत्कर्मों के विधाता बने, न कि मानव जीवन के दंडनायक। इस प्रकार कर्मों के माध्यम से शनि देव की पूजा करने से उनका बड़ा आशीष मिलता है। यही कहा जाएगा कि जो लोग धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, उनको भगवान शनिदेव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, वरन अपने कर्मों में संतुलन, न्याय और सकारात्मकता लाने की आवश्यकता है। कोई दैवीय शक्ति हमारा बुरा नहीं चाहती, बल्कि हमें कर्मों के विधान से मजबूत बनाकर जीवन रूपी नैया को आनंद सागर तक पहुंचाने की चेष्टा करती है। इस प्रकार शनिदेव की पूजा करने से उनका आशीष मिलता है। जो लोग निस्वार्थ भाव से धर्म और न्याय के पथ पर चलते हैं, उन पर शनिदेव महाराज की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है और वो हमेशा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। जीवन सफल और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है।
1: न्यायप्रिय शनि भगवान, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे शिवा राकेश के स्वर में उनका वचन। सुविचार के बाद अब आकाशवाणी लखनऊ के साथ आपको हम सुनवा रहे हैं भक्ति और संगीत का संगम कार्यक्रम आराधना में।

कहते हैं कि जब हम उम्मीद और आस की पूर्ति और अपने समस्त कष्टों के निवारण के लिए ममता मई माता के चरणों में जाते हैं या फिर करते हैं प्रभु की आराधना, तो हमें हमारे लोभ मोह और अहंकार का त्याग कर प्रभु हमें अपनाने की प्रेरणा हमेशा देते हैं।

दीपक, फूल और मिष्ठान का भोग सिर्फ पूजन कर्म कांड के प्रतीत मात्र है, जिसमें हमें शक्ति मिलती है कि हम दीपक की भांति प्रकाशवान, फूलों की तरह मधुर व पवित्र विचारों को फैला सके और मिठास का वातावरण तैयार कर सके।

हमारा शरीर तो बस नश्वर है, सब मिथ्या है, सच है तो बस वो श्याम का नाम। और इसी श्याम के नाम को जब हम गुणगान करते हैं तो हमें ऐसे ही भक्ति रस की प्राप्ति होती है।

शिक्षा के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए हमें जैसे परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, उसी प्रकार जीवन के तमाम संघर्ष हमारे लिए मददगार होते हैं, जिसके लिए बस धैर्य के साथ पे हम ईश्वर के साथ जुड़ते रहें, उनका गुणगान करते रहें, उनके आदर्शों पर, उनके बताए मार्ग पर चलते रहें।

इन्हीं भक्ति गीतों के साथ ही अब समापन करते हैं आज की आराधना का। सभी का जीवन स्वस्थ और मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ अब संपन्न करते हैं आराधना।

आप सुन रहे हैं नमस्कार लखनऊ, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। सुबह के 6:43 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है आज के श्री रामचरितमानस गान की प्रस्तुति, भाग संख्या 103।

भारद्वाज आश्रम में विश्राम करने के पश्चात श्री राम सीता तथा लक्ष्मण समेत यमुना पार करके गहन वन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सुंदर वनों, सरोवर तथा पर्वतों की निराली छटा देखते हुए श्री राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे। वन, पर्वत श्रृंखलाओं तथा पवित्र जलाशयों से घिरा ऋषिवर का निवास स्थान अत्यंत रमणीक है। सरोवरों में कमल तथा वन वृक्षों पर पुष्पों की भरमार है। ऋषिवर ने श्री राम के आगमन का समाचार सुन उनकी अगवानी की, उन्हें दंडवत प्रणाम निवेदित कर श्री राम आदि ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आगंतुकों की छवि देख मुनिवर के नेत्र शीतल हुए। मधुर कंद मूल और फलों का आहार प्रस्तुत करके अतिथियों के विश्राम स्थल की व्यवस्था की गई। श्री राम ने विनयपूर्वक हाथ जोड़ त्रिकालदर्शी वाल्मीकि ऋषि से अपने वनवास की कथा सुनाई। बोले, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही तथा धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर आपके दर्शन, ये सब मेरे पुण्यों का फल है। आपके चरण स्पर्श करके आज हमारे सभी पुण्य सफल हो गए।

0: मासस्य द्वित्रिदिनाङ्कयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। सीएसके इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1 धावनांकस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन एलएसजी इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलं 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तम क्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: मीडिया वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ। आकाशवाणी लखनऊ पर चल रहा है नमस्कार लखनऊ। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा और आज का विषय है लीची के स्वास्थ्य लाभ। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जो गर्मियों के आरंभ में ही अपनी खुशबू, सुगंध, मिठास और ताजगी से सभी का मन मोह लेता है। इसका रंग गुलाबी होता है, स्वाद रसभरा और ठंडक देने वाला होता है। हम बात कर रहे हैं लीची की। लीची न केवल स्वाद का खजाना है बल्कि इसमें छुपे हैं कई ऐसे गुण जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। गर्मियों की धूप में जब शरीर थक जाता है तब लीची का ठंडा रस और रसीला स्वाद हमारे तन और मन दोनों को तरोताजा कर देता है। इसकी मिठास प्राकृतिक होती है और इसमें उपस्थित जल तत्व हमारे शरीर की नमी को बनाए रखने में मदद करते हैं। लीची को अक्सर हम केवल एक मौसमी फल की तरह देखते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इसके पोषक गुण इसे सुपर फूड की श्रेणी में ला सकते हैं। लीची में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। जब गर्मियों में शरीर थकावट और लू का शिकार होने लगता है तब ऐसे में विटामिन सी हमारी रक्षा करता है। ये न केवल संक्रमण से बचाता है बल्कि हमारी त्वचा को भी चमकदार और युवा बनाए रखने में सहायता करता है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कॉपर, फॉस्फोरस और कई प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं जो हृदय, मस्तिष्क और लीवर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। लीची एक प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मात्रा प्राकृतिक रूप से संतुलित होती है जिससे ये तुरंत ऊर्जा देता है। गर्मी के मौसम में जब शरीर सुस्त पड़ जाता है तब कुछ लीचियां खाने से शरीर को तुरंत ताजगी का एहसास होता है। खासकर बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है जो स्वाद में तो मीठा है ही लेकिन साथ में ऊर्जा और जल की पूर्ति भी करता है। शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की समस्या गर्मियों में आम होती है। लीची इसमें विशेष रूप से सहायक होती है क्योंकि ये लगभग 80% पानी से भरपूर होती है। इसका सेवन शरीर में तरलता बनाए रखता है और ये त्वचा की कोशिकाओं को भी हाइड्रेट करता है। यही कारण है कि लीची खाने से त्वचा मुलायम, चमकदार और ताजगी भरी बनी रहती है। लीची का प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर भी सकारात्मक होता है। इसमें उपस्थित फाइबर मल त्याग को आसान बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावा ये गैस और अपच जैसी परेशानियों को भी कम करने में मददगार है। अगर भोजन के बाद लीची खाई जाए तो ये पाचन में सहायता करती है और पेट को हल्का बनाए रखती है। कुछ वर्षों में हमने देखा है कि लीची को लेकर कई भ्रम फैले हैं, खासकर छोटे बच्चों में इसके अधिक सेवन से जुड़ी कुछ घटनाएं चर्चा में रहीं। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि कोई भी चीज अगर संतुलन में ना ली जाए तो वो नुकसान पहुंचा सकती है। लीची में प्राकृतिक शुगर अधिक मात्रा में होती है इसलिए इसे खाली पेट या बहुत अधिक मात्रा में खाने से शरीर में ग्लूकोज असंतुलन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि लीची हानिकारक है बल्कि ये है कि इसे संतुलन और सही समय पर लेना चाहिए। जैसे कि दिन के समय भोजन के बाद अगर आप वजन घटाने की सोच रहे हैं तो भी लीची एक अच्छा विकल्प हो सकती है, बशर्ते इसे सीमित मात्रा में लिया जाए। इसमें जीरो फैट और कम कैलोरी होती है और यदि ये अन्य फलों और हल्के नाश्ते के साथ खाई जाए तो ये एक हेल्दी विकल्प बन सकती है।

0: इसे स्मूदीज, शरबत या सलाद के रूप में भी लिया जा सकता है, जिससे इसका स्वाद और पोषण दोनों बना रहता है। भारत में खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लीची की खेती बड़े पैमाने पर होती है। मुजफ्फरपुर की लीची तो GI टैग भी पा चुकी है और उसकी मिठास के चर्चे देश विदेश में हैं। इसका मतलब ये भी है कि ये फल न केवल पोषण और स्वाद का स्रोत है, बल्कि हमारे किसानों की मेहनत और भारत की कृषि विविधता का प्रतीक भी है। श्रोताओं, जब अगली बार आप लीची खाएं, तो उसे केवल स्वाद का फल न समझें, उसमें छुपे पोषण, ताजगी और स्वास्थ्य के गुणों को भी पहचानें। ये फल हमें प्रकृति की तरफ से गर्मियों में मिला एक उपहार है, जो हमारे शरीर को ठंडक, ऊर्जा और सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन हमेशा याद रखें, हर अच्छी चीज की तरह इसका भी सेवन संतुलन के साथ करें। ताजगी से भरपूर फल खाएं और गर्मियों की इस मिठास को स्वास्थ्य के साथ बांटें। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: लीची के स्वास्थ्य लाभ विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। अब आज की स्वास्थ्य चर्चा यहीं पर संपन्न होती है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी लखनऊ है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी लखनऊ से आज प्रसारित होने वाली इंद्रधनुषी कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज रात्रि 9:30 से आप सुन सकेंगे राष्ट्रीय पत्रिका चित्र भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण सुनिए आज रात्रि 10:00 से। ये दोनों ही प्रसारण हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, जिसका रिले प्रसारण आप सुन सकेंगे आकाशवाणी लखनऊ केंद्र से। आज हिंदी कार्यक्रम में रात्रि 8:00 से सुनिए वार्ता समय और संवेदना के रचनाकार पद्म नारायण राय। प्रस्तुति है सुरेंद्र राजेश्वरी की। जिले की हलचल में आज प्रातः 9:15 से सुनिए बिजनौर और श्रावस्ती जिलों के हालचाल। उर्दू कार्यक्रम में आज आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश में नशरे किया जाएगा कैंपस डायरी इरम मेडिकल कॉलेज। शीर्षक है डॉक्टर सना, शफक हुसना और शाबिया तारिक। आज की विविधा में प्रातः 7:10 से सुनिए विषय शांति और सह अस्तित्व की अवधारणा। प्रातः 7:31 से आप जुड़ सकेंगे प्रोग्राम आज सुबह की मनोरंजक और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति से। ग्रामीण बहनें सुनेंगी आज घर आंगन में 1:15 से डेंगू कारण लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर चमन लाल रावत से भेंट वार्ता। भेंट करता है प्रतिभा त्रिपाठी। आज दोपहर 2:30 से विज्ञान और किसान कार्यक्रम में भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी हरा चारा के लिए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक। डॉक्टर केशव कुमार से की गई ये भेंट वार्ता आप सुन सकेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 5:00 से दैनिक कार्यक्रम के प्रसारण के अंतर्गत युवा साथी आज शाम 5:10 से सुनेंगे स्वास्थ्य जागरूकता में युवाओं की भूमिका, डेंगू से बचाव की दिशा में कदम और सोशल मीडिया के दौर में जिन जी की भूमिका। नई उड़ान के श्रोता शाम 5:45 से सुन सकेंगे उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन पर मिशन निदेशक श्री पुलकित खरे एवं प्रशिक्षार्थियों से बातचीत। ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा सुशील सीतापुरी की ये वार्ता आप सुन सकेंगे कार्यक्रम लोकायतन में आज शाम 6:30 से। खेती किसानी में आज शाम 6:50 से सुनिए डॉक्टर संदीप कुमार से जायद सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य विषय पर भेंट वार्ता। भेंट करते हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय। विज्ञान जगत में आज शाम 7:31 से प्रसारित होगा शिवा राकेश से विज्ञान समाचार और पूर्व वैज्ञानिक बीरबल साहनी विज्ञान संस्थान लखनऊ के डॉक्टर CM नौटियाल से की गई भेंट वार्ता। 21वीं सदी का ईंधन परमाणु सपनों को पंख लगाएगा थोरियम। भेंट करता है प्रवीण कुमार। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज प्रातः 9:50 से और दोपहर

शहर लोकमाथरी में 2:45 से आप सुन सकेंगे अलका चतुर्वेदी के गाए अवधी लोकगीत। श्रोताओं, ये सभी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर और DTH पर भी। इसके साथ ही साथ आपके लिए कुछ कार्यक्रम यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी उपलब्ध हैं। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त रूपरेखा।

मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 7:10 हुए हैं। कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ में अगला कार्यक्रम अगला समय होता है विविधा का। आज का विषय है शांति और सह अस्तित्व की अवधारणा।

शांति ओम शांति। जब हम ऐसा दिल से कहते हैं तो दोस्तों निश्चित ही उसका प्रभाव हमारे दिलो दिमाग पर भी पड़ेगा। जब इसी प्रभाव के साथ हम जीवन यापन करते हैं तो हम सुख की अनुभूति करते हैं। हम जी हाँ, हम इस हम की भावना में हम सुखी होते हैं। मानते हैं ना आप ऐसा? तो चलिए थोड़ा विचार करते हैं हम आज के विषय पर, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की अवधारणा पर। यूं तो बातों में कुछ खास बात कह देना सरल लगता है, लेकिन जब उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं और साथ ही उसको हम अपने आसपास के लोगों के साथ फैलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हाँ वो अच्छी भावना सब तक पहुंचे, तो थोड़ा प्रयास करना होता है। जी हाँ, जल थल और गगन, चाहे जहाँ भी बात करें तो हम हमेशा बात करते हैं शांति की और सह अस्तित्व की। बात चाहे भौगोलिक हो या हो राष्ट्रीय या हो अंतर्राष्ट्रीय, और चाहे देश देशांतर की बात हो या हो घर पड़ोस की या मोहल्ले की, जब हम बोली भाषा खान पान रहना अपने रहन सहन और विचारधारा जीवन शैली धार्मिक मान्यता और विभिन्न व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो उनके साथ अपने और दूसरों के अस्तित्व को सामंजस्य बिठाने में थोड़ी कठिनाई अवश्य आती है। इसीलिए तमाम तरह की अशांति भी कई बार पैदा हो सकती है और पैदा होती भी है, जिसे स्वाभाविक कहा जा सकता है। किंतु जब सबको एक दूसरे के साथ रहने की मजबूरी हो तो भी, ना हो तो भी, जब हमेशा हर जगह जगह बेवजह हम अपनी मोनोपोली तो नहीं चला सकते, अपने ही नियमों को सब पर तो नहीं थोप सकते, सबको सम्मान सबको सहयोग और अधिकार की आवश्यकता होती है, जो सभी का मौलिक अधिकार भी है। फिर हमें सामंजस्य बिठाने के लिए समान भाव और समान रूप से नियम और कानून बनाने पड़ते हैं और उनका पालन भी करना पड़ता है।

और बात जब इसके वैश्विक स्तर की हो, तब शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत में विभिन्न विचारधाराओं, धर्मों, संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच मतभेदों के बावजूद सद्भाव, आपसी सम्मान और सहयोग के साथ एक साथ रहना जरूरी होता है। किसी समस्या के लिए हिंसा के बिना संघर्षों को सुलझाने, सहिष्णुता और समानता के आधार पर विश्व में शांति, विकास और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का एक वैचारिक सिद्धांत है जिसे हमें अपनाना होता है। ये मूलभूत सिद्धांत दूसरों की संप्रभुता का सम्मान करने, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने और पारस्परिक लाभ पर आधारित होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की विदेश नीति में इसे सन 1994 में क्षमा कीजिएगा सन 1954 में पंचशील समझौते के माध्यम से अपनाया गया, जो कई देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की नींव है। जियो और जीने दो, यानी कि लिव एंड लेट लिव, ये अवधारणा केवल कोरा दर्शन नहीं बल्कि दया, करुणा और सहिष्णुता पर आधारित एक व्यवहारिक जीवन दर्शन है। वैश्विक स्तर पर शीत युद्ध के दौरान ये समाजवादी और पूंजीवादी गुटों के बीच संघर्ष को रोकने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। आज ये विविधताओं से भरी दुनिया में संघर्षों को कम करने और सतत विकास के लिए आवश्यक है। अगर हम अपने के साथ दूसरे के प्रति सद्व्यवहार अपना सकें, तो निसंदेह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की धारणा शाश्वत बनी रहेगी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। आज का विषय था शांति और सह अस्तित्व की अवधारणा। मीडिया वेव की मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अगला प्रसारण हमारे गोरखपुर केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ

0: देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। राष्ट्रहित की भावना के साथ बिजली और ईंधन की बचत का किया आह्वान। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के एकाना स्टेडियम में हुए आईपीएल मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और आवास की चाबियां भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्ष में तेजी से हुए विकास के चलते उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूती देने का आह्वान किया।
3: ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया और गोरधोइया नाला परियोजना की प्रगति जानने के बाद सड़क परियोजना के चौड़ीकरण का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
4: स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस बुरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी CBT माध्यम से होगी।
5: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने थोड़ी देर एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
2: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
6: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जाम

0: एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
1: उधर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से हैं। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपए प्रति लीटर हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहां कहीं देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीश की कारपोलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशुहानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसको ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर कल से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। बांदा जिले में केन नदी में कल नहाने के दौरान 2 किशोर सहित 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। एक किशोर का शव नदी से तत्काल निकाल लिया गया, जबकि अन्य 2 शव रेस्क्यू अभियान के बाद बरामद किए गए। आईपीएल में कल लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ईकाना स्टेडियम में हुए मुकाबले को लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत लिया है। देर रात तक चले मैच में लखनऊ ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ की टीम को जीत के लिए 188 रन का लक्ष्य दिया, जिसे लखनऊ ने 3 विकेट खोकर मात्र 16.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। लखनऊ की ओर से मिशेल मार्श ने 38 गेंदों में 90 रन की शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच घोषित हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। राष्ट्रहित की भावना के साथ बिजली और ईंधन की बचत का किया आह्वान। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपने पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में हुए आईपीएल मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से

0: हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं नमस्कार लखनऊ। और नमस्कार लखनऊ में अब अगली पेशकश है कार्यक्रम आज सुबह की।

0: और आज सुबह कार्यक्रम लेकर के आ गए हैं आपके दो दोस्त। मैं हूँ आपके साथ लवी सिन्हा, स्वीकार करें हमारा
1: नमस्कार। जी हाँ,
0: जी।
1: और मैं भी हूँ आपके साथ, लवी के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा पांडे।
0: जी हाँ, और नमस्कार। देखिए, आपने कह दिया तो हमारा साथ, आपका साथ एक साथ जुड़ गया, हमारे सभी दोस्तों तक पहुंच गया वो प्यार भरा सलाम, नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत, है ना शिखा?
1: जी बिल्कुल सही कहा। और जब हम लोग हों और हमारे जितने भी श्रोता हमारे साथ हों तो क्या खास बात है। जी हाँ, आज बहुत सी खास बात है आपके साथ करने के लिए, और साथ ही साथ आप एंजॉय करेंगे एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने भी।
0: जी हाँ, और गाने हम शुरू करें, गीत हम शुरू करें, उससे पहले एक छोटा सा सुविचार जरूर होना चाहिए। ये सुविचार है कि अगर शब्दों में हम मिठास भरे रिश्तों को जोड़ लेते हैं, और मिठास भरे रिश्ते के साथ अगर हम ये उदाहरण लें कि जैसे मिट्टी का गीलापन पेड़ों की जड़ों को जकड़ कर रखता है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: ठीक ऐसे ही हमारे रिश्ते हैं, वो भी मिठास से, खूबसूरती से बनते और बढ़ते चले जाते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा लवी आपने। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये हमारे जीवन की नींव होते हैं। अगर रिश्ते हैं तो हमको लगता है कि हम हैं, तो जितना प्यार और मिठास आप रिश्तों में भरते जाएंगे ना, वो एक नींव का काम करेंगे।
2: हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

श्रोताओं, प्यारा सा गीत जो अभी आप सुन रहे हैं है फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से, जिसे अपनी आवाज दी है रफी जी ने और आशा जी ने, और ये गाना बेस्ड है रात केदार पर। थाट कल्याण है, जाति औड़ो शाड़व है, इसमें शुद्ध और तीव्र मध्यम लगते हैं, ऋषभ और गंधार का प्रयोग विशेष

0: मिलेगा।
1: जी हाँ बिल्कुल शिखा, देखिए हमें एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए, है ना। कभी कहते हैं रिश्तों की शुरुआत रिश्तों की मिठास, और रिश्तों का जो खास सौगात है वो तभी बढ़ता है जब हम मिलना जुलना जारी रखते हैं, ना।
2: जी बिल्कुल सही कहा, और ये बात हमारे श्रोताओं के लिए भी है कि आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे तो ये जो प्यार और ये एहसास आपके साथ है ये बढ़ता ही जाएगा।
1: जी बिल्कुल, और देखिए एहसास बढ़ेगा साथ ही साथ बात बढ़ेगी, और आज के दिन की कुछ खास बातें भी जो हम लेकर के आए ना वो भी हम जरूर अपने श्रोताओं तक पहुंचाएंगे, और आज के दिवस में कौन से दिवस महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि आज यानी कि 16 मई को सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है, और दिन बात करें 1875 में आज ही के दिन सिक्किम राजतंत्र से भारत का 22वां राज्य बना था।
2: हाँ, और इस दिन पूरे राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और आधिकारिक समारोह भी आयोजित किए जाते हैं।
1: जी, और इसके साथ ही शिखा आपको बता दें कि सिक्किम का जो राज्य पशु है वो क्या है, लाल पांडा।
2: जी बिल्कुल, लाल पांडा राज्य पशु है।
1: जी, और हरा शाही कबूतर ये राज्य पक्षी है, और खंग चेनजोंगा ये यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है ना।
2: जी, और कितनी अच्छी अच्छी बातें लवी बता रही हूँ, और जितने भी हमारे श्रोता हैं वो सुनकर खुश हो रहे होंगे कि भाई बैठे बैठाए इतनी अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिलती हैं।
1: जी देखिए, जानकारियां तो और भी हैं, दिवस और भी है, तो दिवस और कौन सा होता है आज?
2: तो आज होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। हर साल 16 मई यानी आज ही के दिन ये दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1960 में भौतिक विज्ञानी थियोडोर मैमन द्वारा पहले सफल लेजर ऑपरेशन की याद में विज्ञान, कला, संस्कृति और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका को उजागर करने के लिए समर्पित है।
1: जी हाँ, और आपको ये भी बता दें कि ये जानकारी सिर्फ लेजर के इतिहास से कुछ अंश दिए गए हैं, लेकिन ध्यान दें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस केवल लेजर और विज्ञान तक ही सीमित नहीं है, इसमें कला, संस्कृति, मनोरंजन यानी कि हर क्षेत्र को शामिल किया जाता है।
2: बिल्कुल,
1: है ना? अच्छा, इसके अलावा आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी है ना शिखा?
2: जी,
1: डेंगू में अचानक तेज बुखार होता है, बुखार की शुरुआत होती है तो गंभीर सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द और मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और चकत्ते हो जाते हैं, ना।
2: जी, और भारत में हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस यानी आज के दिन डेंगू दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित यह दिवस डेंगू के प्रति जागरूकता फैलाने, बचाव के उपायों को बढ़ावा देने और मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है।
1: जी, तो हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, सावधान रहना है मच्छरों से, और बच करके रहना है, सावधानी बरतना है ना
2: जी।
1: इसके अलावा शिखा, हम और कोई और जानकारी हमें लग रहा है कि आप बताना चाह रहे
2: हैं। जी बिल्कुल, बताना चाह रहे थे, उसके अलावा ये बताना चाह रहे थे कि जैसे डेंगू से बचाव के लिए, मच्छरों से बचाव के लिए हम बाहर से चीजें खरीदते हैं, स्प्रे लेते हैं, कई तरीके की चीजें

0: यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि कुछ चीजें ऐसे हैं जो घर में भी आप यूज करके, जैसे नीम की पत्तियों का छिड़काव करके उसका जो ऑयल होता है उसको भी लगा सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप घर में भी करके अच्छी खासी चीजें कर सकते हैं
1: जी।
0: और आपको एक और दिवस बता दें कि आज है शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
1: जी।
0: हर साल 16 मई को ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2017 को मान्यता दी थी और पहला दिवस 16 मई 2018 को मनाया गया था। तो 16 मई 2018 को सबसे पहले ये दिवस मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विविधता के बावजूद एकजुट होकर शांति, सहिष्णुता, समावेश और सद्भाव के साथ रहने को बढ़ावा देना है
1: जी। और देखिए, बढ़ावा देने की बात है तो हम यहाँ पर शांति के साथ ही साथ मिठास और गीत की बात कर रहे हैं, तो चलिए गीत को भी ले चलते हैं, आप तक पहुँचाते हैं।

श्रोताओं, प्यारा सा गीत जो अभी आप सुन रहे हैं है फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से, जो बेस्ड है राग मियां मल्हार पर। थाट काफी है, जाति शाड़व शाड़व है, वर्जित स्वर धैवत है या राग गंभीर शांत वियोग व करुण रस से परिपूर्ण है।

0: शिखा, ये जो दास्ता है ना हमारी और आपकी और साथ ही हमारे सभी साथियों की जो सुनने वाले हैं आकाशवाणी लखनऊ पर कार्यक्रम आज सुबह में, ये दास्ता कार्यक्रम की बढ़ती रहेगी और बातें होती रहेंगी। तो आगे हमारे बढ़ाएं, कुछ खास जानकारी जो लेकर के आए हैं आज उसको भी सुनवा दें अपने अपने सभी दोस्तों को, सभी श्रोताओं को।
1: जी बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे।
0: जी, हम सबको पता है दोस्तों कि हम भारतीय नागरिकों की जनगणना एक बार फिर से शुरू होनी है और इस बार हम डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके स्व जनगणना भी कर सकते हैं। तो चलिए इस बात को अच्छी तरीके से हम जानते हैं आज एक बार फिर से। जनगणना 2026 डेटा विकास की दिशा, इस विषय पर जनगणना पर्यवेक्षक अजीत प्रताप सिंह से बातचीत कर रहे हैं रमनप्रीत सिंह।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान पर, जो देश की विकास योजनाओं और नीतियों की आधारशिला मानी जाती है। इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजीत प्रताप सिंह जी, जो कि जनपद बाराबंकी में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, परंतु जनगणना जैसे इस महत्वपूर्ण विषय पर उनको पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। तो आइए, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, और आकाशवाणी लखनऊ के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर जनगणना करने की आवश्यकता क्या है और ये किस लिए इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
3: देखिए, किसी भी देश की जो सरकार है या जनता है, तो उसके बारे में जो योजना

0: योजनाएं बनती हैं और किसको किस चीज की आवश्यकता है, इसके लिए सबको पता होना चाहिए कि एक परिवार है या देश है तो कितनी आबादी वहाँ पे है, क्या संसाधन है वहाँ पे हैं और किस तरह के वहाँ पे लोग रहते हैं और क्या क्या उनको चाहिए और क्या कमियां उनके पास में और कौन चीज उपलब्ध है, तो इसकी गणना के लिए जनगणना का ये कॉन्सेप्ट लाया गया है।
1: मतलब देश के विकास के लिए जनगणना आवश्यक
0: जी जी।
1: आप हमारे श्रोताओं को अजीत जी ये बताइए कि जनगणना 2027 के कितने चरण हैं और ये कब से कब तक चलने वाले हैं?
0: देखिए, जो जनगणना 2027 है इसके मुख्यतः दो चरण हैं। पहला चरण हमारा शुरू हो गया है और ये 7 मई से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो मकान गणना होनी है 22 मई से 22 जून तक, उसके पहले एक अवसर दिया गया है, एक व्यवस्था की गई है कि सभी लोग जो परिवार के लोग हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मकानों की गणना स्वगणना के माध्यम से कर सकता है। तो वो गणना खुद करना है, उसको एंड्रॉयड फोन होना चाहिए या स्मार्टफोन होना चाहिए। उसमें आप जब पूछेंगे गूगल से कि स्वगणना करना है तो अपने आप बड़े सामान्य ढंग से वो दे देगा।
1: तो वेबसाइट पे जाना है,
0: वेबसाइट का नाम है se.census.gov.in, इस पे लॉगिन करेंगे तो सब कुछ खुल के आ जाएगा।
1: ठीक है।
0: और अगर बहुत जानकार कोई नहीं है, सामान्य जनता है, तो केवल इसे गूगल पे या क्रोम पे जाके पूछ ले कि मुझे स्वगणना करना है कैसे करें, तो तुरंत खुल के आ जाएगा और डिटेल बता देगा।
1: ठीक है, मतलब इसके लिए आपके पास स्मार्टफोन होना।
0: हाँ, हाँ, स्मार्टफोन होना ये पहली शर्त।
1: तो अगर जनगणना 2027 में आपको भाग लेना है तो सबसे पहले आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, यानी स्मार्टफोन जरूरी है। अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया, मकान गणना
0: जी,
1: इसी को स्वगणना भी कहते हैं।
0: नहीं, देखिए, जो पूरी जनगणना 2027 है इसके दो चरण हैं
1: जी।
0: पहले चरण में हमें मकानों की गणना करना है
1: जी,
0: और मकानों की गणना तो प्रगणक करेंगे
1: जी जी,
0: जो प्रगणक के पॉइंट है उस क्षेत्र के, एक निश्चित क्षेत्र होगा उसके प्रगणक करेंगे आके 22 मई से 22 जून तक। लेकिन उसके पहले एक व्यवस्था दी गई है जनगणना में पहली बार, क्योंकि ये डिजिटल जनगणना है और ये पेपरलेस है, पहली बार की गई है, तो इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है लोगों को कि आप अपने मकानों की गणना का स्वगणना कर सकते हैं।
1: इस स्वगणना के बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए
0: जी। ऐसा मैंने बताया कि स्मार्टफोन एक जरूरी है इसके लिए, ये उस परिवार के व्यक्ति का भी हो सकता है, वो किसी से मांग सकता है, दूसरे के फोन से भी कर सकता है, लेकिन एक मोबाइल नंबर, परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर जरूरी है इसकी स्वगणना के लिए। क्योंकि जब इसमें लॉगिन किया जाएगा तो एक ओटीपी आएगी, ओटीपी उसी नंबर पे आएगी जो मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा, तो उस ओटीपी से फिर आगे के चरण खुलते जाएंगे इसमें, और उसमें धीरे धीरे करके वो जो भी सूचनाएं मांगेंगे, तो परिवार का जो मुखिया होगा उसका पहला नाम होगा, नाम पड़ेगा, और उसके बाद में फिर जो भी 34 प्रश्न इसमें आएंगे उसमें बहुविकल्पीय होंगे, हर प्रश्न के आगे जो है विकल्प होंगे कि क्या चीज है आपके पास में।
1: मतलब श्रोताओं को यहां बता दें कि 34 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए ऑप्शंस आपके पास होंगे।
0: हाँ, उसमें ऑप्शन आएगा।
1: ठीक है, तो जनगणना यानी लोगों की गणना कब से प्रारंभ हो रही है?
0: देखिए, जो पहला चरण है ये मकान गणना हमारा 22 जून को पूरा हो जाएगा, और उसके बाद में जो लोगों की गणना होगी, व्यक्तियों की गणना की जाएगी, वो फरवरी में होगी, फरवरी 2027 में, और उसका जो अंतिम तिथि होगी वो 31 मार्च का रात का 12 बजे का समय होगा। उस समय बिल्कुल जो वास्तविक संख्या होगी उसको दर्ज करके और उसके बाद में इसको क्लोज कर दिया जाएगा।
1: अजीत जी, आप ये बताइए कि आपके अनुसार जनगणना में आम जन की क्या भूमिका है?
0: देखिए, जैसा मैंने बताया कि हमारा जो भारत देश है दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश है आज की तारीख, तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है अपने देश के प्रति और दुनिया के प्रति। जो भी हमारे कार्यक्रम है, ये तो बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है जनगणना, इससे गवर्नमेंट को बहुत मदद मिलती है योजनाएं बनाने के बारे में, और उन्हें पता है इससे कि क्या संसाधन हमारे देशवासियों के पास में है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम लोग इसमें भाग लेंगे, और जैसे आपकी पहली बार व्यवस्था की है, अभी तक क्या होता था कि प्रगणक आए, सुपरवाइजर्स आए और उन्होंने आपसे पूछा और दर्ज कर लिया और चले गए, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है अभी मकान गणना की, पहले भी स्वगणना का, और मुझे लगता है कि अगला जो चरण होगा उसमें भी स्वगणना का एक समय दिया जाएगा। तो स्वगणना से होता क्या है कि एक्यूरेसी बढ़ती है, हमको पता है कि हमारे परिवार में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि मेरा मकान बना हुआ है तो उसकी दीवार किस चीज की है हमें ज्यादा पता है, दूसरा कोई अगर आएगा तो हो सकता है उस समय मैं घर में ना उपस्थित हूँ, जानकार व्यक्ति ना हो, कोई दूसरा होगा, तो उस समय हो सकता है वो कुछ जानकारी उतनी अच्छी ना दे पाए,
1: या जितने लोग नियुक्त भी किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, हो सकता है वो सभी जगह ना पहुंच पाए।
0: नहीं नहीं, एक भी मकान नहीं छूटेगा, एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा, लेकिन एक्यूरेसी के लिए, हम घर के मुखिया अगर हैं, हम जवाब दे रहे हैं तो हमारे घर के बारे में, हमारे जो परिवार में संख्या है, लोग हैं, उनके बारे में हम सटीक जानकारी दे पाएंगे, तो वो सटीक जानकारी जब हम उसमें इन्वॉल्व होंगे तो ज्यादा बेहतर डेटा मिल जाएगा जनगणना के लिए, और उसका उपयोग बहुत बेहतर ढंग से आगे हो सकेगा।
1: श्रोताओं, आपने सुना कि आम जन की क्या भूमिका जनगणना में हो सकती है। उम्मीद है आप इस चीज को फॉलो करेंगे। अजीत जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, संदेश तो यही है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हमारा देश सबसे ज्यादा आबादी वाला है और गणना अगर एक्यूरेट होगी, उसमें सबका योगदान रहेगा, बिल्कुल सही तथ्य सामने आएंगे, तो हमारी जो सरकार है वो 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेके चल रही

है, तो उस आधार पर ये जनगणना बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब हमारे पास 2027 के बाद 47 का 20 वर्ष बचा है, और 20 वर्ष में जो डेटा आ जाएंगे उस डेटा के माध्यम से गवर्नमेंट को नीतियां बनाने का, उनको लागू करने का बहुत ही सरल उपाय गवर्नमेंट के पास रहेगा और बहुत बेहतर तरीके से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। मेरा अनुरोध है सभी जितने देशवासी हैं कि ये जनगणना में जो भी जानकारी आप देंगे प्रगणक को, ये आप पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, इसका

0: आज बहुत ही ज्यादा उपयोगी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस जानकारी से काफी फायदा पहुंचेगा। आप हमारे कार्यक्रम को इसी प्रकार सुनते रहिए। अजीत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जनगणना 2026 डेटा से विकास की दिशा। शिखा, हमने आज इस विषय पर जानकारी ली है ना, और उम्मीद है कि हमारे जितने भी श्रोता हैं वो इसका लाभ उठाएंगे, और श्रोता ही नहीं, हम पूरे भारतीय नागरिक इसका लाभ उठाएंगे। और अब वक्त हो चुका है गीत सुनने का, तो क्या गीत सुन लें?
3: जी बिल्कुल, भेजते एक प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं तक।

श्रोता, ये प्यारे से गीत जो अभी आप सुन रहे हैं एक प्यार का नगमा है, बेस्ड है राग मालकोस पर, थाट भैरवी है, कोमल स्वर गा धानी है और वर्जित स्वर रे वा पा, वादी स्वर मध्यम, समवादी स्वर षड्ज है।

0: बड़ा ही प्यारा सा गीत और वाकई बड़ा ही खूबसूरत। सतीश कहते हैं ना शिखा कि जब हम अपने जीवन में तमाम काम करते हैं तो हर काम में एक ना एक कुछ ऐसी बातें भी जुड़ी होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमें क्या अच्छा करना है और क्या बुरा करना है ना। तो हर काम में एक दिशा होनी चाहिए और तभी हमारे जीवन का सही किनारा लगता है ना।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और सारी जितने भी हम काम करते हैं कहीं ना कहीं एक मोटो छुपा होता है और वो प्यार का नगमा वैसे ही पड़ जैसे जिंदगी है वो प्यार के साथ बढ़ती जाती है।
0: जी, और देखिए जब आपने कहा है कि प्यार के साथ बढ़ती जाती है तो देखिए कुछ गर्मी भी बढ़ती जा रही है ना
1: जी गर्मी तो
0: तो
1: बहुत
0: हाँ,
1: ज्यादा बढ़ती जा रही है।
0: तो क्या जानना चाहती हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है?
1: जी बिल्कुल।
0: तो चलिए सुनवाते हैं श्रोताओं को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानी जी से, जो कि हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं।
2: दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय भारत मौसम विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी। आइए जानते हैं आज के मौसम की क्या है ताजा जानकारी। नमस्कार दानिश जी।
3: नमस्कार
2: जी, आज जानना चाहते हैं एक बार फिर से कि आज कैसा रहने वाला है मौसम।
3: जी गुड मॉर्निंग। मौसम की बात करें तो मौसम इधर साफ रहेगा, दिन में अच्छी धूप खिली रहेगी और जैसे कि पिछले कई दिनों से मौसम थोड़ा अनुकूल था, बीच में थोड़ी बारिश भी हो रही तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से तापमान में गर्मी होगा।
2: जी।
3: तो इसको देखते हुए जो साउथ का रीजन है, जो दक्षिण का है, एमपी से सटे हुए जो जिले हैं बुंदेलखंड विंध्यांचल रीजन, वहाँ लू का अलर्ट है जारी है।
2: जी।
3: लखनऊ के लिए अभी कोई ऐसा लू का अलर्ट नहीं है लेकिन तापमान आने वाले दिनों में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो कुल मिला के कहे तो आने वाले दिनों में गर्मी काफी बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं हमको बचाव रखने की आवश्यकता।
2: जी, तो इस ताजा जानकारी

0: जी हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए हम धन्यवाद देते हैं मोहम्मद दानिश जी का। आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से आपने हमें जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिखा, हम जैसे कि बहुत सारी बातों के साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही बहुत सारी बातें भी हैं, लेकिन एक खास बात जो आज है वो ये है कि आज एक बहुत ही प्यारा सा त्योहार है जो रिश्तों की मिठास को बना के रखता है ना।
1: जी बिल्कुल। और ये आज है त्योहार, सभी को पता है लेकिन नहीं पता तो हम बताते हैं, आज है वट सावित्री व्रत। ये सुहागने औरतों का बहुत बड़ा व्रत है। पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत रखा जाता है। और आपको बता दें कि हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या को यह त्योहार मनाया जाता है।
0: जी, और जब हम त्योहार की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ आज के ऐतिहासिक घटनाओं की बातें भी कर ले, है ना। आज कोलकाता में 1911 में आज ही के दिन तला वाटर टैंक का निर्माण पूरा हुआ, जिसे तत्कालीन दुनिया का सबसे बड़ा वो ओवरहेड वाटर टैंक माना गया।
1: और सन 1920 में आज ही के दिन फ्रांसीसी स्वतंत्रता सेनानी सेनापति जॉन ऑफ आर्क को संत की उपाधि दी गई थी।
0: 2013 में आज के दिन वैज्ञानिकों ने पहली बार मानव भ्रूण के क्लोन से स्टेम सेल प्राप्त करने में सफलता हासिल की
1: और
0: थी।
1: सन 1960 में आज ही के दिन भारत और ब्रिटेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत हुई थी।
0: जी, और 1975 में जापानी पर्वतारोही जुन्को ताबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी।
1: और सन 2004 में आज ही के दिन टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने हैमबर्ग मास्टर्स का खिताब जीता था।
0: तो ये तो जानकारी हो गई हमारे आज के इतिहास से जुड़ी हुई ऐतिहासिक बातें, जिनको हम याद करते हैं और जानकारी लेते रहते हैं। साथ ही साथ देखो शिखा, हमें लगता है ना कि जो रक्तदान है ये महादान कहलाता है ना। और 16 मई से यानी कि आज से 4 दिन के लिए ये जो 4 दिवसीय विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन हो रहा है, और हम सब समय समय पर ऐसे आयोजन करते रहते हैं जिससे कि किसी की जान बचाई जा सके और किसी के जीवन को, किसी के स्वास्थ्य को हम बेहतर बना सके, है ना।
1: जी, और इसमें हम सबको और आप सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए।
0: जी, और अब जल्दी से हम एक गीत भी सुन लेते हैं, और गीत के साथ ही साथ देखिए कार्यक्रम का जो समय है वो भी ये समाप्ति की ओर बढ़ रहा है।

0: श्रोताओं, प्यारा सा गीत जो अभी आप सुन रहे हैं है फिल्म पाकीज़ा से, जिसे लता जी ने अपनी आवाज़ दी है। बेस्ड है राग यमन पर, थाट कल्याण है, जाति संपूर्ण संपूर्ण है, इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है और बाकी सभी सात स्वर शुद्ध लगते हैं।
1: जी हाँ, और इस खूबसूरत और बेहतरीन गीत को आप तक पहुंचाया शिखा ने, और बहुत ही खूबसूरत गीतों को चुन चुन कर कर आप तक पहुंचा रही हैं। और हम चाहते हैं ये जो सफ़र हमारा ऐसे ही चलता रहे, हमारे जो ये खूबसूरत सा मौसम है जीवन का, हमारी बातों का, हमारे कार्यक्रम का, हमारे आकाशवाणी लखनऊ के साथ आज सुबह कार्यक्रम का, तो बस सफ़र आज का इतना ही रहा। तो अब लवी सिन्हा
0: और शिखा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ, ये आकाशवाणी लखनऊ है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: दिल्ली से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया।

0: किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
3: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
4: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई

0: टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गयी। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोक सत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र, जहां पर मिलता है आपको गीत संगीत और ज्ञान का बम्पर एंटरटेनमेंट। आज के नमस्ते बरेली में वट सावित्री व्रत के विषय में बताने के लिए हमारे साथ है आचार्य कमल मौलेखी जी। आचार्य जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: जय सिया राम, धन्यवाद।
0: आचार्य जी, हमारे श्रोताओं को आप जानकारी दीजिए कि वट सावित्री व्रत की क्या महत्ता होती है और ये क्यों मनाया जाता है और किस प्रकार से मनाया जाता है।
1: जी जी जी, ये वट सावित्री जो व्रत है
0: जी,
1: ये विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए इस व्रत को लेती हैं।
0: जी,
1: इसमें एक कथा है
0: जी
1: कि भद्र देश के राजा
0: जी,
1: जिनका नाम अश्वपति था,
0: जी
1: भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी।
0: जी,
1: उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी हवन में। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री ही रखा गया।
0: जी,
1: कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर ना मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे।
0: जी,
1: उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां सालव देश के राजा द्युमत सेन,
0: जी
1: सालव एक देश था, वहां के राजा द्युमत सेन रहते थे।
0: जी,
1: क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया था। हाँ, पहले से स्त्रियां ही पति का वरण करते थे,
0: जी
1: है ना। तो ऋषिराज नारद जी ने कहा कि 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी।
0: जी,
1: तो ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है,
0: जी
1: उसकी आयु कम है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए।
0: जी,
1: इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आज कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं, भले ही उसकी अल्प आयु हो या दीर्घायु हो।
0: जी,
1: राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है।
0: जी,
1: सावित्री अपने हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया।
0: जी आचार्य,
1: हाँ जी। फिर सावित्री अपने ससुराल पहुंचती है, सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था।
0: जी,
1: वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया।
0: जी अच्छा जी,
1: हाँ। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए।
0: जी,
1: साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए थे।
0: जी,
1: तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए।
0: जी,
1: अपने भविष्य को समझ गए और सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी, अपने हाथों से उनके सिर को सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी अपने मन में अद्भुत भावना को रखते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़ी।

0: यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन कि इनको मेरे साथ जाना ही पड़ेगा, इनका समय पूर्ण हो चुका है और यह विधि का विधान है। लेकिन सावित्री बिल्कुल भी ना मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायण को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, मैं तुमको वो वरदान अवश्य दूंगा। तब सावित्री कहती हैं, सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं। देखो, अब पहले अपने सास ससुर के लिए मांगती है, उन्हें आप दिव्य ज्योति, दृष्टि, है ना, देखने की क्षमता दे दीजिए, प्रदान कर दीजिए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। लेकिन सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने से कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह इस बात को सुनकर यमराज फिर से एक और वर मांगने के लिए कहा। यमराज उनके पतिव्रता को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनसे कह दिया कि आप एक व्रत, मुझसे एक वर और मांग सकते हो। सावित्री बोली, प्रभु, हमारे ससुर का राज्य उनसे छीन लिया गया है, हाँ, आप उन्हें पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा।
1: जी आचार्य
0: जी, यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। अब सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अब आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने
1: पड़ गए।
0: पड़े। हाँ, यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था।
1: जी
0: जी, अब सत्यवान जो है जीवित हुए हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल
1: चलते,
0: पड़े। जी, दोनों
1: इसीलिए इसीलिए बट सावित्री व्रत मनाया जाता है।
0: हाँ, इसीलिए बट सावित्री व्रत को मनाया जाता है। अब बट सावित्री व्रत जो है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है।
1: जी,
0: जी,
1: पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए।
0: लंबी उम्र के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए बट सावित्री का उपवास करती हैं।
1: आपने बहुत बेहतरीन जानकारी हमें प्रदान करी। आशा है कि हमारे श्रोता लोग लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।
0: धन्यवाद। जय श्री

दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे ने इज्जतनगर मंडल में शुक्रवार से विश्व पर्यावरण दिवस 2026 अभियान आरंभ किया गया। रेलवे बोर्ड मुख्यालय के निर्देश व मंडल रेल प्रबंधक के मार्गदर्शन में ये अभियान 5 जून तक चलेगा। दोस्तों, अभियान का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। अभियान के पहले दिन काठगोदाम, हल्द्वानी, लालकुआं, रामनगर, काशीपुर, रुद्रपुर सिटी, बरेली सिटी, पीलीभीत, इज्जतनगर, कासगंज, फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद समेत प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों और आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। मित्रों, इसी दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार, कचरा पृथक्करण, अपशिष्ट प्रबंधन, दोबारा उपयोग योग्य बोतलों और थैलों के इस्तेमाल, डिजिटल टिकटिंग व कागज रहित यात्रा अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों और यात्रियों ने पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प भी लिया। इस अभियान के तहत आगामी दिनों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

मित्रों, जाट रेजिमेंट की अजगर बटालियन यानी कि 15वीं बटालियन का स्वर्ण जयंती समारोह बदायूं रोड पर एक रिजॉर्ट में सैनिक कर्मियों के साथ आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में सेवारत, सेवानिवृत्त अधिकारी, जूनियर कमीशन अधिकारी तथा सैनिक लोग शामिल हुए। मित्रों, 15 जाट रेजिमेंट का गठन 15 मई 1976 को हुआ था। पिछले 50 वर्षों में बटालियन ने विभिन्न सैन्य अभियानों और सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मित्रों, समारोह के दौरान पूर्व सैनिकों और वर्तमान जवानों के बीच एक आत्मीय मुलाकात ने भाईचारे और उत्साह का माहौल बना दिया। पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभव उनके साथ साझा किए और इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे यादगार पहल बताया। दोस्तों, पूर्व सैनिकों की दस्तावेज एवं वेतन संबंधी विसंगतियों को भी दर्ज किया गया ताकि उनका निस्तारण कराया जा सके समय से। समारोह के समन्वयक सेवानिवृत्त हवलदार सुखवीर सिंह ने बताया कि यह आयोजन पलटन के गौरवशाली इतिहास को पुनः जीवित करने के लिए है। समारोह में सभी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

दोस्तों, मई के मध्य में मौसम ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को तेज धूप और उमस ने लोगों का पसीना बहा दिया। सुबह बादल छाए रहने और बूंदाबांदी से मौसम सुहावना रहा। इसके बाद दिन भर चिलचिलाती धूप और उमस भरे मौसम ने लोगों का काफी परेशान किया। मित्रों, मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम बहुत शुष्क रहेगा। दोस्तों, विकिरणीय ऊष्मन बढ़ने से तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के लखनऊ के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार जी ने कहा है कि बरेली में 24 मई के आसपास प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इससे तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

दोस्तों, धूप में निकलते समय सावधानी बरतें, पर्याप्त पानी पिएं और आवश्यक हो तभी निकलें और छाता लेकर निकलें।

नमस्ते बरेली, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए अब सुनते हैं कुछ लोकगीत लोक रंग में।

श्रोताओं, हेलो बरेली की रिकॉर्डिंग 9:05 पे सुबह होगी और हमारा फोन नंबर है 0581251720।

0: अभी आपने सुने कुछ लोकगीत लोक रंग में। सौ 104 FM पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। आइए अब सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए।

0: वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: विविध भारती से कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक, और ये है चित्रलोक का अगला गाना।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत

मनीषा फिल्म का ये गाना आपने सुना। वरुण ग्रोवर की बोलते हैं अनु मलिक की तरसी, और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना अरिजीत सिंह की आवाज, फिल्म का नाम है छिछोरी। अमिताभ भट्टाचार्य, प्रीतम।

0: और ये थी आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और चलते चलते आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि विविध भारती सृजन भारती का आयोजन कर रहा है, और इस सृजन भारती में क्या होने वाला है। अगर आप मुंबई में हैं तो 21 तारीख की शाम 6:30 बजे जरूर आइए। सारा ब्यौरा इस प्रोमो में है। जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं फोकस नेत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।

0: लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। जान है तो जहान है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र कुमार मिश्र का सप्रेम नमस्कार। जान है तो जहान है कार्यक्रम में उपस्थित हैं बरेली के फोकस पैथ लैब, फोकस एमआरआई एंड डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल एमबीबीएस एमडी। आज वार्ता का विषय है हेल्दी दिखना और हेल्दी होना, क्या दोनों एक ही बात है?
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहित अग्रवाल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 100.4। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हेल्दी दिखना और हेल्दी होना दोनों के एक ही बात है? आज का जमाना अपीयरेंस का जमाना है, सुंदर सुंदर दिखो, बढ़िया बढ़िया दिखो, फेस से लोग जज करते हैं, वेट से जज करते हैं, आप मोटे नहीं हैं तो आप हेल्दी हैं, सोशल मीडिया की फोटो से जज करते हैं कि आप हेल्दी हैं अनहेल्दी हैं, लेकिन मेडिसिन हमें एक अलग चीज दिखाती है, सच्चाई दिखाती है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो भी चीज चमक रही है जरूरी नहीं वो सोना है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर चीज जो स्लिम ट्रिम है और सुंदर सुंदर दिख रही है वो हेल्दी नहीं है। आजकल लोग वेलनेस को एस्थेटिक समझने लग गए हैं, स्लिम बॉडी हेल्दी बॉडी, जिम फोटो हेल्दी बॉडी, यंग एज हेल्दी बॉडी, लेकिन एज अ डॉक्टर मैं आपको एक बात कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं, सम ऑफ द सिकेस्ट बॉडी लुक परफेक्टली नॉर्मल व्हेन दे कम टू अस। डिजीज चीज को आप आंखों से मत तोलिए कि यार सबको सही लग रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर की केमिस्ट्री अलग होती है, वैसे ही असली हेल्थ डिसाइड नहीं होती, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम वेल्थ कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, बिजी हैं, आज कितने गल्ला बना कितना नहीं बना ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी हेल्थ कितनी लूज हो रही है उसके लिए। तो हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो इमीडिएट कोलैप्स नहीं होती, वो एकदम रिएक्ट नहीं करती कुछ भी गलत होता है, तो वो मौका देती है बॉडी को रिपेयर करने का, बॉडी को संभलने का, कुछ सिग्नल्स देती है, पहले अपने आप को अडेप्ट करती है, अगर हमारी शुगर बढ़ती है तो बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉडी थोड़ा बहुत टॉलरेट करती है, हमारा अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है बॉडी का तो बॉडी उसको सप्रेस करती है, उसको कम करती है। इन्हीं सभी वजहों से हमारी डिजीज़ जो हैं, जो बीमारियां हैं, वो साइलेंटली ग्रो करती हैं, हल करके ग्रो करती हैं, धीरे धीरे ग्रो करती हैं, हमें पता ही नहीं लगता है, कभी कभी वो थोड़ा थोड़ा सिग्नल देती है लेकिन आखिर हम उसको अगर पकड़ नहीं पाते, हमारा अगर एंटीना ठीक नहीं है तो हम नहीं पकड़ पाएंगे, हमें ध्यान देना है उस पे। द एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब अगर कोई हमें खांसी जुकाम या कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कमजोरी वाला सिम्टम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बीमारी नहीं है, बीमारी का पता जांच से ही पता लग सकता है। मेडिसिन में एक डेंजरस फेज है, बहुत खतरनाक फेज है, आई फील फाइन, मैं बिल्कुल अच्छा महसूस करता हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती, इतना कॉन्फिडेंस। कल कई हार्ट पेशेंट्स बहुत ज्यादा नॉर्मल से फील करते हैं, लेकिन और बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट भी बहुत अच्छा फील करते हैं, उन्हें इंसिडेंटली अचानक से या कोई चेकअप कराने के दौरान पता लगता है कि भाई उनको डायबिटीज है या उनको दिल की बीमारी है, और उनका यही डायलॉग होता है, मैं कैसे बीमार हो सकता हूं, मैं तो सारे काम करता हूं, मैं तो रोज ऑफिस जाता हूं। आज का इंसान फिजिकली कम, मेंटली ज्यादा एग्जॉस्टेड है, मेंटली एग्जॉस्टेड है, वो बिजी इतना है, कुछ काम नहीं कर रहा है तो फोन में बिजी है, कोई काम नहीं कर रहा तो पड़ोसी में बिजी है कि पड़ोसी की लाइफ में क्या चल रहा है। हम कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड है किसी ना किसी से, हमारे पास सब चीजों का टाइम है अपने आप के लिए टाइम देने के अलावा, जब हम खाली बैठे हैं तो मोबाइल में कुछ ना कुछ देख रहे हैं, या तो रील देख रहे हैं, या कुछ व्हाट्सएप देख रहे हैं, या कुछ फेसबुक पे रिप्लाई कर रहे हैं, या किसी और का रिप्लाई किसी और का देख रहे हैं, हम अपने लिए टाइम नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए थोड़ा बहुत बोर होना चाहिए आदमी को, बोर मतलब खाली बैठना चाहिए, खाली बैठे रहो तभी तो मन में थॉट्स आएंगे, जो पीछे पड़े हुए हैं वो आगे आएंगे, फिर वो निकलेंगे, फिर कुछ आप थॉट्स के बारे में सोचोगे कि भाई मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, अरे ये काम तो पेंडिंग रह गया मेरा, मैं इसको पूरा कर लेता हूं, है ना। इसको ये अगर आप आंखें बंद करके बैठोगे 10 मिनट तो इसको मेडिटेशन बोला जाता है, इसी को अकेले बैठोगे तो इसको चिंतन बोला जाता है, कुछ लोग इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं। अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है, या मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ बोर होना बहुत जरूरी है, बोर होना, खाली बैठो कम से कम 10 मिनट तो बैठो खाली दिन में। लेट नाइट हम स्क्रॉल कर रहे हैं, जब तक आंखें बंद बिल्कुल नहीं होगी, शटर बंद नहीं होगी आंखों का, हम व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, है ना, सो ही नहीं पा रहे हैं, फिर कह रहे हैं हमें नींद नहीं आती पूरी, गद्दा खराब है, एसी खराब है, हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, चाहे चाय के साथ ही सिर्फ खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, अरे आज फला की नमकीन लेके आना, आज फला वाले ये समोसा लेके आना, उसकी चटनी बढ़िया होती है ना, ये खस्ता खाऊंगा मैं, मतलब

0: इसी में लगा हुआ आदमी, और फिर कंपैरिजन कर रहा है इसका समोसा अच्छा नहीं है, इसका ज्यादा अच्छा है, कल इसका खाएंगे। तो इससे बॉडी की बायोलॉजी को अफेक्ट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पार्टी मत करिए या कुछ, थोड़ा बहुत फ्राइड फूड खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लिमिटेड खाइए, बहुत ज्यादा नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, खाने के लिए मत जीजिए, जीने के लिए खाइए। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। ये बहुत मैंने पहले भी बोला है बहुत बार, एक जिम रोहन जी हैं, उन्होंने बोला था कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी इज द ओनली प्लेस वे यू लिव। अपने घर में नहीं रह रहे हो आप, अपनी बॉडी में रहते हो, उसका ख्याल बहुत रखिए। बॉडी पनिशमेंट टॉलरेट करती रहती है, पिसती रहती है, झिक मारती रहती है, लेकिन वो कोई लिमिट तो होगी उसकी। जब लिमिट होती है, पार हो जाती है, तभी बीमार होती है। आपने देखा होगा, आप और आपके समझिए परिवार वाले या आपके कोई मित्र होंगे, या आप स्कूल जाते होंगे या कॉलेज जाते होंगे या ऑफिस जाते होंगे, सेम इन्वायरमेंट है सबका। कुछ लोग बीमार हो जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं हो रहे हैं, कुछ लोग सेम खाना खा रहे हैं और वो बीमार हो गया, वो नहीं हुआ, ये तो आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? किसी की बॉडी ज्यादा टॉलरेट करती है, किसी कम कर पाती है। तो बॉडी की टॉलरेट करने की क्षमता है हर एक की। इसका मतलब ये नहीं है जिसकी टॉयलेट कर रही है उसकी बॉडी उसको वाहवा कर रही है उस एनवायरनमेंट में, वो भी उससे नाराज है, लेकिन वो उसकी लिमिट ज्यादा है बाय चांस, तो वो बाद में बीमार पड़ेगी। तो इसलिए अगर हम कम सो रहे हैं या खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो, तो हमें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी हमें परेशान करेगी लॉन्ग टर्म में। डायबिटीज बहुत कॉमन हो गई है, हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक मिलेगा आपको, ब्लड प्रेशर वाला मिलेगा, मतलब इतना ज्यादा हो गया डॉक्टर भी सबसे पहले आदमी से ही पूछता है आपको डायबिटीज तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, सबसे पहले ये डायलॉग बन गया। तो इसका मतलब क्या है? आधे ज्यादा लोगों को डायबिटीज है। आप जिस बेल्ट में रह रहे हैं हम लोग नॉर्थ इंडिया में, ये तो मतलब एक हब है डायबिटीज का। क्यों है भाई? हमने कौन से पाप करे हैं ऐसे क्यों हमको डायबिटीज हो रही है, हमारे लोगों को हो रही है? क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है जिसको कोई टोकने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, इसलिए हो रहा है ऐसा। अरे भैया, हम लोग भी तो काम कर रहे हैं, हम लोग भी भगवान को मानते हैं, तो हम लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? हमें डायबिटीज क्यों हो रही है? सबको क्यों हो रही है? हमारे यहाँ साउथ में तो कम है डायबिटीज कंपेटिवली, यहाँ पे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, फैटी लिवर बहुत कॉमन हो गया है। आप कभी अल्ट्रासाउंड कराने जाइए, किसी की रिपोर्ट होगी, बहुत कम लोगों की नॉर्मल आती है, हर एक को फैटी लिवर ग्रेड मिल रहा है वन, क्यों मिल रहा है भाई? अब लोग कुछ कहते हैं फैटी लिवर ग्रेड वन ही नॉर्मल होता है। अरे भैया, नॉर्मल नहीं होता है, मैक्स बहुत लोगों को आ रहा है, इसलिए आप नॉर्मल कह रहे हो, लेकिन नॉर्मल नहीं है वो चीज। हमारी बॉडी और माइंड अलग समझते हैं, हम माइंड और बॉडी को अलग अलग समझते हैं, ऐसा नहीं है। माइंड और बॉडी काफी कुछ कनेक्टेड है।
1: आज इस कार्यक्रम में मेहमान हैं बरेली के फोकस पैथलैब, फोकस एमआरआई एंड डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल एमबीबीएस एमडी, और मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र कुमार मिश्र।
0: हम जब स्ट्रेस लेते हैं तो हमें हॉर्मोन्स अफेक्ट करते हैं, शुगर अफेक्ट करती है, इम्यूनिटी अफेक्ट करती है, स्लीप अफेक्ट करती है। हमारी द बॉडी कीप्स द स्कोर, क्या कहते हैं, बॉडी कीप्स द स्कोर। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं तो एक स्कोरिंग चलती रहती है ना साइड में, आपके स्कोर नंबर देखिए, लेकिन स्कोर तो चल ही रहा है ना कि आपकी कितनी, आपने कितने सिक्स मारे, कितने फोर मारे, कितने सिंगल लिए, कितने आउट करे, कितने कैच आउट करे, स्कोर तो चल ही रहा है ना, चाहे आप देखें ना देखें। वैसे ही बॉडी का स्कोर चलता रहता है कि आपने क्या काम किया सही, क्या काम गलत किया, स्कोर दिखता नहीं है बस आपको। स्कोर बस आपको सिम्टम्स के फॉर्म में या किसी अलार्म के फॉर्म में या किसी सिग्नल के फॉर्म में आपको देती है वो हल्के से, स्कोर आपको नहीं दिखता, तो आपको लगता है कि हम सब कुछ सही चल रहा है। कई लोग टेस्ट कराने से डरते हैं, क्या कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब अगर टेस्ट करा लिया मैंने और उसमें कुछ आ गया तो क्या होगा,
2: बहम में पड़ जाएंगे।
0: हम बहम में पड़ जाएंगे, बिल्कुल सही बोला आपने। मैंने कहा भैया अगर नहीं कराओगे और कभी बीमार पड़ गए तब क्या होगा, है ना। आपको इस चीज से अगर आप टेस्ट करा रहे हो नॉर्मल आ रहा है तो खुशी की बात है ना,
2: बिल्कुल सही
0: है। और अगर कुछ आ गया उसमें गलती से तब भी अच्छी बात है कि आपको समय से पहले पता लग गया कि भाई कुछ गड़बड़ है,
2: इलाज हो जाएगा,
0: इलाज हो जाएगा, उसको टाइम देते जितनी जल्दी इलाज करेंगे उतना अच्छा है ना, है ना। आप गाड़ी की भी सर्विस तो हर छह महीने में कराते हैं या इतने किलोमीटर पर कराते हैं, वैसे आपको बॉडी की सर्विस करानी चाहिए। डिजीजेस डिस्कवर होना डेंजरस नहीं है, ये अच्छी बात है। जो डिस्कवर नहीं हो रही है डिजीज, जिनके बारे में पता नहीं लग रहा है, वो डेंजरस है। कितने छुपा रुस्तम ज्यादा बदमाश है, हाँ, जो सामने से अटैक कर रहा है उसको तो आप कुछ ना कुछ कर लोगे। कोई सामने से अटैक कर रहा है तो वो हो सकता है उसके पास कोई भी बड़ा हथियार हो तो आप बच सकते हो, या हो सकता है आपके पास हथियार हो आप भी उसको उसके लिए डिफेंस कर सकते हो, लेकिन जो अंदर अंदर अंदर अंदर कर रहा है उसको कैसे, उससे कैसे आप बचोगे या उससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। तो इसलिए जो चीजें साइलेंटली चल रही है वो बहुत खतरनाक है, इसलिए टाइमली डायग्नोसिस

0: करना को आप गलत मत मानो, उसको फियर मत करो, उसके घबराओ मत, आपको रेगुलर टेस्ट कराने चाहिए, एक साल में एक बार कराओ। तो हेल्दी होने का एक्चुअल मतलब क्या है? सिक्स पैक होना नहीं है, एब्स बनी हुई है, सिक्स पैक है, जॉन अब्राहम दिख रहे हैं, फेयर स्किन है, बहुत गोरे चिट्टे हैं, या हम यंग दिखते हैं, ये दिस इज नॉट ओनली कि आप हेल्दी हैं। हेल्दी होने का असली मतलब क्या है कि हमारी स्टेबल एनर्जी है, हमें अच्छी नींद आती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारा पेट खराब नहीं होता, हमारी हम इमोशनली बैलेंस है, यानी कि हम अचानक, कुछ लोग होते हैं ना कि अचानक रोने लगते हैं या होते हैं, वैसे नहीं है, या बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेते, हमारी क्लियर थिंकिंग है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना, हमारी रिपोर्ट्स भी हैं जो हेल्दी आती हैं, और अगर हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो कंपेटिवली जल्दी ही रिकवर कर जाते हैं। हेल्थ इज नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम, है ना, हेल्थ को वैल्यू मत करिए कि भैया कि मैं बीमार नहीं हो रहा हूं तो मैं हेल्दी हूं। मेडिसिन का फ्यूचर भी मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से तो यही है भाई, मेडिसिन का फ्यूचर ट्रीटमेंट नहीं है, मेरे हिसाब से मेडिसिन का फ्यूचर प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम बीमारी ना पड़े, हम बीमार क्यों पड़े यार, मैं तो ये कहता हूं आपसे,
1: मतलब यही है,
0: हम बीमार क्यों पड़े हैं, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम बीमारी को खाएंगे अपने पास से, आएगी नहीं पास में, है ना, हमारा मतलब यही, हमारा इस प्रोग्राम का मतलब जो मेन मोटो है, हमारा जो भी श्रोता है वो बीमार ना पड़े, हमें तभी तसल्ली है, आदमी बीमार नहीं पड़े, हम बीमार के बाद होने के बाद ट्रीटमेंट हमें नहीं लेना है, हमें बीमार पड़ना ही नहीं है, उससे पहले हम इंतजाम करके रखेंगे। बॉडी के सिग्नल को समझिए कि अगर आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है, या आपको नींद पूरी नहीं होती है, या आपका वजन बढ़ रहा है, या बहुत ज्यादा घट रहा है, दोनों केसेस में, या आपका लो स्टेमिना है, आपको एसिडिटी रहती है, कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता है, तो बॉडी हल्के हल्के बता रही है कि भैया कुछ गड़बड़ है इंजन में, इसको ठीक करा लो, रहते मतलब कभी बंद पड़ जाऊंगी अचानक तो जाओ दिक्कत में फंस जाओगे, तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये छोटे छोटे सिग्नल से, ऐसे सिग्नल तो देगी वो आपको। तो देखिए बूढ़ा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक को बूढ़ा होना है ना, बूढ़ा होना मतलब क्या है कि आपको एक साल का और एक्सपीरियंस हो गया जिंदगी का,
1: क्या बात
0: है ना, ये कोई बुरी बात नहीं है, और क्या ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है, तो इसमें टेंशन मत लीजिए, आप बिंदास रहिए और बिंदास रहिए, तो है ना, एक शान से शौकत से आप बूढ़े होइए, ये सुनना है कि बूढ़ा तो सबको होना है, तो हेल्दी रहेंगे, अपने हाथ से ग्लास का पानी उठा के पियेंगे या थोड़ा टहलने जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ का मतलब सिर्फ ज्यादा जीना नहीं है, है ना, बेटर जीना है, सक्षम होकर जीना है, हमें किसी से ग्लास का पानी उठा के ना, किसी को बोले ना पड़े कि भाई ग्लास पानी देना, हम खुद जाके ग्लास का पानी पी सके, तब तो बात है, हमें छड़ी इस्तेमाल ना करना पड़े। हेल्दी दिखना अच्छा है, और हेल्दी तो दिखना ही चाहिए आदमी को, है ना, लेकिन हेल्दी होना एक विजडम की तरह है, आपको समझना पड़ेगा कि मुझे हेल्दी होने के लिए क्या करना है। मिरर आपका जो शीशा है वो सिर्फ आपको आपकी अपीयरेंस बताता है कि आप दिखते कैसे हैं, कदकाठी कैसी है, चेहरा कैसा है, आंखें बराबर हैं क्या नहीं है, लेकिन बॉडी का सच आपकी हैबिट्स में छुपा है, आपके लाइफस्टाइल में छुपा है, आपकी नींद में छुपा है, आपके स्ट्रेस में छुपा है, और आपकी रिपोर्ट्स में छुपा है कि रिपोर्ट्स कैसी आ रही है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अपनी बॉडी को इग्नोर मत करिए, क्योंकि बॉडी पहले सिग्नल देती है, उसको पकड़ना जरूरी है, फिर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, फिर बीमारी आती है। तो दोस्तों मैं आपसे आखिरी में यही कहूंगा, जिंदगी लंबी नहीं कड़ी होनी चाहिए।
2: डॉक्टर मोहित अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे श्रोताओं के लिए इतना समय निकाला। और अब श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, और अब रविंद्र कुमार मिश्र को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार। जान है तो जहान है कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार और प्रत्येक शनिवार को सुबह 9:30 पर रविंद्र मिश्र के साथ।

0: जान है तो जहान है। अभी आपने सुना ये फोकस नेत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार

किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

0: साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।
1: विद है मेरी दर...

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आपकी आवाज ही आपकी पहचान है।
1: जी जी जी

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने में रेडियो श्रोता मीनाक्षी अस्थाना को।
1: आकाशवाणी के दीवानों के लिए

0: एक हम छोटा सा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आप
1: श्रोता नमस्कार, मैं मीनाक्षी अस्थाना हूँ और आकाशवाणी की बचपन से फैन रही हूँ। आकाशवाणी ने अपना 90 वर्षों का ये सफर तमाम उतार चढ़ावों के साथ निश्चित रूप से पूरा किया होगा। मुझे याद है अपने बचपन में भी मैं हमेशा रेडियो की फैन रही हूँ, आकाशवाणी की फैन रही हूँ। इसके अनेकों कार्यक्रम जैसे विविध भारती की उर्दू सर्विस हुआ करती थी, अनेकों प्रकार के रंग महल में नाटक आया करते थे, हवा महल में नाटक आया करते थे, बिना का गीत माला, या यूं कहूं कि मैं आकाशवाणी सुनकर और उससे प्रेरित होकर उत्साहित होकर मुझे एंकरिंग का शौक लगा। और एंकरिंग के लिए मुझे अनेकों तरह के मटेरियल सामग्री आकाशवाणी से सुगम रूप से मिल जाया करती थी। बरेली आकाशवाणी ने सन 93 से जो अपना सफर शुरू किया है, मैं उस सफर में उनके साथ रही हूँ और आकाशवाणी बरेली के अनेकों ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें बच्चों का प्रोग्राम है, नन्हे मुन्ने बच्चे आकर अपनी कविताएं सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे। घर आंगन नारी संसार की तो मैं बहुत ही फैन हूँ क्योंकि यहाँ पर दी जाने वाली जानकारियां सूचनाएं न केवल शहरी स्त्रियों के लिए बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी होती हैं। नारी संसार में और घर आंगन में दिए हुए कार्यक्रमों से प्रेरित होकर मैंने अनेकों बार रेसिपी आदि भी ट्राई करी है और उसमें सफल भी रही हूँ। मेरा ये मानना है कि रेडियो एक ऐसा साधन है, आकाशवाणी एक ऐसा साधन है जो कि सबको सुलभ है और इसका लाभ समाज को निरंतर प्राप्त होता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस सफर पर मैं उन तमाम श्रोताओं को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ जो इस सफर में हमेशा से उसके साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मेरा मानना है कि रेडियो जैसे आकाशवाणी जैसे साधन को हम घर घर तक पहुंचाएं और जब से ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आए हैं तब से तो आकाशवाणी हर व्यक्ति के हाथ में ही जैसे पहुंच गई है। 90 वर्षों के आकाशवाणी के सफर पर मेरी तमाम श्रोताओं को और आकाशवाणी के को प्रसारित और प्रचारित करने में साथ देने वाले तमाम टेक्नीशियनों को, प्रस्तुतकर्ताओं को मेरी अनेकों अनेक बधाई तथा शुभकामनाएं।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने में रेडियो श्रोता मीनाक्षी अस्थाना को। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं ये संदेश।
0: आकाशवाणी के दीवानों के लिए एक हम छोटा सा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आप अगर आकाशवाणी के दीवाने हैं, आप सब में दीवानगी है आकाशवाणी के प्रति, तो आप मोबाइल उठाइए, अपना वीडियो बनाइए और वीडियो में बताइए कि आपने पहली बार आकाशवाणी को कब सुना और अपनी एक यात्रा के बारे में बताइए कि कब कब सुनते रहे, किन हालातों में सुने, रेडियो का कौन सा सेट आपने इस्तेमाल किया और भी बहुत कुछ आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन आपके वीडियो की 2 मिनट होनी चाहिए। और जो लोग वीडियो नहीं बना पाए वो ऑडियो भी भेज सकते हैं क्योंकि हमारा तो माध्यम ही है रेडियो। तो आपकी जो वीडियोज़ हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ेंगे, जो भी चुनिंदा अच्छे अच्छे वीडियो होंगे। तो और कहाँ भेजना है ये भी नोट कर लीजिए, आकाशवाणी बरेली @gmail.com, आकाशवाणी में AKSHVANI बरेली BARREILLY, आकाशवाणी बरेली @gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है, मात्र 2 मिनट का वीडियो शूट करना है, सेल्फी ले सकते हैं या फिर किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए सामने से। तो जल्दी से जल्दी आप अपने वीडियो भेजिए, हमें आपके वीडियोस का इंतज़ार है क्योंकि आकाशवाणी की दीवानगी चारों तरफ फैल रही है और उसके दीवाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र, जहां पर आपको मिलता है गीत संगीत और ज्ञान का बंपर एंटरटेनमेंट। लीजिए प्रस्तुत है आपकी पसंद। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद के सुरीले और कर्णप्रिय सफर को लेकर हाजिर है आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। तो देखते हैं आज हमारे किन किन श्रोताओं ने अपनी फरमाइशें भेजी हैं। आप है हमारे पुराने श्रोता खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकश अरोड़ा। बहेड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम, आप हैं सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। कृष्णा पार दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना, गांव गड़ी कोठा जिला पंचकुला से सिराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर अंसारी और समीना अंसारी। सुनना चाहते हैं मांग भरो सजना फिल्म का ये गीत आशा भोसले, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। आनंद बख्शी गीतकार हैं और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तेजाब। इस फिल्म में आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार के युगल स्वरों में गीत। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। अजीत नगर मलोट पंजाब से आप हैं चिंदर सिंह चिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और उनकी लाडली पोती रौनक दीप कौर। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। इसी गीत के सुनने की फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ चूली लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खलीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा ने। शारदुल शहर राजस्थान से आप हैं राम कुमार रेवाड़, चंदकला रेवाड़। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, मैजब निसार अंसारी, बेडी नुजहत फातमा, अबरार अहमद अंसारी, इसार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन उर्फ बन्ने भाई और पप्पू भाई अंसारी ने।

बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से आप हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी। जाओ गांव जाखौत से शंभुदयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खट्टक। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराट बटगुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धनधरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का। आप है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, गीतिका खोरवाल, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश। ग्राम कोटा मक्खन बरेली से आप हैं अफरोज अंसारी, फारूक अंसारी। श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से हरिभाऊ बिडवे, चिरंजीव अनिकेत, सोनवणे, शुभांगी श्रावण, सौभाग्यवती अनीता बिडवे। तो सुनते हैं तेजा फिल्म से ये गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर?
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: क्रांति। इस फिल्म में आप सुनेंगे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के युगल स्वरों में गीत। शब्द रचना है संतोष आनंद की और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश व भूवेश कुमार कंबोज। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेन कुमार डूडी। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल बाबू, प्रियांश भाव्या देवांगन। पद्मा टॉकीज दीपानगर मध्य प्रदेश से आप है हमारे पुराने श्रोता सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। आप हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, लेकिन आपने अपना पता नहीं लिखा है। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। आर्यनगर कोका भिलाई से आप हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल।

अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नन्ही जंगेल। आप लोगों से एक इल्तिजा है कि आप एक बार में एक पते के साथ अपने परिवार के लोगों का नाम ही लिखिए, दो दो लोगों के नाम न लिखें और बार बार रिपीट कमेंट न करें। जसपुर उत्तराखंड से रियासत सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिना नूर, मौला अलवायान, शेरकोट बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीम परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, हिना कौसर। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। इसी गीत को फरमाइश भेजी है धनोरी तेलीवाला, उत्तराखंड से निसार सलमानी, नशा सलमानी, बेबी आलिया और रयान बाबू ने। बागपत उत्तर प्रदेश से आप हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। ग्राम लखमपुर विकासखंड भोजीपुरा, जिला व तहसील बरेली से आप हैं संजीव शर्मा। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, विविधा वंडलकर। हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, डॉक्टर अफजाल मलिक, संदीप मक्कड़। अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य, सक्षम शाक्य। इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल से आप हैं मोहन सिंह रावत, ममता रावत और फान्या। तो सुनते हैं फिल्म क्रांति का ये गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद देवेंद्र रावत के साथ। मित्रों चलते कार्यक्रम के बीच में फोन ना करें, उससे हम भी डिस्टर्ब होते हैं और आप भी अपना समय जाया करते हैं। बाहर आने तक इस फिल्म में आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास के युगल स्वरों में ये गीत। गीतकार हैं इब्राहिम अश्क और संगीतकार हैं राजेश रोशन। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना भरत कुमार, कस्बा उगहती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस गुप्ता, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता, धाड़ी नांदुरा महाराज से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे, गांधीबाग अंकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर, कदमा जमशेदपुर से आप हैं चिन्मय महतो, शिवांश मंडल, जेल रोड दिल्ली से लालबाबू दीवाना, उमराज, दिव्य भारती और साथी, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मरुत राव पांचाल, शाजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, जिला गंगानगर से सतीश शर्मा, रोशनी, भावना, गरिमा, हिमांशी शर्मा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। आप हैं हमारे पुराने श्रोता रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, महेशगेट नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव ज्योति रानी, गुरुमंत कौर, मनु

उदयपुर राजस्थान से आप हैं सविता शर्मा पायल पूनम। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अजान अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। मजरा दौलतपुर आंवला जिला बरेली से भगवान सिंह यादव, ब्रजपाल लोधी, गांव हीरा वाली फजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। अनारकली बाजार जगराओं से आप हैं हमारे श्रोता सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव। लखांड परिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। इसी गीत को फरमाइश में आई है गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोत्रे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। सरलाही सोकनाहा नेपाल से आप हैं अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा, वंदना कुमारी शर्मा, प्रियंका कुमारी शर्मा और उनके सारे साथी। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। आप हैं सनावस शेख मूसा और बानो भी, आज आपकी वैवाहिक वर्षगांठ है, हमारी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। तो सुनते हैं बाहर आने तक का ये प्यारा सा गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है।
2: मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर?
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म में आप सुनेंगे लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर के युगल स्वरों में गीत। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। ये फरमाइश हमें आई है भाटपारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेबी हसनिका जोशी, बेबी वेदेही जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती कौरी और ओम कुमार सुरलकर। जिला खरगोन सनावर मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुजो वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना, गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा, काटा रोड वाशिम महाराज से मास्टर विठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे, परदी सुरेशे, मायरा सुरेशे,

थाने के सामने आलागंज शयानपुर से आप हैं डॉक्टर आरवी सिंह, अजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय यादव। ग्राम धुर्राबाधा भाटपारा छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू। कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवण, अनीता, राहुल और भाविष्टी। दतरेंगी भाटपारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेन मणि वर्मा, नोखिलाल वर्मा। जय जिनेन श्रोता संघ परमणि महाराज से रूपे संगई, महेश संगई, प्रज्ञेश संगई, प्रतेश संगई और पूरा संगई परिवार। गांव टोरवाल नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रेम थांदी, वेबी, वामिका और वाणी थांदी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। कटरचात का पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य, माधवी मौर्य। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। इसी गीत को सुनना चाहे गंजुडवारा से शमशु कुमराही, शाहीन, फातिमा और अनु ने। ग्राम चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य, जिला बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर। मालवर रेडियो श्रोता संघ ग्राम कुलबालोद तहसील अलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से कुंवर कृपाल सिंह, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़।

थे रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। इसी गीत को सुनना चाहे गाड़ी खाना चायबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, नितिन विश्वकर्मा, सावन, सचिन और शक्ति ने। आप हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लाम उन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान, दानिश हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैज अल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर। एवर ग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से आप हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। इसी गीत को सुना चाह रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से, आपका नाम मैं पढ़ चुका हूं। आप हैं हमारे पुराने श्रोता चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। मजनूगा टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सुनते हैं ये गीत।

पेंटर बाबू। इस फिल्म में आप सुनेंगे महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में गीत। गीतकार है मनोज कुमार और संगीत है उत्तम सिंह का। और सुनने की फरमाइश है आप सबकी।

पंचकुला सेक्टर 9 से आप हैं आशु चौक, अश्वनी चौक, गोविंद चौक, टॉनी, दीवान, लव, दीवान, राधे, भाविक, ढींगड़ा। रानी तालाब दहिया धनबाद झारखंड से आप हैं रामचंद्र गुप्ता, श्रीमती शोभा गुप्ता, निखिल, आर्यन, मयंक, रुद्र, लवली गुप्ता।

खिल आर्यन मयंक रुद्र लवली गुप्ता एलबी गुप्ता बुल्डाना मनास से नरेंद्र नरवाड़े ज्योति नरवाड़े आकांक्षा नरवाड़े आकाश कुमार बाबा कुटीर रायगढ़ से आप हैं शिव कुमार चौहान संक्रांति चौहान रितेश चौहान राजेश्वरी चौहान उत्कर्ष चौहान अलकनाथ मंदिर के सामने बरेली से आप हैं बेचेलाल गंगवार गुड्डी देवी प्रशांत देव ज्ञानेन्द्र देव इला देवी बर्फा देवी सुनील यादव संजय अग्रवाल अश्विन कुमार मास्टर विनोद दीक्षित और राज महावीर कश्यप रमेश चंद सैनी रॉबिन भाई गांव खारी अंडहाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया देवेंद्र राजपाल अभिषेक योगेश पूजा अर्जुन नव्या बिजारनिया जिला बरेली तहसील फरीदपुर ग्राम व पोस्ट नगरिया विक्रम खन्ना सिंह राठौर प्रिंस राठौर सोनी राठौर अर्जुन राठौर अवनीश राठौर शुक्लपुरा बनारस से आप हैं परवेज अहमद कस्बा उगैती जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से सद्दाम हुसैन सिद्दीकी सितारा सिद्दीकी साद सिद्दीकी समर सिद्दीकी सादिक सिद्दीकी गणेश वाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार चेतन सुतार सारिका सुतार मंसूरी रेडी लिस्नर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून निशा शबिस्ता मोहम्मद नजीब पलक लुबना और यश मंसूरी गांव खोकरावाली श्रीगंगानगर से विनोद बारसा विशाल बारसा विकास बारसा रोशनी बारसा और शगुन बारसा खरसावा झारखंड से सुकरा नायक मंजू नायक जलेश्वर नायक युगौतर नायक शिवाजीनगर बडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े इंदिराबाई खोबरखेड़े शिवसागर खोबरखेड़े सौभाग्यवती शकुलिताई खोबरखेड़े दीपाली सुनैना स्वराज तनुज मरदसा गेट भावपुर मुंडियाऊ जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी कामरान निषाद अरमान निषाद नवेद इरशाद अजरा तबस्सुम भोपालगढ़ राजस्थान से आप हमारे श्रोता हैं धर्मेंद्र चिप्पा कपिल चिप्पा पूजा परिहार जमानिया गाजीपुर से आप हैं सूरज जायसवाल उर्मिल जायसवाल दीपक जायसवाल स्वाति जायसवाल बीट शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घट्टे संगीता घट्टे साक्षी घट्टे जयश्री मैत्रे अंजलि करवा बाला साहब करवे रामनिवास अग्रवाल धनंजय टूल पीबी कुलथे जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटखे श्रीमती नंदा बोटखे हनुमान बोटखे उत्तम जगदाड़े गांव भटुनी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से ईश्वरलाल मेहर सुमित्रा मेहर रेहांश मेहर सृष्टि मेहर और पूरा परिवार शाही मार्केट श्योहरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी अरफात अदीब और कादिर चौधरी बटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राय नारंग अंजु नारंग मोहित नारंग तानिया नारंग जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास आशा देवी राघव कुमार भानुप्रिया शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल आशा सपकाल विशाल सपकाल दयानंद कॉलेज भवानी पेट सोलापुर से आप है हमारे श्रोता विष्णु मस्किन रीता मस्किन वानी आरव कचंद्र कला गणेश काशीनाथ संगीता मस्किन आरोही प्रियांशी सोनू बडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा मौर्य बस्ती सुरखा बरेली सिटी से रामगोपाल मौर्य कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान मोहनी चौहान कल्पे चौहान बेबी गार्वी बेबी बॉय शिमाश ग्राम धरदई सरगवा छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा श्रीमती सुनीता पटवा हर्ष कुमार पटवा विनीत कुमार पटवा कुमारी क्रिस्टी पटवा चक 14 पीएसबी जिला श्रीगंगानगर से कुलदीप सिंह राजविंदर कौर संदीप सिंह जसकरण सिंह हरदीप सिंह मनराज विर्क विराटनगर नेपाल से अरुण चंद शर्मा रेणुका शर्मा और साथी उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी मधु गोस्वामी आशी गोस्वामी शिवन्य गोस्वामी अन्नू गोस्वामी
ग्राम पंचायत

याद बठेना पाठन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, बंटी बबली वर्मा। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, जगदीश चौहरी। नई बस्ती गंजडुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। आइए सुनते हैं पिंटर बाबू का ये गीत।

आपकी पसंद। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आइए अब सुनते हैं सबरंग। सबरंग में पहली प्रस्तुति है सुरेश वाडेकर के स्वर में ये प्यारी सी गजल।

सबरंगा भी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए अब सुनते हैं कुछ लोकगीत लोकरंग में। सुनते हैं लोकगीत रुचि गुप्ता के स्वर में।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30
1: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
2: अगला लोकगीत है अंशुना सक्सेना के स्वर में।

0: अभी आपने सुने कुछ लोकगीत लोक रंग में। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए अब सुनते हैं FM रेनबो प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर विकास खंड स्तर पर ग्रामीण मिनी स्टेडियम का विकास करेगी, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई अभाव न हो। गोरखपुर में बनने जा रहे इंटरनेशनल स्टेडियम को 392.94 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। स्टेडियम का निर्माण 23 दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 के छात्रों के लिए परिणाम घोषित करने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में एक नोटिस जारी किया है। CBSE ने कहा है कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है, वे एक संचरित समीक्षा प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। CBSE ने सूचित किया है कि छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रूपये है। इस बीच समस्याओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन 26 से 29 मई के बीच किए जा रहे हैं। चित्रकूट में जेठ माह के अंबावस मेला के मद्देनजर आज पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने निर्देशन में प्रमुख मंदिरों और घाटों की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग अभियान के दौरान डॉग स्क्वाड और LIU की संयुक्त टीम ने रामघाट आसपास

आसपास के मठ मंदिरों और क्षेत्र की चेकिंग की। इस दौरान बम निरोधक दस्ते ने परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण भी किया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

और आज की जो पार्टी है फन वाली, वो मेरी तरफ से है, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रु पर, जिसमें शालिनी आ चुकी है लेकर फैमिली फन, है ना। इसीलिए सोचा इस प्यारे से गाने से शुरू किया जाए और बाद में कोई बात की जाए। तो आज हम क्या कर रहे हैं घर पर, स्माइल के साथ रेडियो सुन रहे हैं। कितने आसानी से बताते हैं ना, रेडियो सुन रहे हैं भाई। और रेडियो सुनने के साथ क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आज छुट्टी होती है, छुट्टी करनी नहीं है किसी की छुट्टी का कोई एंजॉय करना है ना। तो आज क्या किया जाए, अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठे हैं, अपने भाई बहनों के साथ बैठे हैं, बच्चे हैं घर पे, तो उनसे आज चलिए बचपन की जो फनी शरारतें थी हमारी, उनको शेयर किया जाए और अपने बचपन में वापस लौटा जाए। करेंगे ना ऐसा हमारे साथ, और करते करते आपको हमसे जुड़ना है, अपनी बात को हमसे शेयर करना है, कहाँ पर, fmakashwani@gmail.com पे। तो देखते हैं होता है कितना ढेर सारा फन। अगर हम चाहेंगे तो हम फन करेंगे, अगर हम चाहेंगे तो उदास हो जाएंगे, तो हम क्यों ही चाहेंगे उदास हो, है ना। तो चलिए एक घंटा मिलकर करते हैं फन।

मस्त मस्त प्यारे से गीतों के साथ। और सबसे बढ़िया वाले ये जो शरारत होती थी, अच्छा बचपन वाली शरारतों के आगे शालिनी ने फनी क्यों लगाया, क्योंकि वो जो शरारतें होती थी ना वो रियल में फनी होती थी। और अगर वो शैतानियां अगर हम जब बड़े हो गए हैं करें ना तो क्या कहा जाएगा, सोचिए सोचिए। वो वर्ड नहीं हम बोलने वाले, लेकिन उसके लिए क्या कहा जाएगा आपको। तो बस फनी शरारतों की होने वाली है बात। और मेरी तरफ से शुरुआत हम करते हैं, सबसे पहले तो अक्सर और हमेशा बच्चे जब स्कूल जाने का मन नहीं होता है तो बुखार का बहाना कम बनाते, पेट में दर्द हो रहा है ये ज्यादा कहते हैं। शायद इसलिए अब समझ में आया कि वो दर्द दिखाई तो देता नहीं है पेट के अंदर का, बुखार बताएंगे तो भाई मम्मी टच करेंगी, देखेंगी, थर्मामीटर लगा देंगे, लेकिन पेट के दर्द के लिए कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं बना है जो पता चल सके कि दर्द हो रहा है या नहीं। तो चलिए कुछ इस तरह की शरारतें भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा साथ दीजिए प्रोग्राम फैमिली फन में।

शुरुआत कर दी है ना आपने अपने घर पे, शरारतों की लड़ी लग गई है ना। एक नहीं होती थी, दो नहीं होती थी, तीन नहीं, हर वक्त बच्चों के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। और आज जब हमारे बच्चे हैं, हमारे आसपास हैं, जब वो कुछ करते हैं तो कभी कभी

तो हम बहुत खुश होते हैं और कभी कभी तो इतना नाराज होते हैं उन पर कि पूछिए मत, कि इसको कुछ पता नहीं है, इसको कुछ समझ नहीं आता है, ये कैसे कर दिया तुमने। बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं, उन्हें प्यार से झप्पी दे देते हैं, यानी कि गले लगा लेते हैं बच्चे को। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों को डांटते मारते भी हैं, पनिशमेंट भी दे देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने दिन उन्हें याद रखने चाहिए, है ना। और याद है आपको, चुपके से फ्रिज से मिठाई या चॉकलेट निकाल कर खा लेना, और अगर जब पूछी जाती थी तो फिर क्या कहना, नहीं नहीं हमने तो नहीं लिया, अरे हमने देखा ही नहीं मम्मा, बिल्कुल, अरे पापा ने तो नहीं खा लिया, और अपना इल्जाम किसी और के सर पर मढ़ देना। याद आ रहा है ना आपको।

0: झुमका।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों

0: को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
3: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
2: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
3: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
4: धड़कन लखनऊ की
3: 100.7 FM रेनबो।

अच्छा दोस्तों, जब सैटरडे संडे होता है तो बड़ी खुशी होती है ना। लेकिन जैसे ही संडे बीतता है यानी कि रात होती है, तो थोड़ा सा दुख भी होता है कि नेक्स्ट डे से उसी काम में फिर से लग जाना है, भाग दौड़ की जिंदगी में फंस जाना है। लेकिन ये जो

भागदौड़ की जिंदगी है ना, इसे किसने चुना? हमने ही ना, अपनी जरूरतों को पूरा करना करते करते। हाँ, ये कह सकते हैं कि अपनी नहीं, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनों की जरूरतों को पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे पड़े हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कहाँ जाएं, क्या करें। लेकिन लेकिन जी हाँ, हम भूल चुके हैं खुद को कि हम कहाँ हैं। कभी तो अपने लिए समय निकालें। और ये जो हम कहते हैं ना कि इतनी थकान हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब चैन मिलेगा, तो मिलेगा। खुद से आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। चाहे वो समय आप अपनी पुरानी बचपन की यादों को ताजा कर लीजिए, अपनों के साथ बैठ जाइए, बच्चों के साथ बच्चा बन के देखिए, कहीं उस जगह पर जाइए जो आपको जगह बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आपने बहुत समय से उस जगह को देखा क्या, मतलब उस जगह पर गए नहीं, लेकिन उस जगह के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ये सारी चीजें जब दोस्तों आप करेंगे ना, तो सुकून जरूर मिलेगा। और यही सुकून जो है ना, आज के समय में बहुत बड़ी दौलत है, जिससे कि आप रिलैक्स होते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। और उस रिलैक्स होने के बाद जब आप काम करते हैं, जब काम करने के लिए सोचते हैं, तो वो काम बहुत से भी बहुत अच्छा होता है। चलिए, ये तो बचपन की बातों को याद दिलाने के लिए आपको वहां तक लाए थे। और नेक्स्ट वाली कौन सी आपकी फनी आदत रही होगी, बताइए तो जरा। जब हमारी पसंद की चीजें टीवी पे नहीं लगती हैं, तो हम क्या करते थे? बहुत आसान सा काम था, रिमोट ही कहीं छुपा देते थे और खुद ही ढूंढने का नाटक करते थे। ऐसा किया है आपने? सोचिए जरा।

दोस्तों याद आ रही है ना आपको अपनी बचपन की शरारतें, और उनको हम रिलेट कर पा रहे हैं ना अपने बच्चों से, जिन पर हम कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। और देखिए गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं और बच्चों के भी स्कूल की गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं, समर वेकेशन हो रहे हैं, साथ ही साथ ढेर सारा होमवर्क भी दिया जा रहा है ना। और अब जब आप सोचेंगे ना बच्चों को काम कराने के लिए, तो जैसा आप किया करते थे, होमवर्क पूरा ना होने पर अक्सर क्या होता था, हमारी कॉपियां ही गुम हो जाती थी, है ना। और न जाने उस गुम होने की कॉपियों की क्या क्या कहानी बनाते थे कि स्कूल ले गए वहां मिली नहीं, और मिली तो कैसे मिली, किसी को दिया भी नहीं और हमें घर पर भी नहीं मिली, और जब ज्यादा पूछताछ होती थी तो हम चुप हो जाते थे, और लास्ट में जब मम्मा हमारी बैग खोलती थी, सारी बुक्स कॉपियां बाहर निकालती थी, तो किसी बुक के ही बीच में वो कॉपी छुपी होती थी ना। हम सभी को बचपन में ये काम भी नहीं आता था, ना सही से झूठ बोल पाते थे, ना सही से कोई भी चीज छुपा पाते थे, और अपनी ही बातों में पकड़े जाते थे। और पकड़े भी क्यों ना जाएं, क्योंकि जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारी माँ होती है खास तौर पे, हमारी हरकतों से ही भाप जाती है कि इसने सही किया है या गलत, है ना।

दोस्तों 12:40 और 3 सेकंड हो चले हैं प्रोग्राम शत्रुपा में। आज हम फैमिली फन की बात कर रहे हैं और उस फन से याद आ गई हमें बचपन की सबसे फनी शरारतें जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। अच्छा, शहर की बात हो या गांव की, सारे बच्चे शरारती होते हैं, बस शरारतें उनकी अलग अलग होती हैं। जो गांव के बच्चे शरारतें कर पाते हैं वो शहर के बच्चे नहीं कर पाते हैं। जैसे कि जब गांव में खेतों में पानी लगाया जाता है ना, सिंचाई की जाती है जिसे पानी लगाना कहते हैं, तो वो ट्यूबवेल चलता है और वहां पर एक बड़ा सा गहरा गड्ढा भी होता है, बहुत गहरा नहीं, लेकिन उसमें बच्चे गर्मियों में बहुत इंजॉय करते हैं। उस पानी में खूब सारा नहाते हैं, कई गांव में नहर भी होती है, तालाब भी होती है, लेकिन उन्हें ऐसा करने पर डांट भी बहुत पड़ती है। जब वो शरारत बहुत ज्यादा वाली शैतानी में बदल जाती है, क्योंकि उससे खतरा होता है कि बच्चा छोटा है और जगह ज्यादा गहरी है और जस्ट उसके धार के नीचे अगर आके आप नहा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हमारे मम्मी पापा बहुत नाराज होते हैं। बाग में जाना, आम तोड़ के लाना, कुछ ना कुछ तोड़ के लाना और वहां से भगाए जाना, ये सारी जो शैतानी है ना दोस्तों, वो शहर में नहीं कर पाएंगे आप चाह कर भी। और शहर वाले बच्चे कैसे करते हैं, जब गर्मियों की छुट्टी में वो अपने नाना नानी के घर या बहुत सारे बच्चों के दादा दादी का भी घर होता था गाँव में और वो शहर में रहते थे अपने मम्मी पापा के पास, तो जब हम जाते हैं मिलते हैं तो इस तरह की ढेर सारी शैतानियां करते है ना। सबकी अलग अलग सोच, सबकी अलग अलग खुशी।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए

0: विज्ञापनों की बुकिंग,
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
0: ओनली ऑन यूथ वेव,
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: हर रोज सफर की हमारी यूं शुरुआत होती है, सुबह 6 बजे पुष्पांजलि से पहली मुलाकात होती है। दिन भर का समय कैसे बीत जाता है, रेनबो अपना हर रंग मानो बिखेरता जाता है।
3: रंग दे तुम है गेरुआ।
2: रात में तब सुकून आता है जब सदाबहार गीत कोई हमारे कानों में गुनगुनाता है।
4: मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को।
2: तमाम सारी जानकारी मनोरंजन के संग सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर सुनना ना भूलें, सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
5: सात रंग का इंद्रधनुष है,
6: सात सुरों की सरगम है,
7: सात जन्म है सात समंदर,
5: सात हमारा हरदम है,
7: जिंदगी के सतरंगी रंग
6: FM रेनबो के संग।

दोस्तों 12:54 और 44 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शत्रुपा को यहीं पर करते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम हो चुके तेरी बात में, आज हम बात करेंगे आपके वीकेंड का प्लान। भाई सैटरडे संडे आप क्या कर रहे हैं बस बता डालिए, हमसे जुड़ जाइए fmakashwani@gmail.com के जरिए और सुनते रहे क्या FM रेनबो शालिनी के साथ।

0: नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे FM रेनबो प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं श्रोताओं के पत्रों पे आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत। अनुरोध गीत के आज के सफर को लेकर मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है फिल्म पुलिस और मुजरिम से। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की। गीतकार हैं दिलीप ताहिर और संगीतकार हैं बप्पी लहरी। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। आप हैं मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। अलीगंज रोड ग्राम महेलिया से आप हैं हसमत खां हसरत खां अजमत खां और डालमिया। आप हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल रीता देवी शिल्पा रानी आकाश कुमार। इसी गीत को सुना जाए आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैडी शर्मा सौरभ शर्मा शाइना शर्मा ने। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी जमनुशा बेगम अक्रम सैफी आबाद खान। आप हैं हमारे पुराने श्रोता अशरफ खां पानी की टंकी के पास बरेली से राम प्रसाद शर्मा जयश्री देवी वंदना शर्मा महिमा मनोरमा देवी अजय शर्मा वंश और कनिष्का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पे पुलिस और मुजरिम का ये गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म जमाने को दिखाना है से, आवाज है शैलेंद्र सिंह की और गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। सुनना चाहा है आप सबने महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटपारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, ज्ञावेंद्र कुमार वर्मा। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। अब हमारे पुराने श्रोता बहेड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम, कहकशा, दानिश आदिल और शफक। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लाल मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और मस्तान बाबा। परिमहल कासगंज से आबाद खान, अल्ताफ नबील, असलम सैफी, शमसुल कमर, उस्मान अंसारी। बरेली गैंड पश्चिम केबिन के पास चनेटी बरेली से विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागनी श्रीवास्तव। आप हैं रेलवे रोड गंजुडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख। तो सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पे जमाने को दिखाना से ये गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म कुर्बान से, आवाजें हैं अनुराधा पटवाल और उदित नारायण की, गीतकार है समीर, संगीतकार हैं आनंद मिलिंद और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। महाराष्ट्र चिंगोली से आप हैं शाहजी बोटखे, नंदा बोटखे, हनुमान बोटखे। कोटवा नारायणपुर बावपट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और इनकी प्यारी बिटिया सोनम। सारिमपुर बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा कासू अंसारी और मोहम्मद समी अंसारी। इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बीबी अंसारी। छठियापुर का डुमराव से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। कस्बा शीशगढ़ से इलियास इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी और गुड्डू इदरीसी। इसी गीत को सुनना चाहा है करूला मुरादाबाद से अयूब खान और सिंधौली मीरगंज से जीशान वारसी, इमरान शेख ने। तो सुनते हैं ये गीत।

कयामत से कयामत तक। इस फिल्म में आप सुनेंगे अलका याग्निक और उदित नारायण को। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा। नई मस्जिद करेली बरेली से इंतजार अंसारी, अख्तर अंसारी, आरिफ अंसारी। आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, मुतरवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश बंटी, रूही भारती, रचना भारती, एकता भारती, कुमारी दिव्या भारती, ममता चौधरी, श्रीमती ओमती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। कुतुबखाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इरफान, आमिर, इकबाल, अफजाल, साजिद अबी, समाया, सिरिन, सबनूर, फैजल, अमान और मम्मी पापा। आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण कोवर, नीति, पवनीत और विक्रमजीत कोवर।

आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत देवेंद्र रावत के साथ। बादल, इस फिल्म में आप सुनेंगे कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम के युगल स्वरों में गीत। गीतकार है समीर और संगीतकार है अनु मल्लिक और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। क्रम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, अमन यादव, सोनी यादव, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता। फरीदपुर ककराला बदायूं से आनंद यादव, सनोज यादव, सूरज श्री यादव। ग्राम पजौनिया तहसील कों जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येन चंसौलिया, आदर सार्थक अलौकिक आराध्या चंसौलिया। इसी गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है नाज रेडियो क्लब करेली परेली से निसार अहमद अंसारी, महजब निसार, बेटी नुजरत फातमा, अबरार अहमद इकबाल, इसरार तस्लीम रजा और मुन्ना भाई ने। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज से आप हैं पवन गौड़, कुसुम गौड़, सुयश, आशीष और राधिका गौड़।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म इश्क विश्क से। आवाजें हैं अली सचिनॉय और कुमार सानू की, और गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं अनु मलिक। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। गांव लाहौडडा, जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। ये खाता में भेजा है बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव ने।

यहीं से हैं यूनुस खान, सरताज बेगम, सोफिया खान। शेरनगर बहेड़ी से आप हैं लईक अहमद इदरीसी, मोहम्मद अशरफ इदरीसी, मोहम्मद अतीक इदरीसी, यास्मीन शिफापी। कासम कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शफी इदरीस, नूर मीना, इरफान और कासिम मीना। जिला बरेली ग्राम करेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी, सम अंसारी और अमीर भाई अंसारी।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म बाजीगर से, आवाजें हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर की। शब्द रचना है गौहर कानपुरी की और संगीतकार हैं अनु मलिक। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित खुशी गोस्वामी। बुलडाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमेत कुमार दामोदर। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा ने। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदय खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोता मुस्तबा खान, रऊ भाई, शहीद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। एटा रोड गंजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता अनन्या, ऐश्वर्या, श्रेय कुश, रिंकू टिंकू, रीना गौतम। एकता कॉलोनी रोहतक से आप हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा, साहिल कांगड़ा। एक हाथ में भेजा है टेगोर गार्डन नई दिल्ली से हमारे पुराने श्रोता स्वीटी छाबड़ा और रविंद्र सिंह छाबड़ा ने। तो सुनते हैं फिल्म बाजीगर से ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अंतिम गीत है फिल्म सागर से, आवाजें हैं आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। आप हैं हमारे पुराने श्रोता गांव चौहलादा बागपत से संजय डिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार और मोहम्मद आशिफ। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। नखासा रोड उत्सव बदायूं से डॉक्टर मसूद खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना, करवीर गोडवाल, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी, भरत यादव। मोहल्ला गड़ैया बरेली से मोहम्मद कैसर शमसी, मोहम्मद अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवेश शमसी, रजिया शमसी, बेबी। और इसी गीत को सुनना चाहा है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमर राज, दिव्या भारती, वसीम अकरम, बेबी जोई और गुड़िया खातून ने।

इसी गीत के साथ आज का अनुरोध गीत संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त देवेंद्र रावत को इजाजत दीजिए, नमस्कार। और आगे के कार्यक्रम लेकर हमारे मित्र हरीश आपके साथ होंगे।

0: चुनाव अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत कार्यक्रम देवेंद्र रावत के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अपराह्न के 2 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जनमंच। इस कार्यक्रम में आज विषय है उच्च शिक्षा में युवाओं की भूमिका और चुनौतियां। प्रतिभागी हैं श्री आदर्श कुमार, सुश्री काज रंगवार और संचालन कर रहे हैं ब्रजेश तिवारी।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कार्यक्रम जनमंच ये एक ऐसा मंच है जिसमें हम हमारे समाज के ही, आपके ही बीच के और हम सबके बीच के ऐसे वर्गों को प्रदर्शित करते हैं, उनकी राय को प्रदर्शित करते हैं और एक ज्वलंत और एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक विषय लेके आते हैं आप सभी के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। और उस विषय के अंतर्गत हम जानते हैं हमारे मेहमान जो भी हमारे बीच उपस्थित होते हैं उनके अनुभवों को, वो एक राह देते हैं, परामर्श देते हैं और उनके जीवन के बारे में जब हम जानते हैं तो वो आदर्श स्थापित करते हैं हमारे उन नौनिहालों के लिए, उन बच्चों के लिए जो उस राह पर चलना चाहते हैं या अपने आप में भी उस बात से संबंधित जो भी तथ्य और कथ्य होते हैं उन सारी ही बातों को लेकर। इसी कड़ी में आज हम कार्यक्रम में जो विषय लेकर हाजिर हैं वो विषय है उच्च शिक्षा में युवाओं की भूमिका और चुनौतियां, यानी कि हायर एजुकेशन में युवाओं की क्या रोल है और क्या उनके सामने टास्क हैं, चुनौतियां हैं। इस विषय पर आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए उपस्थित हैं आदर्श कुमार, जो कि बीटेक बायोटेक कर रहे हैं, साथ ही साथ आप IIT रुड़की से एक सर्टिफिकेट AI डेटा साइंस का कोर्स भी कर रहे हैं। हमारी दूसरी प्रतिभागी हैं आज की कार्यक्रम की काजल गंगवार जी, जो कि BA MS का कोर्स कर रही हैं पीलीभीत के सरकारी कॉलेज से, और आप दोनों ही उच्च शिक्षा में ग्रहण कर रहे हैं। और आज हम जानेंगे इस पूरे प्रोग्राम में इनके जीवन से जुड़ी, इनके इन कोर्सों से जुड़ी बातें और आपके लिए भी वो लाभप्रद होंगी। कार्यक्रम में आज आप हमारे स्टूडियोज में बता रहे हैं आदर्श कुमार जी और काजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: शुरुआत करते हैं आदर्श जी आपके साथ। जैसा कि आपने हमें बताया कि आप कर रहे हैं बीटेक बायोटेक, और जो कि अपने आप में उच्च शिक्षा है, और इस कोर्स को यहाँ तक आप परस्यू कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने बताया कि आप IIT रुड़की के AI के डेटा साइंस में कोर्स भी कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स। तो यहाँ तक पहुँचने में आदर्श कुमार को किन किन समस्याओं का या किन किन चीजों का सामना करना?
3: जी, मेरा हमेशा से रुझान था टेक्नोलॉजी और बायोटेक, जैविक विज्ञान में।
1: जी,
3: मैं हमेशा से ऐसी फील्ड में जाना चाहता था जहाँ पे दोनों चीजों को मैं साथ में लेके चल सकूं।
1: जी,
3: मेरे को हमेशा से इन चीजों में इंटरेस्ट रहा है।
1: जी, जैसा आपका इंटरेस्ट आया, सिर्फ इसीलिए आपने इस क्षेत्र में आए, ये तो एक बात आई। लेकिन अब जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई कई बार हमारे मार्क्स पूरे नहीं आ पाते हैं, हम एक अटेम्प्ट करते हैं, दूसरा अटेम्प्ट करते हैं, या आपका सब कुछ चाहा और तैयारी की और क्लियर करते गए और ऐसे?
3: जी, ऐसा हमेशा होता है। जब भी हम 12वीं पास करते हैं उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाम की

0: चीज हमारी जिंदगी में आती है।
1: जी,
0: कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई कह सकते हैं आप आसान चीज नहीं है।
1: जी,
0: बहुत कंपटीशन है भारत में, हर तरीके के लोग हैं। आप जब भी एग्जाम देने बैठते हैं आपसे बेहतर ज्यादातर निकल ही आते हैं।
1: जी,
0: लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत करना छोड़ दें।
1: जी,
0: बात यह होती है कि आपने मेहनत की, अच्छा टाइम लगाया उसमें, लेकिन उसके बाद भी नहीं निकला।
1: जी,
0: वहां पे आपको एक स्टेप पीछे लेना चाहिए और सोचना चाहिए क्या मैं इस चीज में आगे काम कर सकता हूँ या नहीं।
1: आपने एक इम्पोर्टेंट बात की कि कई बार जैसे बताते हैं कि बल्ब का आविष्कार करते समय एडिशन ने भी जो है कई बार विफल हुए और फाइनली उन विफलताओं से सीखा। जब उनसे पूछा गया एक साक्षात्कार में तो उन्होंने कहा कि क्या चीज आपको, ये आपने 100 बार प्रयत्न करके इतना बताया, बोले मैंने 99 बार सिर्फ ये पता चला मुझे 99 बार में कि इन इन चीजों को करूंगा तो बल्ब नहीं बनेगा। वो जो आपने बात की कि हमारी,
0: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्या कर सकता हूं से ज्यादा जरूरी जानना यह है कि मेरे से क्या नहीं होगा, ताकि आप उस चीज पे काम कर सकें, मेहनत कर सकें। उसके बाद अगर फिर भी बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आपसे नहीं होता है तो वहां पे आप समझ सकते हैं कि आप इस फील्ड के अलावा भी और भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती कि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आपके पास हर तरीके के रास्ते हैं, आप दूसरे रास्ते पे भी चल सकते हैं। जरूरी नहीं आप जिस रास्ते पे कोशिश कर रहे हैं वहां पे आपकी एबिलिटीज हों, स्किल्स हों, ये हो सकता है कि आप दूसरे रास्ते पे जाएं वहां पे आपकी स्किल्स बेहतर हों।
1: तो आप गलत जगह, आप अपना रुझान, अपना चॉइस जो है वो अच्छे से चूज करिए। आपकी बात से ये चीज निकल के आती है।
0: जरूरी है कि सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी है।
1: एग्जैक्टली। तो अब हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में आज हमारी दूसरी प्रतिभागी काजल गंगवार जी। तो काजल जी, आपने जैसा कि बताया आप BAMS कर रही हैं, तो मोटा मोटी हमारे सभी श्रोताओं को हम बताते चलें कि BAMS जो है कोर्स को कंप्लीट करने के बाद भी नाम के आगे डॉक्टर लगता है, और ये डॉक्टर वो डॉक्टर नहीं होता है कि PhD होल्डर, एक MBBS के थ्रू भी हम लोग डॉक्टर बनते हैं, दूसरा बैचलर इन जो आयुर्वेदाज और ऐसा। तो इसके बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, क्या BAMS क्या होता है ये?
2: जी, हमारे समाज में अक्सर BAMS को ये माना जाता है कि मतलब वो MBBS जितनी प्रायोरिटी नहीं होती या फिर उसकी इतनी ज्यादा महत्वता नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे पुराने समय से जो चला आ रहा है तो वो BAMS ही वो मेडिसिन थी जो कि क्या कहते हैं लोगों को ठीक करती थी पहले। MBBS जो है वो विदेशी चिकित्सा है, लेकिन जो BAMS है वो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है। उसकी वजह से ही क्या कहते हैं मतलब जो मॉडर्न चिकित्सा उसका जनन हुआ है, वो उसकी जननी है।
1: तो इसको हम मोटा मोटी तौर पे कहें तो इसकी फुल फॉर्म अगर हम BAMS की कहें तो क्या निकल के आती है?
2: BAMS की जो फुल फॉर्म है वो निकल के आती है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें हम जो होते हैं इसमें हम पेड़ पौधों की सहायता से और अलग अलग मेटल्स के सहायता से क्या कहते हैं उनको प्यूरिफाई करके हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं। इसमें पंचकर्म बहुत फेमस इसका कर्म है जिसकी वजह से, और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो आयुर्वेदा होता है इसकी साइड इफेक्ट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप सही तरीके से दवाई लेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत मिनिमल होते हैं या नहीं होते हैं।
1: तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जनमंच, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में है दो युवा जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में युवाओं की भूमिका, चुनौतियां और इन सारी बातों पे। तो अच्छा काजल जी, एक प्रश्न, ये तो आप लोगों के दैनिक जीवन से हम लोगों ने पूछा है, कॉमन सी सामान्य सी बात हुई, यहां तक आप कैसे पहुंचे, आपसे भी हम इस विषय पे अगले पड़ाव पे जरूर आएंगे, लेकिन एक आम आदमी, एक आम युवा जो पढ़ रहा है, मान लीजिए हाई स्कूल या इंटर के बाद ही हम लोग राह चुनते हैं हायर, वो कैसे चुनता है, कैसे चूज करता है कि मुझे ये करना है, यानी आपने ही अपनी ये राह चुनी तो कैसे चुनी? तो कहने का मतलब यही है कि इसकी उच्च शिक्षा को चूज कैसे करते हैं।
2: जी, जैसे 10th के बाद जो CBSE बोर्ड में होता है 10th के बाद आपको स्ट्रीम आपकी चूज करनी होती है। उसके बाद अगर आपने बायोलॉजी की स्ट्रीम ली है तो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में माइंडसेट होता है कि हाँ मुझे नीट तो देना ही है। तभी से फिर क्या कहते हैं आप नीट के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। MBBS की तरह आपको इसमें भी नीट क्रॉस करना ही होता है। गवर्नमेंट सीट के लिए क्या कहते हैं आपको एक रेंज सेट होती है, वरना प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी एक मिनिमम मार्क्स सेट होते हैं। और उसके बाद फिर जैसे बच्चे जो होते हैं MBBS की ज्यादा तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे जिनका रुझान प्राकृतिक चिकित्सा में है, जो क्या कहते हैं जिनका प्रकृति से अलग ही जुड़ाव है, वो BAMS की तरफ जा सकते हैं। हाँ, तो ऐसे करके आप इसको अपने चूज कर सकते हैं। सही कॉलेज और सही मार्गदर्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें।
1: बहुत अच्छी बात आपने यहाँ से एक निकल के आई श्रोताओं की, सही मार्गदर्शन होना भी बहुत जरूरी है। आपकी कोशिश आप सही दिशा में कर रहे हैं, जैसा कि इससे पहले आदर्श कुमार जी ने बताया था। आदर्श जी, अब एक प्रश्न ये आता है कि जिस भी क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं, मान लीजिए आपने जो है वो बायोटेक के क्षेत्र को चुना, आपने MBBS के क्षेत्र को चुना, मेडिकल के क्षेत्र को चुना, इसकी तरफ मोटिवेटर्स, प्रेरक क्या वो पॉइंट्स हैं जो ऐसा लगता है कि आपको कब इस बात को लगा कि नहीं मुझे बायोटेक के क्षेत्र में जाना है, आपको कब लगा कि ऐसा कि मुझे ही BAMS करना है?
0: जी

0: ये सबसे पहले मुझे लगा 10वीं क्लास में।
1: अच्छा
0: 10वीं क्लास में हमारी एक बायोलॉजी की बुक थी, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर था,
1: ठीक है
0: चैप्टर 11 मेरे ख्याल से,
1: जी
0: जहाँ तक तो मुझे याद है।
1: जी
0: उस चैप्टर में जब मैंने टेक्निक्स पढ़ी,
1: जी
0: तकनीकें पढ़ी कि डीएनए को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके आगे क्या क्या स्कोप निकल के आ सकते हैं, ये आगे दुनिया को कैसे फायदा पहुंचा सकता है, तो मैंने उस समय निर्णय किया कि मैं बायोटेक चूज करूंगा और मुझे
1: अच्छा,
0: इस फील्ड में आगे काम करना है।
1: यानी कि जब हम शुरुआती दौर में होते हैं 10th, जैसा कि इससे पहले अभी काजल जी ने बताया था कि 10th के बाद हम लोग अपनी स्ट्रीम चुनते हैं, तो वहां से ये अगर मोटा मोटी तौर पे उच्च हायर एजुकेशन की बात करें तो बच्चा जब 10th में आता है तो वहां से उसको अपनी लाइन लेंथ तय कर लेनी होगी, या वो प्रेरक होगा, वो पॉइंट होगा कि वो उसको मेडिकल में जाना है, कॉमर्स पढ़ना है, कि अकाउंटेंट बनना है, कि श्रोताओं ये भी आपके लिए बहुत लाभान्वित और प्रमुख बिंदु है कि हमारे लिए वो प्रेरक स्थान अगर बात करें हायर एजुकेशन की, तो हम अपने बच्चों को रुझान को देखते हुए 10th एक ऐसा पॉइंट है जहां हमको डिसाइड करना होगा कि आगे की नाव किस दिशा में जाए। अच्छा काजल जी, एक प्रश्न आता है, प्रेरक की बात कर ली हमने, राह कैसे चुनते हैं ये भी कर ली, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं हायर एजुकेशन की अलग अलग स्ट्रीम में जाते हैं, कुछ मेडिकल आपकी तरह, कुछ आपकी तरह बायोटेक में, कुछ आते हैं लॉ के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कुछ है। तो इन सारी ही चीजों की बात करते हैं, इनमें एंटर करने की प्रवेश प्रक्रिया, इसमें दाखिला प्रक्रिया क्या है।
2: जैसे कि अगर आपको बीएमएस में एडमिशन चाहिए तो
1: जी
2: सबसे पहले तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो 11-12 से ही अपनी प्रिपरेशन साथ ही साथ मतलब शुरू कर देते हैं,
1: ओके,
2: लेकिन कुछ लोग होते हैं वो 12th के बाद डिसाइड करते हैं कि हाँ उनको बीएमएस करना है। तो फिर क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आपको नीट के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी,
1: जी
2: जिसमें कि 11-12 का ही आपका पूरा सिलेबस आता है,
1: जी
2: फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसमें आती है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा नीट के लिए। उसमें आप मिनिमम मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स तो लेके आने ही पड़ेंगे
1: जी
2: जो कि आपके प्राइवेट कॉलेज के लिए सफिशियंट है, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अगर दाखिला चाहिए
1: जी
2: तो उसके लिए थोड़े हाई क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वो आपको क्रॉस करने के बाद तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बीएमएस के एडमिशन मिल जाता है।
1: तो यानी कि नीट के प्रिपरेशन आपको जो है 11-12 के साथ आप साथ ही
2: हाँ
1: साथ
2: शुरू
1: करेंगे,
2: कर सकते हैं
1: तब आप जो है परिणाम आते हैं। तो ऐसा भी होता है कि किस कुछ लोगों को पहले ही प्रयास में सफलता मिल जाती है, कुछ
2: जी
1: लोग
2: जी
1: कुछ
2: जी
1: ज्यादा भी वेट करते हैं,
2: जी तो कुछ लोग पहले में ही कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत करेंगे, और 11-12 में बच्चे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं किसी को 1-2 साल लग भी जाते हैं, तो लेकिन अगर ऐसा है तो उसमें बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको उसके बाद जो चीज मिलने वाली है बीएमएस जैसी डॉक्टर आपके नाम के आगे लगने वाला है, तो वो मेहनत सारी सफल हो जाती
1: अच्छा
2: है।
1: काजल जी को क्या लगता है कि अब चूंकि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छी रैंक हासिल करके आप
2: जी
1: बीएमएस कर रही हैं,
2: जी
1: तो काजल जी को अब इस मुकाम पे आके क्या लगता है कि बच्चों को 11-12 के साथ अगर, या मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं उनका क्लियर हो
2: जी
1: पाया, या जो कुछ मिला वहीं से एंड टर्न हो जाना चाहिए, या अगर उनके मन मुताबिक नहीं मिला है तो वेट भी कर सकते हैं, आगे अगले साल अटेम्प्ट भी दे सकते हैं।
2: जी ये आपके ऊपर है। अब जैसे हो सकता है कि आपको जो कॉलेज मिला है आप उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट हो तो आपको आगे तैयारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको वो कॉलेज लग रहा है कि हाँ आपके अंदर और ज्यादा पोटेंशियल है, आप उससे बेहतर भी कर सकते हैं, आप अपनी पूरी मेहनत नहीं कर पाए थे, तो आप बेशक आगे जाके आप और ज्यादा तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा अच्छा कॉलेज आगे मिल सकता है। तो बस
1: तो
2: ये
1: आपको क्या लगता है आज आपके निर्णय पे, आप जहां से बीएमएस कर रही हैं कि इफ इट इज ओके, या ये बढ़िया है मेरे मन मुताबिक हुआ, या शायद ये कटम और बनता है ऐसा।
2: जी मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैं जहाँ हूँ मैं बहुत ही अच्छी जगह हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ
1: ओके
2: अपनी स्थिति से।
1: तो अक्षित जी अब बात करते हैं कि आप, हम लोगों ने प्रश्न लेके आए हैं दाखिला प्रक्रिया की, तो अलग अलग दाखिला प्रक्रिया हैं, बहुत सारी चीजें नीट और बहुत सारी, अब चूंकि आप बीटेक बायोटेक कर रहे हैं और जो है डेटा साइंस में आईआईटी रुड़की से एक सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रहे हैं, इस तरीके की और भी अन्य गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए बच्चे को किस तरीके से एंटर होना होगा, क्या प्रोसेस है, व्हाट इज द प्रोसेस।
0: नॉर्मली हमारा जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाला जाए,
1: ठीक है,
0: बीटेक वगैरह के लिए सीयूईटी या
1: ठीक
0: फिर
1: है
0: जेईई निकाला जाता है,
1: ठीक है,
0: लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपको एक से ज्यादा फील्ड में मास्टरी करनी है, आजकल देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्किल डेवलप करना, अगर आपके पास स्किल नहीं है केवल थ्योरेटिकल नॉलेज है तो वो आपको ज्यादा आगे नहीं ले जाएगी, आपका स्किल होना बहुत जरूरी है, तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पीछे ही भागें, आप अपने स्किल्स पे भी ध्यान दे सकते हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्सेज चूज कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा
1: एक,
0: तरीका
1: एक
0: है।
1: प्रश्न हमने रखा हुआ है, आगे ऑनलाइन कोर्सेज पे भी बात करेंगे। अभी चूंकि हम बात कर रहे हैं दाखिला प्रोसेस कि हायर एजुकेशन में, आप मान लीजिए आप ही के संदर्भ में बात करें तो बीटेक बायोटेक या इस प्रकार के कोर्सेज में दाखिला लेने की सामान्यतः क्या प्रोसेस है, बच्चा कैसे शुरू करेगा और एडमिशन पा पाएगा?
0: इन सब के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना होगा।
1: अच्छा,
0: ये एक तरीके का आप कह सकते हैं मस्ट है आज के समय में।
1: किस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है?
0: जैसे CUET हो गया हमारा, उससे

0: भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है,
1: अच्छा
0: जेईई हो गया, उनसे आपको आईआईटी में
1: आठ
0: एडमिशन मिलता है,
1: ओके
0: इन सब कॉलेज। उसके अलावा जो आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो भी अलग से टेस्ट अपने चलाते हैं, आप उन टेस्टों में पेपर दे सकते हैं, नंबर आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है।
1: अच्छा
0: बेसिक बात यह आपको सही दिशा में मेहनत करनी है।
1: अच्छा श्रोताओं, आपको यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते चलें और इस बात से इत्तेफाक रखेंगे आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं, ये अपने आप में एक शिक्षा, उच्च शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन पैरेलली हम देखते हैं कि जिन चीजों की ज्यादा डिमांड होती है वहां उस चीज में फेक और नकाल भी बहुत सारी चीज होती है। कई बार हम देखते हैं बहुत यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं या कुछ लोग ऐसे भी दाखिल हो जाते हैं जो इन्हीं सब डिस्पिरेशन का फायदा उठाकर, जो कहीं से एफिलेटेड नहीं है या इस प्रकार की नकली संस्थान बना लिए और बच्चों को भ्रामक अपने झांसे में ले लिया और वो उनको दाखिला दिला लेते हैं और एक मोटी चौड़ी फीस जो है वो उनकी गड़प कर जाते हैं, हड़प कर जाते हैं। तो इन बातों का भी हमको जरूर से ध्यान रखना है दाखिला लेते समय। अगर हमारे मन मुताबिक परिणाम नहीं आया और तो हम, जैसा कि काजल जी ने बताया कि आप एक अटेम्प्ट और जा सकते हो और जी जान से मदद कर सकते हो खुद की और तैयारी कर सकते हो, लेकिन हाँ हड़बड़ी में प्रलोभन में आके किसी गलत संस्थान में दाखिला लेने से बचें। मुझे लगता है आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे आप दोनों।
2: जी बिल्कुल
0: जी, एडमिशन लेने से पहले हमेशा जिस भी कॉलेज में आप दाखिला ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड चेक जरूर करें कि उसमें कैसे फैकल्टी है, कैसा उनका आउटपुट रहा है, मतलब उनके जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनका कितने का पैकेज लगा है, ये सब चीजें जान लें और उनके बारे में आप रिसर्च जरूर करें।
1: बिल्कुल, बहुत देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये बात हर बार हमें हाईलाइट इसलिए करते हैं हम कार्यक्रम में ताकि आप इन पॉइंट्स को जरूर चाहे तो नोट भी कर लें, आने वाले समय में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी कि आप वेबसाइट पे या किन्हीं अन्य माध्यमों से उन संस्थान के एलुमिनाई देख लीजिए, उनका क्या पैकेज रहा है, बच्चों का प्लेसमेंट क्या है, उनके यहाँ सीट कैसी हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, यूजीसी के अकॉर्डिंग वो यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, ये सारी चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अच्छा अब बात करते हैं एक आम बात, एक साधारण सी बात की, एक आम आदमी की बात हम करते हैं इस कार्यक्रम में जो डायरेक्ट पहुंचती भी है वहां तक। काजल जी, आपको क्या लगता है आपकी सफलता जो भी आपने की इसमें कौन कौन सी बाधाएं आपने फेस, किसी भी प्रकार की बाधा हो सकती है, मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, आपको बोझ लग सकता है, आर्थिक हो सकती है, कुछ भी, तो आपको यहाँ तक पहुँचने में कौन कौन से हर्डल आए?
2: आप जब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो बहुत सी अड़चने आती हैं और क्या कहते हैं, सबसे पहले तो अगर आप कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हो तो कॉम्पिटेटिव प्रेशर बहुत आता है कि वहां पर कितने लोग आ रहे हैं। एक तो संख्या, नीट में जो संख्या होती है लोगों की वो 23 से 24 लाख आजकल होने लगी है, जो और सीट सिर्फ 1 लाख के करीब होती है, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है, कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि क्या कहते हैं अगर हम फेल हो गए तो। फिर कहीं ना कहीं और भी चीजें होती हैं, जैसे कि आपको लगता है आप कोचिंग में तो जा रहे हो, इतना ज्यादा पैसा भी खर्च कर रहे हो और ये 1% अगर आपका नहीं हुआ तो बहुत निराशाजनक वो चीज रहेगी। मेंटली मतलब बच्चा जो होता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, उसको मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत जरूरत होती है। मेरे साथ ये समस्याएं आई थी लेकिन परिवार और शिक्षकों की सहायता से मतलब ये समस्याएं भी छोटी पड़ गई। तो इसीलिए मतलब ऐसी समस्याओं को हमें क्या कहते हैं अपनी मेहनत पे हमें फोकस करना चाहिए ताकि ये समस्याएं ज्यादा परेशानी ना पहुंचे।
1: बिल्कुल सही बात है, परिवार, शिक्षक, गुरु, ये सब लोग होते हैं हमें इन सारी चीजों से उबारने के लिए और ये प्रेशर अपने आप में सोसाइटी का, इतना खुद का, इतनी मेहनत की, इतनी सारी सीटें कम है इतनी, तो ये अपने आप एक जो है वो प्रेशर क्रिएट कर देता है, ये अपने आप में चुनौती है। देखिए अनुभव से ही हमको पता चलता है और ये एक और प्रैक्टिकल बात हमको पता चली कि कहाँ कहाँ दुविधाएं हो सकती है। आपने जो आदर्श जी कहाँ कहाँ आपको लगा कि क्या क्या बाधाएं रही?
0: सबसे बड़ी दिक्कत तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ही आती है क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपका परिवार और आपके शिक्षक आपके साथ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली। तो जब मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ये रही थी, जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय में काफी जैसे मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा था मेरे हिसाब से
1: जी।
0: तो उस समय मेरे पास घर वालों का सपोर्ट था, उन्होंने कहा कि जो भी है बेटा तू अपनी मेहनत करता रहे, बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। तो इससे बहुत आप कह सकते हैं सपोर्ट मिला,
1: रिलैक्स मिला,
0: कि प्रेशर कम हो गया,
1: कि घर वाले साथ हैं।
0: आपने अक्सर देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत कदम भी उठा लेते हैं जब उनके सिलेक्शन नहीं होता ये सब, तो इसमें घर वालों का सपोर्ट बहुत जरूरी रहता है।
1: हायर एजुकेशन क्यों जरूरी है? हायर एजुकेशन जो है वो इतनी जरूरी ही है, वो उसके पीछे का जो मुख्य कारण क्या है, क्या लगता है आपको कि क्यों आज हमको इस दिशा में बढ़ना चाहिए?
0: हायर एजुकेशन एक तरीके से मस्ट है आज के जमाने में, क्योंकि आप देखें तो आजकल बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है चीजें, आजकल पहले की तरह सिंपल नहीं रह गया है सब कुछ। आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है हर चीज की, खासकर आपकी जो स्पेसिफिक फील्ड है, आपने जो चूज करी है. हायर एजुकेशन आपकी स्किल्स डेवलप करती है, आपको इंटर्नशिप एबिलिटीज प्रोवाइड कराती है, आपको प्रैक्टिकल्स करने को मिलते हैं, आपकी थ्योरी अच्छी होती है, उससे

0: आपको आगे चल के जॉब मिलने में भी आसानी होती है और आप एज अ पर्सन भी बेहतर बनते हैं, आप काम करने में सक्षम बनते हैं।
1: बिल्कुल, आपको एक अलग खड़ा कर देती है उस भीड़ से। तो क्या लगता है काजल जी आपको कि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा जो है वो कितना जरूरी है और क्यों?
2: जी, हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या कहते हैं, अब आप 12th करके नहीं रुक सकते। आजकल के ज़माने में उच्च शिक्षा प्राप्त होना बहुत ज़्यादा, अगर आपको किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना है तो आपको उच्च शिक्षा ज़रूरी
1: जी
2: होगी।
1: बिल्कुल,
2: अगर आपको आगे चल के जॉब करनी है, नौकरी प्राप्त करनी है, तो फिर आपके उसमें उच्च शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और क्या कहते हैं, मतलब आगे जाके आपको इंटर्नशिप के, प्लेसमेंट के और ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, तो इसलिए उच्च शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है ताकि इंसान की जानकारी, ज्ञान दोनों बढ़ सकें।
1: अच्छा अब हम आते हैं उस एक पूर्ण बात पर। आज इंटरनेट क्रांति का दौर है, सब कुछ एक क्लिक पे पा लेने का दौर है, और इंटरनेट से आज बहुत सारी चीजें आसान हुई हैं। अब एक नया चीज आ गया है आने वाले टाइम में, एआई की बात कर रहे हैं हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल आते हैं ऑनलाइन पे, तो ऑनलाइन शिक्षा, हायर एजुकेशन या किसी भी, और ऑफलाइन, इन दोनों के बीच के अंतर के बात करेंगे। क्या लगता है आपको काजल जी कि क्या अंतर महसूस करती हैं आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में?
2: देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों में संतुलन होना भी बहुत ज़रूरी है।
1: जी
2: कोरोना के बाद से मतलब ऑनलाइन शिक्षा को एक अलग ही मतलब इम्पोर्टेंस मिली है।
1: जी
2: और
1: बिल्कुल,
2: जैसे ऑनलाइन शिक्षा है तो आप ई बुक्स जो होती हैं, जूम होता है, गूगल मीट होता है,
1: जी
2: आजकल बहुत सारी ऑनलाइन
1: जी
2: क्लासेस इन पे चलती हैं। लेकिन अगर मैं अपने कोर्स की बात करूँ तो उसमें ऑफलाइन शिक्षा भी उतनी इम्पोर्टेंट है। आप जब तक पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप प्रकृति में जाके निरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज
1: नॉलेज
2: नहीं हो
1: नहीं है।
2: पाएगी।

0: जैसे कि ईमेल हम लोग भेज जरूर देते हैं,
1: हाँ
0: लेकिन शायद आप लोग ने वो दौर नहीं देखा होगा चिट्ठी पत्री का। वो
1: जी
0: चिट्ठी पत्री का जो प्रेम होता था, है ना, ईमेल
1: जी
0: भेज दिया, कोई भी मैसेज भेज दिया, एक
1: जी
0: क्लिक में पहुंच जाएगा। पहले वो एक जेंजी के बाद, यानी आपसे पहले
1: जी
0: वाला दौर ये था कि चिट्ठी आती थी, ये टेलीफोन भी बहुत रेयर थे, कम थे, नेटवर्क नहीं
1: जी
0: था, तो लोग एक सूचना को इधर से उधर देने में, शादी विवाह किसी भी चीज़ की सूचना, यहाँ तक कि मैं 12th में या 10th में पास हो गया, इसकी सूचना भी चिट्ठी पत्री के माध्यम से, यानी वो हफ्ता 10-10 दिन बाद पहुंचती थी।
1: जी जी
0: तो जरूर समय लगता था, लेकिन लोगों के पास समय ही समय था।
1: वही
0: तो सबकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है।
1: जी जी
0: क्या लगता है
1: बिल्कुल
0: आपको, ऑनलाइन और ऑफलाइन, इन दोनों ही मोड की बात करें तो क्या आप बुनियादी तौर पे अंतर पाते हैं?
1: ऑफलाइन में आप जब जाते हैं कैंपस वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे आपको इंटरेक्ट करने को मिलता है बाकी अपने साथियों से, और शिक्षक आपके सामने रहता है, वहाँ पे आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है उस तरीके का पढ़ाई करने का। लेकिन
0: बिल्कुल
1: जब आप ऑनलाइन शिक्षा लेते हैं
0: जी।
1: तो वहाँ पे आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हज़ार तरीके के डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि चलो थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, थोड़ा यूट्यूब देख लेता हूँ, क्लास चल रही है, बंदे का ध्यान ही नहीं है, तो ऐसे नहीं होता है। आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल
1: बाकी ऑनलाइन आपको, जैसे आप AI या डेटा साइंस का कोर्स करते हैं ऑनलाइन, तो आपको कंप्यूटर पे ही काम करना होता है उसमें ज़्यादातर,
0: जी
1: तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छी खासी मिलती है, और ऑनलाइन आपको थ्योरी तो मिलती ही मिलती है। तो जब तक आपका फोकस मेंटेन रहेगा, तो मुझे तो ये लगता है कि ऑनलाइन क्लास ज़्यादा बेहतर होती है।
0: बिल्कुल। तो देखिए दो बातें निकल के आई ना यहीं से, कि ऑनलाइन फोकस, फोकस अगर आप है तो ऑनलाइन कितना इजी गोइंग है, और ऑनलाइन भी अपने आप में सरलता सहेजे हुआ है। लेकिन अगर इसको ठीक वैसे ही बात करें, दूसरी पक्ष की बात करें, तो एक ये भी बात आती है कि किताब हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं और किताब ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, तो जब तक वो किताब की महक ना महसूस हो, उसको फील ना करें, तब तक लगता ही नहीं है कि कुछ पढ़ रहे हैं। भले वो सारी चीज़ें पढ़ ली हों, लेकिन वो जब तक आभास नहीं होता इस चीज़ का कि वो हमने पढ़ लिया। तो दोनों ही मीडियम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि काजल जी ने बताया था कि कोरोना से, कोरोना के बाद जो है ये ऑनलाइन इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ, कि एक सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी, उस समय मजबूरी थी, और आज हम अपने समय के बचाते हुए अपने सारी चीज़ों की साथ हम शिक्षा को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म और इन सारी चीजों की भी अब हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं, इतने बड़े तालाब में या समुद्र कह लीजिए, जहाँ हर तरीके के कोर्स हैं, आप AI डेटा साइंस की बात कर ली, BAMS कर लिया, मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में हर एक चीज का पर्टिकुलर, आप MBBS कर लीजिए, उसके बाद कार्डियो करिए, गायनी करिए, दुनिया भर की चीजें। तो अब हम आते हैं इस बात पे कि BAMS यानी कि उच्च शिक्षा में अगर
1: जी
0: मेडिकल, इसमें भी विशेषज्ञता का है रोल इतने
1: जी
0: बड़े?
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा
1: जैसे कि BAMS करने के बाद क्या कहते हैं, 8 ऐसी फील्ड होती है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं।
0: अच्छा
1: उसमें भी क्या कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ काय चिकित्सा होती है,
0: जी
1: और क्या कहते हैं बाल चिकित्सा होती है, शल्य चिकित्सा होती है, तो
0: जी
1: ये अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होती हैं। आप इसमें भी जाके आपको AIA PGET का एग्जाम होता है, फिर उसके बाद यहाँ आप गवर्नमेंट कॉलेज से PG कर सकते हैं, प्राइवेट से भी कर सकते हैं, जैसी भी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार।
0: जी
1: तो आपको स्पेशलाइजेशन करने के बाद आपका MD इसमें भी लगता है MBBS की तरह ही, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो उसी तरीके में इसमें भी उच्च शिक्षा के आगे आप और भी मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, PhD वगैरह भी कर सकते हैं आगे।
0: हम बात कर रहे हैं आदर्श जी कि विविधता, विविधता मतलब इतनी सारी चीजें हैं हायर एजुकेशन में भी, लेकिन अगर क्षेत्र की बात करें तो इसके बाद आप कौन से मुकाम की तरफ देख?
1: बायोटेक्नोलॉजी बहुत डाइवर्स ब्रांच है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं बायोटेक्नोलॉजी को। लेकिन मैं दो भागों में ज्यादा बांटता हूँ कि एक आप रिसर्च में जा सकते हैं बायोटेक करने के बाद, और दूसरा आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग या बायोरिएक्टर वगैरह चलाना आना चाहिए, और अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हैं तो वो आप कह सकते हैं एक तरीके से देश को फायदा पहुँचाने वाली चीज़ है, कि रिसर्च एंड बायोटेक डेवलपमेंट में आप वैक्सीन बनाना सीख सकते हैं, आप दवाइयाँ बनाना सीख सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी कर सकते हैं। तो मैं अपने आप को आगे देखता हूँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आप बायोटेक में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स में डील करते हैं हम।
0: अच्छा
1: खासकर डेटा एनालिसिस यहाँ पे ज्यादा आता है, और मॉलिक्यूलर डॉकिंग जैसी चीजें, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके मैं खुद को बायो इन्फॉर्मेटिक्स में देखता हूँ।
0: तो उच्च शिक्षा की चुनौतियां और उच्च शिक्षा के बारे में आज बात कर रहे हैं कार्यक्रम में। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं आदर्श कुमार जी, जो कि बीटेक बायोटेक कर रहे हैं, और साथ ही साथ कर रहे हैं IIT रुड़की से डेटा साइंस का सर्टिफिकेट कोर्स। और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं काजल गंगवार जी, जो कि BAMS परस्यू कर रही हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। तो दोनों ही लोगों ने अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें की और आने वाली चुनौतियां संबंधित विषयों पर बात की, कितनी कितनी जो है जरूरत है।

0: है हम लोगों को फोकस की। और कहा जाता है, देखिए आप दोनों लोगों ने एक बात की थी कि भाई अपने फोकस रहें, अपने गोल पे टिके रहें, तो कहा भी जाता है कि भाई गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफल यानी कि वो बच्चा क्या ही गिरेगा जो घुटनों के बल चला, जो घुटनों के बल चल रहा है वो क्या गिरेगा। तो आप
1: जी
0: बिल्कुल हारने वाली चीजों को पीछे छोड़ करके हमेशा जीतने की बात करें, परिवार, गुरु, सारी किताबें, इतनी सारा हमारे पास मटेरियल उपलब्ध है, बिल्कुल भी उससे डरे नहीं। अब चलते चलते हम आप अपने दोनों ही पैनलिस्ट से आपकी एक विशेषज्ञ राय एक एक करके जानेंगे कि हमारे जो भी श्रोता हमारे को सुन रहे हैं आज, वो कैसे लाभान्वित हों उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन की तरफ जाने के लिए, क्या क्या चीजों की सावधानियां रखें, किन चीजों पर गौर।
1: जी जब हम हायर एजुकेशन में जाएं तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है कि फील्ड चूज करना।
0: जी
1: उसमें एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखें
0: जी
1: कि जल्दबाजी ना करें, अपना
0: जी
1: समय लें। और अपने जैसे आपने देखा होगा कि 10th में के लोग कहते हैं कि मेरे इस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आए, मैं यही फील्ड आगे चूज करूंगा।
0: जी
1: ऐसा ना करें, आप
0: जी
1: वो फील्ड चूज करें जिसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्ट हो, उस पे फोकस रखना जरूरी है। उसके
0: जी
1: अलावा जब आप एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है जिस भी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड कैसा है। एक बार उस बारे में रिसर्च करें, अच्छे से नॉलेज गेन करें, उसके बाद देखें। और आपका सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, मुझे किस फील्ड में आगे जाना है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये बहुत जरूरी चीज है।
0: तो काजल जी को क्या लगता है कि हमारे सभी श्रोता किन किन की पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स को चेक करें और उनका ध्यान रखें हायर एजुकेशन के दिशा में।
1: मुझे लगता है कि अगर क्या कहते हैं आप उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हैं और अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले तो आप किसी के प्रेशर में ना आए, अपना एकदम रिलैक्स होकर आप पढ़ाई करें। किसी भी चीज़ के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं। और आप ये इधर उधर ना भागे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकती हूँ। मतलब आप अपना एक फोकस बनाए, गोल बनाए और उसी के लिए बिल्कुल काम करते रहें एकदम तत्पर होके। और उसके बाद फिर आप जब कॉलेज का चुनाव करें तो वो देख लेते हैं वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है कि नहीं है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, वो सारी चीजें देख के ही आप अपना कॉलेज चुने और अपने ऊपर विश्वास रखें। अपने ऊपर विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है।
0: बहुत जरूरी बात की, विश्वास रखें, बिल्कुल हार से निराश ना हो, अगर एक बार सफलता नहीं भी मिलती है तो उसको छोड़े नहीं, और सावधानी बरतें सारी ही चीजों को चयन करने में। और बड़ा सुंदर एक दोहा है कि करत करत अभ्यास जड़ मत होए सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परे निशान। देखा होगा
1: जी
0: शायद आप लोगों ने कम देखा हो कि कुएं से पहले पानी निकालने का प्रचलन था, तो कुएं की डोर जब अंदर डालते थे फिर निकालते थे, तो वो जो रस्सी होती थी वो उस पत्थर पे घिसती रहती थी और वो रस्सी उस पत्थर पे निशान बना देती है। क्यों? क्योंकि बार बार अंदर बाहर जाती है और बार बार उस पर प्रहार करती है उस पे। तो बिल्कुल डरना नहीं है, कोई भी पत्थर अगर हथौड़े की 100 चोटों के बाद टूटा है तो इसका बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है कि 99 बार की गई चोट बेकार है, बिल्कुल नहीं। वो 99 बार की चोट ने उसको कमजोर किया, तब जाके वो 100वें चोट में टूटा वो
1: जी
0: पत्थर। तो
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल भी हमारे सभी एस्पिरेंट जो हमको सुन रहे हैं निराश ना हो, और अच्छे से अपने, चूंकि अभी अभी परिणाम आए हैं, बच्चों को सब्जेक्ट चूज करना है, आगे बढ़ना है, अपनी दिशा चूज करनी है, तो ये कार्यक्रम उनके लिए जरूर लाभान्वित होगा। तो कार्यक्रम में आज आप हमसे जुड़े, काजल जी आप और आदर्श जी आपका अनेक अनेक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बहुमूल्य विचार हमसे साझा किया, हमारे स्टूडियोज में पधारे, आपका एक बार फिर से धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जनमंच, विषय था उच्च शिक्षा में युवाओं की भूमिका और चुनौतियां। प्रतिभागी थे श्री आदर्श कुमार, सुश्री काजल गंगवार, और संचालन कर रहे थे ब्रजेश तिवारी।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अब आपको जोड़ रहे हैं विविध भारती प्रसारण सेवा कार्यक्रम जिन्हें लेकर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
2: अंक समाप्त हुआ, नमस्कार। आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना मन्ना डे के स्वर में आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला कालजयी गीत स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं, प्रदीप के बोल हैं और वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाजों में प्यार बरसाता ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, शुरू में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

बोलो कुछ तो बोलो बोलो बोलो हे बोलो कुछ।

0: कब से नगमे मोहब्बत के गा रहा हूँ।
1: चाचा जिंदाबाद, इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

ये महकती किलकती शिकायत आरजू फिल्म से हसरत जयपुरी की लिखे हुए इस गीत में आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा बंदिनी फिल्म की से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत रचा है सचिन देव बर्मन ने।

0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आज बस यहीं तक, दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहे गीत,
2: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म दा के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दा का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है। सुनना चाहते हैं? रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

फासलों की खुशबुओं में महकती नज़दीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना, और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में।

गीत में छुपा गुनगुनाता हुआ ये राज, किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित के स्वरों में आपने सुना एमजी हशमत के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

ये थिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवालाल फिल्म से सुना। और अब अगला मनचाहा गीत, बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोक झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़।

0: दिल के सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मनचाहेगी यह है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को।
2: ये नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन,
1: इस पर दया कीजिए।
0: अरे ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
3: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है। लीजिए, मैंने अपना बाण लौटा लिया।
4: पूर्व वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
3: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
3: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन। मेरा नाम शारंग्रव है।
4: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
3: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
4: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहां पधारकर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
3: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर?
4: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
3: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला
4: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
3: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है।
4: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
3: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
4: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों भड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। क्या रूप, क्या सौंदर्य है। आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं। वन लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।

0: ओह हाँ प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
1: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
2: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
0: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूट जाएंगी।
2: लताएं भी रूटती हैं क्या?
0: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूटती भी हैं और प्रसन्न भी होती है, समझी?
1: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
0: क्या समझी है तू?
1: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
0: वो कैसे?
1: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
3: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या, शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से।
0: अरे अनुसुईया, जरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांध दी है इस प्रियंवदा ने।
1: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
0: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
1: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
3: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
0: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूँ?
1: तेरे मुंह से तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
0: परिहास ना कर।
1: अच्छा नहीं करती, बता।
0: देख वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई, नहीं
1: तेरी तरह।
0: फिर परिहास।
1: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
0: हाँ बता।
1: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
0: धत, तेरा तो सिर घूम गया है।
1: सच, मैंने अपने कानों से सुना है।
0: अच्छा,
1: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
2: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
0: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
4: ये भौरा कहाँ से आ गया?
0: अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग। अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
1: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
2: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
1: हाँ वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
0: अरे बचाओ, बचाओ ना।
3: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
5: पृथ्वी पर पुरवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
1: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
2: आपके आते ही भाग भी गया।
1: आप खड़े क्यों हैं आर्य, विराजी ना।
2: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
5: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
1: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
2: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
5: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठे ना आप लोग भी।
0: ना तुम लोग बैठो, मैं भी।
1: अब बैठ भी जा।
0: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
1: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
2: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
5: मैं अब क्या बताऊं इन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूँ, पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूँ।
1: आज यदि पिता कण्व यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
5: और ही ढंग से?
2: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते, क्यों शकुंतला?
0: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
5: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
1: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
2: बहुत मीठा है इसका गला,
1: करती रहती है सबका भला।
2: इसने

0: को नहीं छला। जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है। कुलपति कर्ण की सबसे लाडली बिटिया है।
1: किंतु कुलपति कर्ण तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
0: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य। वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
1: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
0: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा।
1: फिर
0: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया। मेनका के उस मादक रूप को देखकर
1: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
0: किंतु क्या आर्य?
1: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
0: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य। पिता कर्ण तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
2: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
0: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
3: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
1: वृक्षों को सींचने का ऋण?
0: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
3: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
1: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
0: आप
1: ये लीजिए।
0: अंगूठी? किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
3: आपके पास ये अंगूठी?
1: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
0: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
3: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
1: मैं आभारी हूँ।
4: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं। सावधान सावधान।
1: लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आ रहे हैं।
0: हे भगवान, अब क्या होगा?
4: सावधान, वन के जीव जंतुओं के दान के रूप में एक उच्चोंचल हाथी भी उत्पात मचाता आ रहा है।
0: चलो चलो चलो, उस हाथी के यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
3: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
1: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
0: चलो शकुंतला।
2: चलो
1: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं। किंतु तू मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा? शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तुमसे ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो, प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो, भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, गधा घोड़ा बैल मक्खी मच्छर कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है, शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है, अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो, नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है, आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे

0: समझोगे, अच्छा भला राज कार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव, बहेलिए का ये रूप तो हम मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था।
0: हे भगवान, तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज?
1: किंतु माधव, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: हैं? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेश क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
0: विशेष बात?
1: हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
0: अप्सरा की कोख से और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
5: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहां नहीं है।
4: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं यार।
5: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक,
2: आज्ञा महाराज।
1: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहां ले आए।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूं।
5: आर्य की जय हो।
2: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
2: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
1: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश?
6: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
6: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, खुद समझ में नहीं आता माधव्य।
6: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
1: एक काम हो सकता है माधव्य।
0: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
1: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
0: मैं तुम्हारे स्थान पर?
1: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
0: ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुख ही सुख है।
1: और हां, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ। यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
0: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
1: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
0: कहिए महाराज।
1: यही कि मैं यहां तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूं, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
0: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?
1: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
0: जो आज्ञा महाराज।
1: जाओ युवराज।

0: प्यारी पवन चल रही है, अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवदा, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: इसी से पूछकर देखें?
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो? इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं, तभी से
2: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
1: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
0: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
2: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
1: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
0: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
2: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
0: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
2: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
0: वो कैसे?
2: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
0: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
2: मुझे एक उपाय सूझा है।
0: क्या?
2: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं,
0: फिर
2: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
0: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
2: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
1: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
0: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
1: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
0: क्या शकुंतला,
1: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
0: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
2: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
1: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो।

0: की रचना करो।
1: सुललित गीत वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
0: किंतु क्या शकुंतला?
1: कहीं कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
0: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला? कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
1: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। इस वक्त 4 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। आज मेहमान है पूर्णिमा शर्मा। सुनते हैं आपके विचार।
1: पूर्णिमा शर्मा, और आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे हमें बहुत ही खुशी है और हम चाहते हैं कि इसकी प्रसिद्धि दिन ब दिन और आगे बढ़े और सभी लोग इसमें हिस्सा लें। और आकाशवाणी जो है हमारे घर का एक सदस्य है, एक सदस्य की तरह वो हमें हर बात समझाता है, चाहे वो ज्ञान की हो, विज्ञान की हो, युवाओं की हो, कृषि विज्ञान की हो, भक्ति की हो, किसी भी क्षेत्र में वो हमें पीछे नहीं लगता है और हमें ज्ञान हमारा बढ़ाता है, मनोरंजन का साधन है। समय समय पर इसमें हमें नारियों के लिए नारी संसार ये सब प्रोग्राम हमें बताते हैं कि हमको सुन के ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें। और इसी तरह से इसमें जो भी आकाशवाणी का परिवार है, मैं उनको चाहे वो जिस क्षेत्र से भी हो बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह से वो अपना योगदान रखें और आकाशवाणी को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।
2: आकाशवाणी के दीवानों के लिए एक हम छोटा सा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आप अगर आकाशवाणी के दीवाने हैं, आप सब में दीवानगी है आकाशवाणी के प्रति, तो आप मोबाइल उठाइए, अपना वीडियो बनाइए और वीडियो में बताइए कि आपने पहली बार आकाशवाणी को कब सुना, और अपनी एक यात्रा के बारे में बताइए कि कब कब सुनते रहे, किन हालातों में सुने, रेडियो का कौन सा सेट आपने इस्तेमाल किया, और भी बहुत कुछ आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन आपके वीडियो की 2 मिनट होनी चाहिए। और जो लोग वीडियो नहीं बना पाए वो ऑडियो भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा तो माध्यम ही है रेडियो। तो आपकी जो वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ेंगे, जो भी चुनिंदा अच्छे अच्छे वीडियो होंगे। तो और कहाँ भेजना है ये भी नोट कर लीजिए, akashwanibareli@gmail.com। आकाशवाणी में AKSHVANI बरेली BARELLY, akashwanibareli@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है, मात्र 2 मिनट का वीडियो शूट करना है। सेल्फी ले सकते हैं या फिर किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए सामने से। तो जल्दी से जल्दी आप अपने वीडियो भेजिए, हमें आपके वीडियोस का इंतज़ार है, क्योंकि आकाशवाणी की दीवानगी चारों तरफ फैल रही है और उसके दीवाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार।
3: मैं अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बरेली। आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 MHz पर। हमारे देश में जो जनगणना हो रही है वह 2 चरणों में होनी है। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण, जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, का कार्य चल रहा है, तथा द्वितीय चरण माह फरवरी 2027 में होगी। यह पूर्तियां डिजिटल मोड में होगी। प्रथम चरण की जो अवधि है वो 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक तय की गई है, तथा इसके पहले 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक स्वगणना हेतु तिथि निर्धारित है, जिसमें आमजन स्वगणना से संबंधित पोर्टल पर जाकर स्वयं ही अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा देश में पहली बार स्वगणना की विधि लाई गई है। इसमें कोई भी व्यक्ति सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल पर जाकर बड़ी आसानी से भारत सरकार द्वारा तय किए गए प्रश्नों के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकता है। इस प्रक्रिया के अंत में एक ऐसी आईडी जनरेट होगी, जिसे दिनांक 22 मई 2026 से दिनांक 20 जून 2026

0: 2026 के मध्य प्रागणक को प्रदान कर जनगणना की प्रक्रिया चंद मिनटों में ही पूरी की जा सकती है। इस प्रक्रिया में प्रागणक द्वारा उन्हें आवंटित हर उस मकान भवन को सूचीबद्ध करना है जिसमें कोई व्यक्ति रहता है या भविष्य में रह सकता है। साथ ही कुल 33 अधिसूचित प्रश्नों की जानकारी भी उसे प्रत्येक परिवार से लेनी है। प्रथम चरण में केवल परिवार से संबंधित जानकारियां ली जाएंगी, जबकि द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग जानकारी एकत्र की जाएगी। मकान सूचीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 33 प्रश्न अधिसूचित किए गए हैं, जिनके उत्तर प्रागणक प्रत्येक घर से प्राप्त करेंगे। इस जनगणना के कई फायदे हैं। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही सरकार आम जन मानस को लाभान्वित करने के लिए योजनाओं का निर्माण करती है। इसके आंकड़े क्षेत्र विशेष के लिए भी योजनाएं तय करने में सहायक सिद्ध होते हैं। विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के सीमा निर्धारण, लोकसभा विधानसभा आदि क्षेत्रों के परिसीमन, शहरीकरण, साक्षरता इत्यादि कई पहलुओं में जनगणना के आंकड़े आधार का कार्य करते हैं।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
2: श्रोता नमस्कार, शाम के 4:05 हो चुके हैं और कार्यक्रम लेकर हाजिर हो गए जिसका नाम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और देखते हैं कार्यक्रम में सबसे पहले हमसे कौन जुड़ चुके हैं या चुकी हैं। जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी कौन सी श्रोता बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: मैं नाजिया खान बोल रही हूँ, रामपुर से।
2: नाजिया खान जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आपको मालूम है हमारा आज का विषय क्या है?
3: जी आपको सबसे अच्छी नींद कब आती है, सुकून की नींद कब आती है?
2: जी क्या विचार है आपके इस विषय पर?
3: मुझे सबसे सुकून की नींद तो बस रात में ही आती है, सोती हूँ, दिन में नहीं सोती हूँ।
2: कार्यक्रम कैसे लगते हैं हमारे केंद्र के आपको?
3: मुझे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं और सबसे बढ़िया मुझे आकाशवाणी लगता है।
2: जी अब देखिए कार्यक्रम में आपने हमें फोन किया है रामपुर से, कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
3: मैं दिल का रिश्ता मूवी का सुनना चाहूंगी, दैया दैया दैया रे।
2: ठीक है नाजिया खान, तो हम भेज रहे हैं आपको आपकी पसंद पर ये गीत, एंजॉय कीजिए।
3: थैंक यू,
2: वेलकम।

0: देखते हैं श्रोताओं, अब हमारे साथ कौन से हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपको स्वागत है। कौन श्रोता बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सर, मैं आपकी नियमित श्रोता दीक्षा पाठक कर रही हूँ, जिला शाहजहानपुर से।
0: दीक्षा पाठक जी, हमारे कार्यक्रम में आपकी बात का विषय पता है आपको?
1: सर,
0: क्या विषय है आज का और क्या विचार है आपके इस विषय पर?
1: सर, हमारे तो ये विचार है कि सर, हमें सुख की नींद सर कहीं पेड़ के नीचे जब हम सोए तो हमें सुख की नींद आती है सर। बाकी हम यही कहना चाहते हैं कि पंखे में या एसी में सर कहीं भी सो लो, लेकिन जितनी अच्छी नींद पेड़ों के नीचे आती है सर, उतनी अच्छी नींद कहीं नहीं आती।
0: ये तो बात सही, प्रकृति की बात, हवा की बात ही अलग है ना।
1: जी जी,
0: कार्यक्रम में आपका फोन लगा, बात हुई आपसे, कहिए गीत की बारी है, कौन सा सुनवा दें आपको इस कार्यक्रम में आप?
1: सर, मुझे फिल्म का नाम रहेगा ए रात फिर ना आएगी, गाने के बोले हैं मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुम।
0: हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हेलो, मैं निशा बोल रही हूँ, कटरे से।
0: निशा, कार्यक्रम में स्वागत है। आपको पता है हमारी और आपकी जो बातचीत है उसका विषय क्या है?
1: जी, मुझे सुकून की नींद तो दोपहर को आती है, बेड से आती है, बेड से सोती हूँ।
0: जी, बहुत अच्छी बात है, आपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और कार्यक्रम कैसे लगते हैं हमारे केंद्र के आपको?
1: जी, मुझे कार्यक्रम सभी आपके बहुत अच्छे लगते हैं।
0: और गीत कौन सा अब सुनवा दें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से?
1: जी, मैं सुनना चाहूंगी बेवफा मूवी की गजल, याद याद बस याद रह जाती।
0: ठीक है, तो हम भेज रहे हैं निशा जी ये गीत आपकी पसंद पर, एंजॉय कीजिए।

0: कार्यक्रम अर्थ में आपका स्वागत है। कौन से श्रोता बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार सर जी, हमारा
0: नमस्कार, कौन सा बात कर रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार बात कर रहे हैं सर जी।
0: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र सिंह जी, कैसे हाल चाल है? परिवार में सब कैसे हैं आपके?
1: सब हाल चाल ठीक है। कस्बा कोरिया तहसील नवाबगंज झुमका सिटी बरेली से बोल रहे हैं। और क्या कहते हैं, आपके हाल चाल कैसे हैं सर जी?
0: हम अच्छे हैं सर, परिवार हमारा आकाशवाणी का अच्छा है। और मालूम है आपको हमारी और आपकी जो बातचीत होने वाली है उसका विषय क्या है?
1: हाँ जी, आपको सुकून की नींद कब और कहाँ आती है?
0: तो क्या विचार है, क्या बताएंगे, कब आती है आपको सुकून की नींद?
1: जी ये विषय है, बड़ा अच्छा विषय रखा है आपने
0: जी
1: और अच्छा भी है। माना जाए तो सर जी, जैसे हर के सोते हैं सुबह को, तो सुबह वो तो नींद, वैसे सुबह जब 3-4 बजे से बजते हैं तब नींद अच्छी आती है, बहुत जोर से नींद आती है। जब कोई जगाने जाता है तो अच्छा नहीं लगता।
0: ये तो है, नींद में खलल डालना थोड़ा व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है ना?
1: हाँ जी, नींद क्योंकि उसी समय मौसम कुछ ठंडा होता है और नींद भी प्यारी होती है, तो कोई जगाना जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और वैसे तो नींद जब लगती है तो कहीं भी सो सकते हैं, नींद तो बहुत प्यारी होती है सर जी।
0: जी चलिए, आपने अपने विचार दिए, बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र जी। कार्यक्रम में गीत की बारी है, तो कहिए कौन सा गीत सुनवा दें आपको अब?
1: जब नींद की बातें चली हैं तो सर जी, अगर किसी ने ना सुना हो तो वो सुना दीजिएगा, सनम मूवी का, आंखों में नींदे ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। धन्यवाद
0: बिल्कुल, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत।
1: सर जी आपका, जो आपने हमारी कॉल रिसीव की। नमस्कार।
0: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। कौन सा बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं?
1: जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं। आप कहां से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं बरेली से बात करता हूँ, मतलब खाना सब्जी मंडी बरेली से बात लगा।
0: सुल्तान रजा
1: जी,
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है। रजा भाई कैसे मिजाज हैं, सब परिवार में कैसे हैं?
1: क्या कहें, कहा नहीं जाता, दर्द मीठा है पर रहा नहीं जाता। इस कदर मोहब्बत हो गई हमें आकाशवाणी बरेली से, इसको सुने बिना रहा नहीं जाता।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब आपका अंदाज लगा ये। और आज आपकी और हमारी जो बातचीत है इसका विषय पता है आपको, हम बताएं?
1: जी नींद के बारे में कुछ है,
0: विचार क्या है आपके?
1: सर वैसे तो ये है कि हमें नाइट में नींद बढ़ जाती है
0: जी,
1: और जो है सोने का समय 9 से और सुबह जो है 5 तक का अच्छा रहता है
0: जी।
1: इस बीच आप पूरी नींद लें
0: जी
1: और फोन का यूज रात में ना करें, बहुत अच्छी बात है, इससे नींद प्रभावित होती है हमारी।
0: बहुत धन्यवाद,
1: जी
0: आपने अपने विचार व्यक्त किए। अब गाने की बारी है, गीत की बारी है, तो कहिए अब गीत कौन सा हो जाए?
1: सर मूवी का नाम है अंश, आवाजें हैं सपना बस्ती की।
0: जी हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर सुल्तान भाई ये गीत, एंजॉय कीजिए।
1: जी थैंक यू सर,
0: वेलकम।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। कौन से श्रोता बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सर मैं कुमार, रेडियो क्लब सिद्धार्थ नगर, रोड नंबर 6 नगर बरेली से राजेश श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ।
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको मालूम है हमारी और आपकी जो बात, उसका विषय क्या है? आपको सुकून की नींद कब और कहाँ आती है?
1: सर जब हम भरपूर मेहनत करते हैं
0: जी,
1: और मेहनत करने के बाद में जब घर वापस आते हैं तो उस समय शरीर थोड़ा थकायमान सा तो हो ही जाता है, और कोई कम ना हो तो हम मेहनत से और पूरी ईमानदारी से जो काम करते हैं, हमारा किसी पे कोई कर्ज ना हो, हमें किसी प्रकार की टेंशन ना हो, ये दिल में ये सुकून रहे कि बस हम अपना कमाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, किसी का लेना नहीं देना नहीं, जब दिल में सुकून होता है तो नींद भी अच्छी आती है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल इसका तथ्य यही है। और बहुत धन्यवाद जो आपने अपने इतने अच्छे विचार व्यक्त किए। कहिए इस कार्यक्रम में अब गीत कौन सा हो जाए आपके लिए?
1: सर एक जिन का नाम है दादा और गाने के बोल हैं हमने माना हम पर साजन।
0: राजेश श्रीवास्तव जी हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर एक गीत, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक
0: यू, वेलकम।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। कौन सा बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं?
1: सर जी नमस्कार, मैं लाल मोहम्मद अंसारी ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से बोल रहा हूँ।
0: जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है अंसारी भाई। सब खैरियत से हैं परिवार में आपके?
1: बहुत बढ़िया हैं और सब लोग ठीक ठाक हैं। और आपका ये कार्यक्रम सुन रहे हैं क्योंकि आपका ये कार्यक्रम ही इतना अच्छा है कि इसमें मनोरंजन के साथ साथ जो जानकारियाँ होती है विषय को लेकर वो काफी लाभ पहुँचाती है, और जिन बातों के जिस विषय के बारे में पता नहीं होता वो भी विषय इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी खासियत है।
0: बहुत धन्यवाद आपका। आज का विषय पता है आपको क्या है हमारा?
1: आज का विषय है कि आपको नींद सबसे अच्छी कहाँ और कब आती है।
0: जी क्या विचार है आपके इस विषय पर?
1: सर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो सर नींद चाहे दिन हो चाहे रात हो मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है, और जैसे खासतौर से अगर कहीं मेहमानी में चले जाए तो वहां तो नींद नहीं आती है। नींद जो है वो खासतौर से अपने घर पे ही और अपनी जगह पे ही आती है, जहाँ आप रोज विश्राम करते हैं रोज सोते हैं, तो मेरा मानना ये है कि वहीं आपको सबसे अच्छी नींद आएगी। अगर आपकी जगह चेंज कर दी जाए या कोई गाँव या मतलब कहीं और अगर आपको सुला दिया जाए तो सर वो बात नहीं आती नींद।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो
1: जी सर
0: आपने इतने अच्छे विचार व्यक्त किए इस विषय पर। अब कहिए कौन सा गीत सुनवा दें आपको इस कार्यक्रम में?
1: जी आज गाना सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम है लैला मजनू, इसका गाना है कहना एक दीवाना तेरी याद में आहे भरता है, लिख के तेरा नाम जमी पर लैला लैला करता है।
0: अंसारी जी हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर एक गीत, एंजॉय कीजिए।
1: ओके सर
0: धन्यवाद।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम जी हाँ आकाशवाणी आपकी बात आकाशवाणी के साथ में बहुत सारे कमेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं, तो आइए अब उनको पढ़ लेते हैं क्या उन्होंने लिखा है इस विषय पर। आप हैं साथी हमारे विष्णु मिस्कीन, रितिका वानी, आरब, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्कीन, आरोही, प्रियांशी, सोनी ने लिखा है हमें भवानीपेट सोलापुर से। आप लिख रहे हैं कि सुकून की नींद वहीं आती है जहां मन पर कोई बोझ ना हो। बिल्कुल सही बात है, और दिल में सच्चाई हो और अपने लोगों का प्यार पास हो, कभी माँ की दुआओं में, कभी दिन भर की मेहनत के बाद, और तो कभी अपनेपन भरी बातों के बीच इंसान को सबसे गहरी नींद मिलती है। असल सुकून महंगे बिस्तरों में नहीं बल्कि शांत मन और संतुष्ट जीवन में छुपा होता है। बहुत अच्छा आपने लिखा है, धन्यवाद आपका हमें कमेंट करने के लिए। और आप लिख रहे हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रेमला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर लिख रहे हैं ग्राम चरौंदा बार नवापारा अभ्यारण जिला बड़ौदा बाजार छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं। आप लिख रहे हैं कि सुकून की नींद तब आती है जब मन बेफिक्र और जमीन साफ हो। क्या बात है, ये किसी महंगे बिस्तर की मोहताज नहीं है, अपने घर की शांत छत पर माँ की लोरी में या किसी अपने के भरोसे भरे साथ में ये नींद खुद ब खुद आ जाती है। और राधा नामदेव लिख रहे हैं कि आम के पेट नीचे नींद अच्छी आती है, धन्यवाद। और ये हैं अनोखीलाल मौर्य, हमें लिख रहे हैं कि दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को घर जाकर परिवार के साथ बहुत अच्छी नींद आती है, धन्यवाद आपका। आप हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, हमें लिख रहे हैं कि मेरे हिसाब से सबसे मीठी नींद मेहनत के बाद आती है। सही बात है। और लिखते हैं कि मैं नौकरी भी करता हूँ, दिन भर नौकरी और सुबह शाम खेतों के काम करने के बाद रात को जब गांव के घर पहुंचता हूं तो चारपाई पर लेटते वक्त सुकून की नींद आ जाती है। कई बार खेत में काम करते समय मोबाइल पर आकाशवाणी बरेली सुनते सुनते भी मन को बड़ा सुकून मिलता है। रेडियो की मधुर आवाज और खेतों का शांत वातावरण थकान को दूर कर देता है। दोपहर को आम के पेड़ के नीचे भी सोने का अलग ही अनुभव है। मेरे विचार से सुकून भरी नींद के लिए महंगी चीज नहीं बल्कि शांत मन, मेहनत, सादा जीवन और संगीत बेहद जरूरी है। लिखते हैं आपकी मेहनत की रोटी गांव की ठंडी छांव साथ साथ रहती है, आकाशवाणी बरेली से सुनते भी कभी कभी नींद भी प्यारी आ जाती है, धन्यवाद आपका। और आप लिखते हैं कि साथी वहाँ लिख रहे हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से अंकुश जी और तिलक भाई, जब दिमाग में चिंता फिक्र या तनाव होता है तो नींद नहीं आती है। बिल्कुल सही बात है, और सारी रात ही सोचते सोचते निकल जाती है कि पता नहीं ये नहीं होता तो क्या होता। मतलब जब हम चिंताओं में होते हैं तो फिर नींद नहीं आती है, और अगर ये सब ना हो तो फिर मस्त

नींद आती है। धन्यवाद आपका भी हमें कमेंट करने के लिए। और प्रवीण चौहान लिख रहे हैं कि भाई मुझे सुकून नींद अपने घर पर ही आती है। बिल्कुल सही बात है आपकी। और आप लिखते हैं तिगड़ी के शीशगढ़ से शाहरुख खान, हाशिम खान, अरहम खान बाबू और किशवा नूर लिख रहे हैं कि मुझे तो सबसे अच्छी नींद सर्दियों में आती है। गर्मियों की बात की जाए तो ठंडा मौसम और सुकून, देश स्थान पर कोई टेंशन

कार्यकर्ता को नमस्कार, तो आपको भी बहुत नमस्कार। लेकिन आपने नींद के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, खैर। और गुरमीत सिंह मीटर लिख रहे हैं कि भाई मन खुश हो तो नींद अच्छी आ ही जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। आप लिख रहे हैं गुरमीत सिंह की मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हमें ये कमेंट कर रहे हैं। सुरेश खुराना पप्पी लिख रहे हैं ग्वालियर से, लिख रहे हैं कि सुकून की नींद तो परिवार के साथ खुशियां बांटने के बाद ही आती है। बिल्कुल सही लिखा आपने, धन्यवाद आपका हमें कमेंट करने के लिए। और ये है अद्भुत दीक्षित, मुझे सुकून की नींद यात्रा के दौरान आती है जी, वो भी जब रेलवे ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तब, और रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण कोच में हो और लंबा सफ़र हो तब आराम से सीट पर सोते हैं, और यदि हिल एरिया में हो या पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में हो तो और भी अच्छी नींद आती है। और एक नींद सुकून भरी तो तभी आती है जब रात को रेडियो में गाने सुन रहे हों, तो गाना सुनते सुकून भरी नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता कि रात में रेडियो किसने बंद किया। धन्यवाद आपका डॉक्टर अब्दुल कुमार दीक्षित। और ये हमें लिख रहे हैं मणिनाथ बरेली सिटी से, बहुत धन्यवाद आपका हमें कमेंट करने के लिए। और आप हैं डीके आर मैथिल, लिख रहे हैं कि यूं तो नींद का दौर नहीं है लेकिन जब तक सुकून की नींद की हो तो, अगर बात जो है सुकून की नींद की हो तो भाई वृक्ष की बात अलग ही है। जी हाँ, वृक्ष की छांव जो है बहुत महत्वपूर्ण रहती है, या हो तो छत पर चांदनी या काली रात में जो पवन चले मधुर मधुर, और सिर पर ना हो चिंता का दौर तो आए नींद भरपूर। बहुत अच्छी बात लिखी है आपने। और लिखते हैं कि यूँ तो नींद आती नहीं पर आए तो अपने गाँव में दिल ढूंढता है। आप हैं साथी हमारे, लिख रहे हैं साधु शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ जी, और साथ में हैं चंद्रकला रेवाड़ जी। आप लिखते हैं कि मुझे सुकून की नींद अपने घर पर ही आती है क्योंकि मनपसंद का भोजन मिलता है, छोटे छोटे पौधे और उन पौधों की भीनी भीनी खुशबू सुकून की नींद आने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा देती है। आप भी अपने घरों में पौधे लगाइए और उनसे बातें कीजिए, पर बातें करते करते बड़ी सुकून की नींद आएगी। आप लिखते हैं कि आवाज की दुनिया के प्यारे दोस्त को खान परिवार का नमस्कार, तो आपको भी हमारा नमस्कार सलाम। आप लिखते हैं कि भाई जब मैं स्ट्रेस फ्री होता हूँ, तनाव मुक्त होता हूँ तब, या बहुत थकावट होती है तो मुझे सुकून की नींद आती है, और मुझे अपने घर पर ही सुकून की नींद आती है। धन्यवाद वारिस अली खान साहब, आप ये कमेंट कर रहे हैं सिंगर नगर ऐशबाग से। श्रोताओं, आप तमाम साथियों के कमेंट्स हमें प्राप्त हुए, और आपके जिन्होंने हमें लिखा है नींद के बारे में हमने उनके कमेंट शामिल किए हैं। बिल्कुल सही बात है, जब हम तनाव मुक्त होते हैं या कोई चिंता नहीं होती है, खुश होते हैं, परिवार में होते हैं, तो सही मायने में बहुत ही अच्छी नींद आती है। और अगर इस में आकाशवाणी का साथ हो, उसके प्यारे प्यारे मधुर गीत बज रहे हों, तो फिर नींद आ ही जाती है ना साथियों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। करके हम आज का बस यहीं तक।

केंद्र से आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित वरेले होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। बजरों का आनंद आप ले पाएंगे कार्यक्रम बजट संध्या में आज शाम 5:05 पर। हेलो बरेली, ये कार्यक्रम देवेंद्र रावत के साथ आप सुन पाएंगे आज शाम 5:30 से। आज शाम 6 युवाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डांस बरेली डांस, लेकर आएंगी माधुरी लोधी। आज शाम 6:30 पर कार्यक्रम किसान वाणी में आज की बात होगी एकीकृत कृषि प्रणाली, और आकाशवाणी गांव में ये भी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। इसके अलावा बाजार भाव, मौसम, कृषि समाचार, सवाल, नसीहत और लोकगीत भी हम इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। आज शाम 7 कार्यक्रम ग्राम रत्न चर्चा का विषय रहेगा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर। इसके अलावा सुनवाएंगे आपको इसी कार्यक्रम में लोकगीत भी। प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन आज शाम 7:31 पर आप सुन सकते हैं। इसमें आज विषय रहेगा समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्री टर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुलदीप अंगवार, आप हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ बरेली।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। 100.4 FM पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया। श्रोताओं, अब वक्त है बता दें आपको हमारे

और कल की बात की जाए कार्यक्रमों के बारे में, तो कल सुबह 8:15 पर कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे अंकुर। इसमें होगी ज्ञान की बात, आम जन के जीवन में अलग अलग जगाते आकाशवाणी और दूरदर्शन। बात होगी विश्व दूर संचार दिवस पर, सुनवाएंगे आपको रिकॉर्डिंग्स भी जो कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में रिकॉर्ड की जाती हैं, बच्चों से बातचीत। इसके अलावा हेलो एंकर और सवाल हमारे जवाब आपके भी लेकर हाजिर होंगे भैया नेमचंद और दीदी नाजमा। कल सुबह 9 बजे कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम स्वस्थ बचपन डॉक्टर कुलदीप अंगवर के साथ। आकाशवाणी के दीवाने कल सुबह 10 बजे आप सुन पाएंगे। कल मेहमान होंगे अनोखलाल मौर्य। कल सुबह 10:05 पर सुनाएंगे आपको कार्यक्रम आपकी पसंद, सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम होगा ये। साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला कल पूर्वाह्न 11 बजे से आप सुन पाएंगे, प्रसिद्धि होगी मिथिलेश श्रीवास्तव की। लोकगीतों का आनंद आप ले पाएंगे कल पूर्वाह्न 11:30 पर। आपके पत्रों पर आधारित अनुरोध गीत कार्यक्रम कल अपराह्न 1 बजे से आप सुन पाएंगे। रसरंग कार्यक्रम कल 2 बजे से, इसमें आप गजल कव्वाली और लोकगीत सुन सकते हैं। कल शाम 4 बजे कार्यक्रम आकाशवाणी दीवाने में मेहमान होंगे निर्भय सिंह।

और कल शाम 4:05 पर सुनवाई करेंगे आपको आकाशवाणी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ। इसके अलावा सुनवाएंगे आपको भजन संध्या कल शाम 5:05 पर, साथ ही कल शाम 5:30 पर सुनवाएंगे आपको मन भवन, जो होगा आपके शब्दों पर आधारित कार्यक्रम। प्रोग्राम खेल जगत कल शाम 5:45 पर सुनवाएंगे आपको, मेहमान होंगे कल श्री पुनीत। कल शाम 6:00 कार्यक्रम युवाणी में सुनवाएंगे आपको हेलो फ्रेंड्स वैभव मिश्रा के साथ।

सिंह, कल शाम 6:30 पर मिलेंगे आपसे कार्यक्रम ग्राम जगत में। चर्चा होगी रोजगार परक शिक्षा और कार्यक्रम होगा लोक मंजरी। कल शाम 7 कार्यक्रम होगा सेहतनामा और कल शाम 7:31 पर लेकर कार्यक्रम हाथ होंगे जनमंच। मुझे याद है जरा जरा कल रात्रि 8 से आप सुन पाएंगे कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये जानकारी थी हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित वायरल होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अब समय है कार्यक्रम हेलो बरेली का, लेकर आ रहे हैं देवेंद्र रावत।
1: आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र।

0: जहां पर आपको मिलता है गीत संगीत और ज्ञान का बम्पर एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज का हेलो बरेली लेकर हाजिर है आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को बट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो बरेली।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम अरुण का पोस्ट किला जिला शाहजहांपुर का रहने वाला, वर्तमान में जबलपुर एमपी से बोल रहा हूँ, अशोक जी।
0: अशोक जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं और आपका परिवार और आकाशवाणी टीम के लोग?
0: सब आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है और बड़े अरसे बाद आपसे आज फोन के माध्यम से बातचीत हो रही है। तो कैसा मौसम चल रहा है आपकी तरफ?
1: हमारी तरफ तो गर्म चल रहा है सर, 43-44 के लगभग।
0: जी जी जी जी,
1: एसी के बिना, एसी भी कूलर तो काम ही नहीं करते हैं दोपहर में, तो बहुत गर्म हवा पे।
0: एक हिंदुस्तानी ऐसा देश है जिसमें 12 प्रकार के मौसम आप देख सकते हैं ना। तो अशोक जी, आज आपकी कॉल लगी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सुना दीजिए सर, अपनी पसंद का अच्छा गुनगुनाता हुआ गीत 80 के दशक का।
0: ठीक ठीक है साहब, सुनते हैं ये गीत हम और आप और सारे श्रोता।

0: हेलो बरेली।
1: हाँ हेलो बरेली,
0: कौन बोल रहे साहब?
1: मैं मोहल्ला तलैया उरोला जागीर से फजरुद्दीन भाई बात कर रहा हूँ।
0: फजरुद्दीन जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है साहब,
0: और स्वास्थ्य पानी कैसा है आपका?
1: बहुत बढ़िया साहब।
0: हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, है ना? आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: बरेली की बाजार में झूमता गिरा।
0: मेरा साया फिल्म में आशा भोसले जी का गाया हुआ ये गीत सुनते हैं आप और हम और सारे श्रोता।

0: हेलो बरेली।
1: हाँ जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं चंडीगढ़ से सतीश नेजा बोल रहा हूँ।
0: सतीश भाई कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल जी, आपकी दुआएं और बहुत अच्छी जिंदगी बसर हो रही है। ये सब आप मोहब्बत है, आपका प्यार है, बहुत खुश रहते।
0: हमारा और प्यार तो है ही है, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद भी आपके ऊपर है कि
1: बिल्कुल
0: वो
1: जी, जो भी है, जो भी हमारी सांसें हैं, जो भी हमारी दिनचर्या है, ये सब ऊपर वाले की योजना के हिसाब से चलती है भाई।
0: जी जी जी तो सतीश भाई कैसा मौसम हो रहा है आपकी तरफ?
1: चंडीगढ़ में मौसम ठीक है भाई, अभी गर्मी नहीं है, ऐसे लगा लो भी अभी एसी चलाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे।
0: जी जी जी जी
1: और इसका मेन कारण ये अभी हिमाचल की जो ऊंचाइयों पे जो पहाड़ियां हैं वहाँ पे अभी भी बर्फबारी काफी हो रही है,
0: जी जी
1: उसकी तासीर से ही जो है ना इधर का मौसम ठीक रहता है चंडीगढ़।
0: चलिए आप ठंडी हवाओं का आनंद लीजिए। सतीश जी आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: तो वैसे तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन एक दाग फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम ने गीत गाया है, नी मैं यार मनाना।
0: बहुत बेहतरीन
1: तो
0: आप गीत आपने चुना
1: बहुत
0: है और
1: स्पेशल स्पेशल आपके नाम और जितने भी मेरे श्रोता बंधु सुनते हैं सबके नाम, बहुत प्यारा गीत है, जब चलेगा तो मुझे बहुत खुशी।
0: तो ठीक है, सुनते हैं ये गीत आप और हम और सारे श्रोता।

0: हेलो बरेली।
1: हेलो बरेली।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राम प्रसाद शर्मा बोल रहा हूँ, कटौली से।
0: राम प्रसाद जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया साहब, जय कृपा साहब। आज आपने मस्ते बड़ी सुनाया था, बहुत पसंद आया था आपने। आपने इतनी पुरानी बात बता दी साहब, मनबुद हो गया साहब।
0: चलिए चलिए, हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों को हमारी प्रस्तुति पसंद आए।
1: बहुत अच्छा आपने ब्रह्मस्त बरेली पेश करा था। आपने सत्यवान सावित्री कहानी सुना दी, बहुत पुरानी कहानी, हमने पहले किताबों में पढ़ा था। हाँ
0: साहब, आज बट सावित्री भी है, उसी उपलक्ष्य में वो भी हमने रखी थी, है ना?
1: जी जी जी।
0: तो राम प्रसाद जी, आज आपकी कॉल लगी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: ऐसा आपने पसंद
0: तो ठीक है, सुनते हैं ये गीत, आप और हम और सारे श्रोता।

0: हेलो बरेली।
1: हाँ जी, हेलो बरेली।
0: कौन बोल रहे हैं साहब?
1: मैं सर बरेली जंक्शन से गरीब भाई बात कर रहा हूँ आपसे।
0: गरीब भाई कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हैं सर, आज आपसे बात बहुत दिनों बाद हो रही है। आपका देवेंद्र रावत जी बोल रहे हैं सर?
0: जी गरीब भाई, मैं रावत बोल रहा हूँ और आपसे
1: आपकी
0: बात
1: आवाज
0: करके
1: ही
0: हमें
1: आपकी
0: बहुत अच्छा
1: पहचान
0: लगा।
1: है, आपकी आवाज ही आपकी पहचान है
0: जी, तो
1: जी।
0: हमको भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप हमारे पुराने श्रोता हैं और अपनी टिप्पणियां हमें भेजते रहते हैं। तो गरीब भाई, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज हम आपकी पसंद का गीत सुनना चाहेंगे, वैसे तो सुनते ही रहते हैं अपनी पसंद का, लेकिन आज हम आपकी चॉइस सुनना चाहते हैं
0: तो ठीक है, सुनते हैं ये गीत आप और हम
1: जी।
0: और सारे श्रोता।

0: इसी गीत के साथ आज का हेलो बरेली संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त देवेंद्र रावत को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो बरेली देवेंद्र रावत के साथ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया।

हाँ नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का प्रोग्राम युववाणी में। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त माधुरी। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यानी कि शांतिपूर्वक एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत है वो यूनाइटेड नेशंस द्वारा की गई थी। साथियों इस दिन का उद्देश्य लोगों के बीच शांति, प्रेम और भाईचारा में एकता, समावेश, सद्भाव भी इस दिवस का आधार है। तो ये थी बातें इस दिवस की, और अब सुनते हैं डांस बरेली डांस में इस गीत को।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: दोस्तों जैसा कि डेली प्रोग्राम में किसी न किसी युवा से की गई बातचीत को शामिल किया जाता है, और आज भी हमने एक युवा छात्रा से बातचीत की है जो कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर चुकी हैं। तो क्या बातचीत हुई, आइए सुनते हैं।
5: आपका नाम?
6: शिखा भारती।
5: जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या करती हैं?
6: अभी तो मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ।
5: जी आपने बताया आप कंप्यूटर सीख रही हैं, तो आपने एजुकेशन कहाँ तक ले रखी है?
6: एजुकेशन मैंने आईटीआई की है, फैशन डिजाइन से की है।
5: जी अच्छा, हमारी कोई युवा छात्रा है और वो फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन लेना चाहती है, तो कैसे आ सकती है इस कोर्स में?
6: कैफे पर जाके फॉर्म अप्लाई करा दे, फिर लिस्ट निकलेगी, फिर जाके कॉलेज में एडमिशन ले ले।
5: जी जी, तो आपने जब ये कोर्स किया तो आपने क्या क्या सीखा वहाँ पे?
6: मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे मतलब सिलाई करना, कपड़े डिजाइन करना और एम्ब्रॉयडरी और कपड़े पे मतलब पेंट करना। वो
5: जी जी, तो आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं?
6: जी मैं जॉब करना चाहती हूँ।
5: इसके अलावा आपने पढ़ने के लिए आगे कुछ सोचा है कि आप पीजी करना चाहें या फिर बीए एमए कुछ करना चाहती हूँ?
6: हाँ सोचा है मैंने, एमए।
5: अच्छा आपने अभी बताया कि आप कंप्यूटर सीख रही हैं, तो अच्छा कंप्यूटर का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्या लगता है आपको कि जो युवा हैं कि उन्हें कंप्यूटर सीखना चाहिए?
6: बहुत जरूरी है कंप्यूटर का ज्ञान होना, जिससे हम अपने मतलब अपने काम तो कर ही सकते हैं, जैसे अपना फॉर्म खुद से भर सकते हैं, अपने ईमेल भेज सकते हैं किसी को, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है कंप्यूटर सीखना।
5: जी जी बहुत अच्छी बातें आपने कही है।
6: जी हाँ, आप अपने मतलब घर पे ही कर सकते हैं, अपना काम अपने आस पड़ोस का काम कर सकते हैं।
5: जी जी बहुत अच्छी बातें आपने की है। तो अच्छा क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे युवा साथियों को कि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ें, मन लगाकर पढ़ाई करें, क्या कहना चाहेंगी?
6: मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि मतलब सब अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, ज्यादा अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, वो आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सोशल मीडिया मतलब इतना भी नहीं कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें, अपने मतलब टाइम टाइम के हिसाब से यूज करें अपने सब चीज।
5: जी आपकी हॉबीज क्या क्या हैं?
6: मेरी हॉबीज तो डांसिंग है और रीडिंग बुक।
5: जी जी रीडिंग बुक आपने बताया, डांसिंग, तो आज हमारा एक सेगमेंट भी जाता है डांस बरेली डांस, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
6: बोले चूड़ियां बोले कंगना।
5: जी जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद का ये गाना। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और आकाशवाणी बरेली से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: थैंक यू।

Hey, yeah.

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी है। साथियों ये दिन सन 1960 में भौतिक विज्ञानी थियोडोर मैमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की याद में मनाया जाता है। दोस्तों लेजर एक ऐसी तकनीक है जो तेज, सीधी और शक्तिशाली प्रकाश किरण उत्पन्न करती है। साथियों यह दिन प्रकाश के महत्व के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है और यह सबसे पहली बार सन 2018 में मनाया गया था। दोस्तों चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या संचार या ऊर्जा का क्षेत्र, प्रकाश का हर जगह अपना अलग योगदान है। ये सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करता बल्कि ज्ञान, प्रगति और आशाओं का प्रतीक है। तो ये थी बातें इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट पर और अब सुनते हैं डांस बरेली डांस में ये सॉन्ग।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: दोस्तों अब बारी है आज के सवाल की। हमने आपसे पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है माजुली द्वीप। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं नंद कुमार ठाकुर, सुदर्शन शाह, विष्णु मिस्किन, जॉन डिकेस्ट्रो, राम कुमार रेवाड़, निसार सलमानी, दिनेश वर्मा, उत्तम सिंह जंगेल, संजय धींगिया, गंगा सिंह रावत, विजय सुरलकर, अनोखे लाल मौर्य, राजेश वर्मा, अभिजीत, प्रवीण चौहान और उनके सभी साथी। तो ये था सवाल और जवाब, और अब सुनते हैं ये सॉन्ग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी माधुरी के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसान बाड़ी में सब भैया बहन को अपने भैया हेडलपाल सिंह
2: और कन्हैया की ओर से
1: राम राम। सुनाओ कन्हैया, कैसे हालचाल?
2: हालचाल देखो भैया बढ़िया हैं और उम्मीद करते हैं हमारे कृषक साथियों अच्छे खासे होंगे और अपनी खेती बाड़ी को काम काज जो है वो सही तरीका से कर रहे होंगे।
1: बिल्कुल सही बात है भैया, ब्यावर आते तो अब कम है गई है, दावतें अब ना आ रही है।
2: देखो दावतन को दौर अब निबट चुको है और जब हमारे किसान भैया के खेती बाड़ी में काम काज ज्यादा होता है तभी भैया दावतें ज्यादा जोर करती हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब तो बूंदाबांदी हो गई है। हमारे किसान भैया ने अपने खेतन की जुताई आरंभ कर दी है क्योंकि जायद में अपने किसान भैया ने कितना है धान की फसल लेनी है।
2: और धान की फसल की जहां बात आ रही है तो इस समय हमारे कुछ किसान भैया के खेतन में खड़ी भी कुछ फसलें हैं जैसे मक्का है, मूंग है, तो भैया उनमें देखभाल की जरूरत है।
1: बिल्कुल सही बात है। और हमारे जो भैया बहन हैं यदि एकीकृत कृषि प्रणाली अपनावेंगे तो काफी फायदा हो सकता है।
2: अरे भैया एकीकृत कृषि प्रणाली जो है का
1: जे भैया एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मुख्य फसल के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और बागवानी जैसे बहुत सारे कृषि कार्यों को एक साथ जोड़ जा सकते हैं।
2: देखो भैया जहाँ बहुत सारे काम हैं जिसके अंतर्गत हम एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाए करके कर सकते हैं तो भैया हम जो कह सकते हैं कि जो खेती बाड़ी से समय बचते हैं बाकी सही उपयोग करके अतिरिक्त आमदनी को जरिया बना सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। एक घटक का कचरा या फिर अवशेष दूसरे घटक के लिए संसाधन को काम करते हैं। जैसे हम बात करें पशुओं के गोबर का उपयोग खेतों में जैविक खाद के रूप में और मछली पालन में भोजन के तौर पर कर जा सकते हैं।
2: भैया बहुत सारे काम हैं जिनको हमारे किसान साथी अपनाए करके कुछ कम खर्च करके अच्छा मुनाफा लेने में भी सफल हो सकते हैं।
1: सही
2: जैसे कि आप बता रहे हैं अब है ना, लेकिन हेडलपाल भैया हमें जो लग रही है आज के कार्यक्रम की कुछ जो परंपरा होती है अपने कार्यक्रम की बाको आप भूल चल रहे हो।
1: आप आज के सवाल की बात कर रहे हो
2: जी?
1: तो भैया हम लेके आए हैं आज को सवाल।
2: का सवाल है आज को?
1: आज को हम सवाल लेके आए हैं कि हरी खाद हेतु हमारे किसान भाई कौन कौन सी फसलें अपने खेतों में उगा सकते हैं।
2: तो भैया थोड़ा मंथन और विचार करो, ढूंढ निकालो जो सवाल को जवाब और सही जवाब हम बताएंगे अपने कार्यक्रम के अंतिम समय में, तब आप अपने द्वारा तलाशे गए जवाब को हमारे जवाब से मिलान कर सकते हो।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: और हकू भैया और हेडलपाल भैया देखो जो जानकारी इनको पिटारा है वो हमें जो लग रही है आपको बड़ो भारी दिख रहा होगा।
1: अरे आज होएगा ना भैया भारी, क्योंकि आज शनिवार है और आज के दिन तो पहुंचते हैं अपने अन्नदाता भाइयों से बात करने के लिए गांव में।
2: तो भैया देखो गांव की ओर चलो और पिटारे को खोलो और पहुंचो गांव में।

0: कन्हैया भैया
1: जी,
0: आज क्षेत्र संकलित कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करने के लिए हम और आप आकाशवाणी से निकले
1: जी,
0: और निकले फरीदपुर मार्ग पर।
1: बिल्कुल।
0: और पहुंच गए हैं इस समय कौन से गांव में?
1: कुछ पता नहीं है। जब गांव में हम लोग आए हैं और इन लोगों के बीच में जहां पर हम रुके हैं इस समय चौपाल पर कई लोग बैठे हुए हैं। चूंकि हमको इस गांव का नाम तो रोड पर लिखा होगा लेकिन हमने देखा नहीं। आपने देखा क्या?
0: नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया।
1: तो फिर गांव का हमको और आपको किसी को पता नहीं है, है ना? सबसे पहले हम क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में किसानों के साथ के कार्यक्रम को हम लोग निकल करके आए हैं
0: जी।
1: और इस चौपाल पर जहां ये काफी लोग इकट्ठे हैं पहुंचे हैं, तो क्यों ना हमें और आपको पता करने की जरूरत ही नहीं है
0: जी।
1: अब हम आ गए हैं इन सब पंचों के बीच में, तो इन्हीं से पता कर लेंगे कि ये गांव कौन सा है
0: जी। तो एक किसान साथी है हमारे साथ में, उनसे बातचीत शुरू करें
1: जी।
0: आपका शुभ नाम क्या है?
2: अमरीश कुमार सिंह।
0: अमरीश कुमार सिंह, हमारी और आपकी जो बातचीत हो रही है वो कौन से गांव में हो रही है?
2: ग्राम क्यारा, पोस्ट क्यारा, जिला बरेली
0: जी। क्यारा गांव है ये
2: जी, जी।
0: और कितना बड़ा गांव होगा ये?
2: गांव तो हमारा काफी बड़ा है, करीब पूरी ग्राम सभा में 5,000 लमसम
0: वोट है।
2: हम वोट है पूरी ग्राम सभा
0: जी।

0: सात आठ गांव लगते हैं
1: जी, यहाँ पर जिस चौपाल पर हम बैठे हुए हैं और
0: जी
1: हमारी और आपकी बातचीत चल रही है,
0: जी
1: यहाँ पर सामने लिखा हुआ है सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान,
0: जी
1: और यहाँ पर जो बातचीत हो रही है,
0: जी
1: तो ये बताइए आप सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान चलाते हैं,
0: जी जी
1: तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमारे ग्रामवासियों को प्रदान की जाती है?
0: गेहूँ है, चावल है, अंत्योदय कार्ड में 3 महीने के बाद चीनी मिलती है, 3 किलो चीनी मिलती है,
1: अंत्योदय कार्ड पर
0: हर महीने नहीं तीसरे महीने में
1: गेहूँ मिलता है,
0: चावल
1: चावल मिलता है, और भी जो अनाज आते हैं,
0: हाँ जी जी कभी बाजरा भी आता है कभी,
1: और कभी कभी दालें भी आ जाती हैं,
0: हाँ वो पहले आई थी
1: जी,
0: लॉकडाउन समय,
1: और कभी कभी रिफाइंड भी देखने
0: हाँ,
1: को मिला
0: भी आया
1: जी, तो इस तरीके से समय समय के अनुसार सारी चीजें आती रहती
0: जी,
1: हैं।
0: जी, जी
1: अब बात करेंगे यहाँ पर किस दर से, किस तरीके से ग्रामवासियों को ये अनाज उपलब्ध होता है?
0: ये लाल कार्ड पे 35 किलो राशन है,
1: अच्छा,
0: और यूनिट पे 5 किलो है,
1: एक यूनिट पे 5 किलो,
0: 5 किलो
1: है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं,
0: जितने राशन कार्ड में सदस्य हैं,
1: यूनिट है,
0: यूनिट है, उस हिसाब से
1: गल्ला में उनको मिल जाता है,
0: मिल जाता है।
1: तो ये जानना चाहेंगे कि राशन कार्ड है, गांव में कितने होंगे लगभग?
0: 2 दुकानें हैं गांव में,
1: अच्छा, बड़ा गांव होने की वजह से, तो यहाँ पर जो एक राशन कार्ड है, एक गरीबी रेखा से नीचे का होता है, एक गरीबी रेखा से ऊपर का होता है,
0: जी जी,
1: दो तरीके के राशन कार्ड होते हैं,
0: जी जी,
1: तो जो गरीबी रेखा से ऊपर है उनको किस तरीके से राशन मिलता है?
0: एक यूनिट वाला राशन है, एक लाल कार्ड है, उसे 35 किलो राशन,
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: जिसको अंत्योदय बोलते हैं,
0: अंत्योदय बोलते हैं,
1: एक सफेद कार्ड है,
0: एक सफेद कार्ड है
1: जी,
0: दो कार्ड है,
1: दो तरीके के कार्ड हैं
0: जी।
1: अब किसी व्यक्ति के पास राशन कार्ड नहीं है, हाँ, और वो गरीब परिवार में आता है, तो उसको क्या करना चाहिए?
0: उसे राशन कार्ड बनवाना चाहिए अपना, और क्या करना चाहिए,
1: किस तरीके से बन पाएगा राशन कार्ड?
0: अब वो अपनी ऑनलाइन कराए, सेक्रेटरी साहब के साइन कराए, प्रधान के साइन कराए, उसके बाद
1: अच्छा राशन कार्ड बन जाएगा,
0: बन जाएगा कार्यालय में जाके।
1: ऐसे भी कुछ ग्रामीण वासी हमारे होंगे जो हमारी और आपकी बातचीत को सुन रहे हैं, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और जो प्रक्रिया बता रहे हैं, इस प्रक्रिया से गुजरे तो राशन कार्ड बन जाएगा,
0: बिल्कुल बन जाएगा,
1: और राशन फिर उनको उपलब्ध हो जाएगा,
0: जी बिल्कुल हो जाएगा।
1: तो ये जो आप राशन बांटते हैं अपने यहाँ
0: जी,
1: वो किस तारीख को बांटते हैं?
0: तारीख तो जब ऊपर से ही
1: निर्धारित होती है,
0: हाँ, 10 में भी खुल जाए कभी मशीन, 8 में भी, 6 में भी,
1: अच्छा,
0: जिस जब खुले तभी बटेगा।
1: तो गांव वालों को कैसे पता लगता है कि आज राशन बटेगा?
0: ये तो गांव में सारे लोगों को मालूम, वो चौकीदार से कलवा देते हैं
1: जी,
0: और वरना फोन से कह देते हैं, सब लोग मालूम कर लेते हैं एक दूसरे से
1: जी, फिर एक को पता लग जाता है,
0: हाँ, सारे लोग आ जाते हैं
1: जी। बहुत
0: ऐसा है ना, गाँव में 2 दुकानें हैं, एक अंदर है दुकान, एक बाहर है ये
1: जी,
0: तो जब वितरण वहाँ होता है वो काफी बड़ी आबादी, वहाँ सब लोगों को मालूम पड़ जाता है कि राशन बट रहा है
1: जी, तो इस तरीके से राशन बटता है
0: जी।
1: तो ये जो राशन इस समय आता है, कहाँ से लेकर के आते हैं आप?
0: राशन तो हमारे यहाँ गाड़ी आ जाती है,
1: अच्छा,
0: हाँ, यहीं उतरता बराबर में,
1: ठीक,
0: वहीं से लेके दुकान पर लगा देते,
1: दुकान पर लगा देते हैं, और इस तरीके से जो राशन है वो ग्रामवासियों को मिल जाता है। अब क्या कहना चाहेंगे अपने ग्रामवासियों से, राशन लेते समय उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
0: तो अपना कार्ड लेके आते हैं, अब तो मशीन से है
1: जी,
0: कांटा कनेक्ट है, अपना राशन तुलाते हैं, ले जाते हैं,
1: कोई भी घर का ले जा सकता है सदस्य,
0: राशन कार्ड में जो सदस्य हैं वो कोई भी ले जा सकता,
1: अच्छा,
0: है,
1: कोई भी ले जा सकता,
0: अंगूठा लगा के
1: जी,
0: राशन ले जा सकता तुरंत
1: जी। इस तरीके से राशन का वितरण हो जाता है। अब एक बात और जानना चाहेंगे हम आपसे, कोई भी व्यक्ति हमारे गांव का है, उसको राशन जिस दिन आप बांट रहे हैं और किसी कारण से वो बाहर होता है, तो उसको कैसे उपलब्ध होता है?
0: वो तो राशन तो बटता रहता है लगातार,
1: अच्छा,
0: हाँ, उसका समय होता है कि मशीन 15 तारीख तक खुलेगी, 10 से 25 तक खुलेगी, या 10 से 20 तक खुलेगी, या 10 से 14 तक खुलेगी, जो भी सरकारी टाइमिंग होती है उसकी, उस हिसाब से जब वो आएगा तब उसे मिल जाएगा
1: जी। यानी जिस दिन बट रहा है उसी दिन से मतलब नहीं है, वो कभी भी ले सकता,
0: हाँ, जितने दिन अगर मशीन खुलेगी उतने दिन में वो कभी ले सकता है।
1: बहुत अच्छा, जिस तरीके से हमारा जो राशन वितरण का प्रक्रिया है गाँव में पूर्ण होती है
0: जी,
1: अमरीश कुमार जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी अभी सभी सुनने वालों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कन्हैया भैया
2: जी,
1: किसान साथी तो और भी बैठे हुए हैं,
2: देखिए आज हम अपनी आकाशवाणी को लेकर के किसानों के बीच में ही आए हैं, तो यहाँ पर ये सभी कृषक साथी हैं और बहुत लोगों से हमें बात भी करनी होती है, तो अगले कृषक साथी कौन है इनसे भी जान लीजिए कुछ अनुभव इनके।
1: बिल्कुल जानेंगे, हमारा मन तो ये कह रहा था कि आप कुछ उनके अनुभव पूछिए।
2: चलिए आप कहते हैं तो हम भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। आपको नाम कहा है साहब?
3: मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है।
2: आप भी इसी गाँव में रहते हैं?
3: बिल्कुल इसी 11 गाँव में रहते हैं, विकासखंड 11 पड़ता है ये, और तहसील हमारी सदर है, जिला बरेली है।
2: तो हम आपसे जानना चाहेंगे, हम आज एक आकाशवाणी कार्यक्रम को लेकर के किसानों के बीच में आपके बीच में आए हैं,

0: तो हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई कामकाज जरूर करता है अपने जीवन यापन के लिए।
1: जी
0: हम अपने सुनने वालों के लिए जानना चाहेंगे, आप क्या करते हैं?
1: मैं कृषि ही करता हूँ, खेती का ही काम है मेरे पास।
0: बहुत अच्छी बात है। बात करें तो खेती में इस समय क्या कामकाज चल रहे हैं?
1: अब खेती में इस टाइम तो खाली खेती पड़ी है, वैसे गन्ने का काम है,
0: अच्छा
1: गन्ने की फसल है,
0: जी।
1: तो जो फसल है उसमें पानी लग रहा है, खाद लग रही है, खुदाई है, गुड़ाई है, वो काम चल रहा है।
0: आपने कहा पानी लग रहा है, खाद लग रहा है, बहुत सारे काम बताए। हम एक एक करके सब कामों के बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं खुदाई, जो गन्ने की होती है वो किस तरीके से होती है और क्या फायदा होता है उससे?
1: खुदाई से ऐसा होता है कि जैसे जो खुदाई हम कराएंगे, पौधा होता है, पेड़ी होती है,
0: जी
1: उसमें किल्ले ज्यादा आते हैं, उसको जो घास वगैरह होती है उसमें खरपतवार जो उग के आते हैं वो खत्म हो जाते हैं,
0: अच्छा
1: धूप पड़ेगी तो वो सूख जाएंगे, है तो उससे जो है उसके लिए पौधों के लिए जो गन्ने की जो पौधे किल्ले निकलते हैं उसके लिए जो है ऊर्जा मिलती है।
0: बहुत अच्छी जानकारी आप रखते हैं। हम यहाँ पर ये भी आपसे जान लेते हैं कि गन्ने की फसल में खाद किस से किस समय आप देते हैं, और जो कृषक साथी हमारे हैं आपकी हमारी बातचीत को सुन रहे हैं तो वो किस किस समय गन्ने की फसल में खाद दे सकते हैं?
1: खाद तो पहले जब गन्ना की बुआई होती है उसी टाइम में खाद है, कीटनाशक है, गन्ने का जर्मेशन के लिए जो दवाई पड़ती है
0: जी
1: वो डालते हैं।
0: ठीक
1: उसके बाद में गन्ने की जो नाली होती है उसको पाट दिया जाता है, और उसके बाद में जब गन्ने का जर्मेशन शुरू होता है, कल्ला निकल के ऊपर आता है, तो पहली जो गुड़ाई होती है, खुदाई जो होती है उसमें जो है जो जैसे जैसे हमारे यहाँ गाँव में अंधी खोद बोलते हैं,
0: जी जी
1: तो वो अंधी खोद में उसमें ये होता है कि जो ऊपर से पट बन जाती है, जर्मेशन जो है जल्दी आने की कोशिश करता है
0: जी
1: उससे,
0: जी
1: है तो उसमें उसके बाद में फिर पानी लगाते हैं,
0: जी
1: खुदाई के बाद में पानी लगाते हैं, फिर उसके बाद में पहले कोराजिन नाम की एक दवाई आती थी वो लगाई जाती है, वो उसकी जड़ जो होती है उसपे जो है नोजिल खोल करके उसपे दवाई पड़ती
0: अच्छा
1: है तो उससे जर्मेशन से ये होता है कि जब उसके बाद में 24 घंटे के अंदर पानी लगना चाहिए गन्ने में।
0: अच्छा
1: अब वो कोराजिन इस टाइम जो है बंद कर दी गई है, तो अब एक सीरा सारी दवाई आ रही है वो लगाई जाती है,
0: अच्छा
1: तो उससे कीट गन्ने में रोग की क्षमता कम हो जाती है,
0: जी
1: रोग की क्षमता कम हो जाती है। जैसे
0: ठीक
1: पहले गन्ना अंदर जो है लाल पड़ जाता था, वो गन्ने में कनफरा निकलता था,
0: जी जी
1: जैसे एक गन्ने में कायदा में तो ऊपर तक एक ही जाना चाहिए
0: पत्ती होनी चाहिए।
1: पन्नी पत्ती होनी चाहिए,
0: जी
1: उसमें किल्ले निकल आते हैं ऊपर जाकर के,
0: हाँ
1: 5 से 4 फीट पे
0: जी
1: जाकर
0: जी
1: के
0: जी
1: वो नहीं निकलते हैं।
0: अच्छा ये अगर दवा लगाते हैं तो इससे रोक लेते हैं, जर्मिनेशन सही हो जाता है। और अब चूंकि बात कर लेते हैं, इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है और अभी थोड़े दिन पहले बारिश भी हुई है, तो ये बूंदाबांदी जब होती है और तपन पड़ती है उसके बाद भी अगर बात करें तो गन्ने की सिंचाई लगभग कितने दिन बाद कर देनी चाहिए, और क्या स्थिति होती है कि गन्ने की सिंचाई, अब हम कहें कि खेत हमारा पानी मांग रहा है?
1: गन्ने की सिंचाई तो हर 10 से 15 दिन में हो जानी चाहिए,
0: अच्छा
1: हद से 10-15 दिन में हो जानी चाहिए,
0: ठीक
1: और कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कि सिंचाई नहीं कर पा रहे तो उससे जो है गन्ने की फसल में नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि जैसे हम लोग जो है खाना खाते हैं उसी हिसाब से प्यास लगती
0: जी जी
1: है, जब प्यास लगेगी तो पानी की जरूरत तो पड़ेगी,
0: बिल्कुल
1: तो ऐसे ही फसल को चाहिए पानी भी, फसल को भी पानी चाहिए
0: जी।
1: है, तो 10 से 15 दिन में पानी घूमना चाहिए।
0: तो ये तरीका है गन्ने की फसल से अच्छी पैदावार
1: अच्छी
0: लेने का।
1: तरह
0: यहाँ पर हम आपसे जान लेते हैं, चूंकि आपकी बातचीत से लग रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से आप खेती करते हैं, और उम्मीद हम ये करेंगे चूंकि इतनी जानकारी आपको है तो खेती से अच्छा उत्पादन आप लेते होंगे। हम अपने कृषक साथियों के लिए आपकी जुबानी जानना चाहेंगे कि एक खेत से अच्छी पैदावार के लिए, या फिर जो खेती हमारे पास है उससे अच्छी पैदावार के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: भाई, अच्छी पैदावार तो सुबह और शाम दोनों टाइम पहले खेत की तरफ जाना चाहिए, है खेत को जैसे अपने बच्चों को देखते हैं ऐसे ही फसल को देखना चाहिए,
0: ठीक
1: जैसे घर परिवार में अपने परिवार को देखते हैं उसी
0: जी
1: हिसाब से फसल को भी एक टाइमिंग होती है, उसको सुबह भी जाएं और शाम को भी जाएं।
0: बिल्कुल
1: अगर फसल कौन सी चीज आ रही है, जैसे शरीर का कोई पता नहीं है कब किस टाइम रोग लग जाए, किसके लिए लग जाए, ऐसी फसल को भी कोई समय उसका वो निर्धारित नहीं है कि फसल में कौन सा रोग किस टाइम आ जाए।
0: जी
1: जरूरी नहीं है कि हमने जो है सीरा सारी और कोराजिन लगा दिया तो वो लाइफ टाइम इलाज हो गया।
0: जी जी जी
1: जब आप खेत की तरफ जाएंगे और देखेंगे उसके लिए तभी मालूम पड़ेगा भाई तो
0: क्या दिक्कत है।
1: क्या दिक्कत है उसमें?
2: कन्हैया भैया
0: जी,
2: एक बात और जानना चाहेंगे धीरेंद्र जी से कि इस समय गन्ने की फसल तो आपके खेत में लगी हुई है, और अब हमारे जो कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो इस समय तैयारी कर रहे हैं खरीफ की फसलों की, तो खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें उगाएंगे इस विषय में भी जान लेते हैं।
1: खरीफ की फसल में भाई वैसे तो धान भी
2: मुख्य

0: मुख्य है हमारे यहाँ धान की खेती मुख्य है।
1: जी
0: बाजरा भी है,
1: जी
0: बाजरा भी है हमारे यहाँ। बहुत से किसान, जैसे हम नहीं बोते हैं
1: और लोग
0: भाई, हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं, हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं जो बाजरा की फसल बोते हैं।
1: जी
0: है तो उसकी अभी बाजरा बोया नहीं गया है, है तो खेत की सबसे पहले तो जुताई बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, जिसमें खरपतवार जो जमा हुआ है वो सब सूख जाए,
1: नष्ट हो जाए,
0: नष्ट हो जाए। उसके बाद में जब बारिश एक बारिश हो जाएगी, जिससे मतलब जब बारिश वो ऐसी बारिश हो जो उसके लिए मतलब जो है पानी भर जाए, उसकी जो अब तपन जो है जमीन की
1: वो
0: निकल जाए
1: जी।
0: उसके बाद में फिर बाजरा की फसल बोई जाती है।
1: धान की जो बेड़ है वो कब डालेंगे?
0: धान की बेड़ तो अब तैयारी हो रही है हमारी।
1: अच्छा।
0: तैयारी हो रही है, 4 से 6 दिन में धान की पौध पड़ जाएगी।
1: किस तरीके से खेत तैयार करना चाहिए धान की पौध के लिए?
0: खेत हमारे तैयार है, सबसे पहले जैसे गेहूं कटा है, उसके बाद में जुताई की है, उसके बाद में पलेवा मार दिया है उसका, है अब जो है जुताई करके उसकी और पानी भरेंगे, उसका कधार करेंगे अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से कधार करेंगे उसका। फिर धान जो है पहले 24 घंटे 48 घंटे जैसे उसका जर्मिनेशन आएगा,
1: जब ही बनाएंगे
0: जर्मिनेशन जैसे आएगा उसी के हिसाब से हम पौध डालेंगे, उसमें अपनी जो दवाई है कीटनाशक जो दवाई है वो डालेंगे, और दवाई डालने के बाद में उसमें जो DAP वगैरह है खाद है वो अपनी डाल के फिर उसके बाद में, और जैसे आज मैंने पौध डाली सुबह के लिए उसमें पानी नहीं रहना चाहिए।
1: अच्छा,
0: पानी नहीं रहना चाहिए,
1: ज्यादा पानी नहीं भरना चाहिए।
0: अगर बाई चांस अगर पानी ज्यादा है तो सुबह के लिए उसको सुबह को निकाल दें, पूरे दिन शांत रहे वो
1: जी,
0: पूरे दिन सूखा पड़ा रहे, और शाम को जो है अगर पानी अगर जरूरत है आपको, अगर जमीन चाह रही है, जर्मिनेशन जो दवाई डाली है हमने धान की पौध जो डाली है, अगर वो चाह रही है कि हमें पानी की जरूरत है
1: जी,
0: तब पानी भरे और फिर दूसरे दिन फिर निकाल दें
1: जी। दिन में पानी भरा नहीं होना चाहिए,
0: दिन में पानी नहीं भरा
1: क्योंकि धूप से गर्म हो जाता है,
0: धूप से गर्म होता है और जो किल्ला जो उसका जो
1: वो
0: सड़ जाता है, मारा जाता है।
1: तो ये बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए।
0: अच्छा, हर एक किसान भाई
1: जी, अधिकतर आप कौन कौन सी प्रजातियों का धान करते हैं?
0: भाई वैसे तो हम मोटा धान है, जैसे वो 837 है, हाइब्रिड में है, PR 13 है
1: जी,
0: और जैसे वो एक गजरात किस्म का आती है, और लेट वैरायटी हमारे यहाँ जो है वो आता है 1692
1: जी,
0: वो भी काटते हैं।
1: अब बहुत बहुत धन्यवाद धीरेंद्र जी, आपसे हमारी बातचीत हुई और आपने अपने अनुभव और बहुत अच्छी तरीके से हमारे किसान भाइयों के बीच साझा किए हैं। एक किसान साथी और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमसे भी बातचीत की जाए। आपका शुभ नाम क्या है?
2: नन्ने।
1: नन्ने जी, हमारी और आपकी किस गांव में बातचीत हो रही है?
2: गांव क्या रहा है?
1: अच्छा, ये बताइए क्या करते हैं?
2: हम गेहूं धान सभी फसल करते हैं।
1: अच्छा, खेती में ये
2: मूंग भी करते हैं,
1: ये सारी फसलें करते हैं
2: जी।
1: तो जानना चाहेंगे कि आपका जो गाँव है इसमें क्या क्या सुविधाएं मौजूद है?
2: सुविधाएं सभी हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ।
1: सरकारी अस्पताल है?
2: हाँ है,
1: रास्ते में हमने देखा था
2: जी।
1: पशु चिकित्सालय
2: जी है,
1: बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल
2: हाँ है,
1: और क्या क्या चीज है?
2: हर चीज हमारे गांव में है।
1: अच्छा, सारी सुविधाएं मौजूद,
2: सारी सुविधाएं हैं।
1: और बात करें गांव के विकास की, तो गांव में सड़कें कैसी हैं?
2: सही है हमारे गांव में।
1: अच्छा,
2: हाँ।
1: कहीं कीचड़ वगैरह
2: नहीं है? नहीं है।
1: सफाई की क्या व्यवस्था रहती है?
2: सफाई आते रहते हैं
1: जी,
2: एक हफ्ते में आते हैं
1: जी। काफी बड़ा गांव है।
2: हाँ, अगर कोई किसी को दिक्कत भी होती तो प्रधान को फोन करते हैं
1: जी,
2: तो वो भेजते हैं कि अगर कल तो आए थे गांव में कि हमारा इधर नहीं आए
1: जी,
2: तो वो भेज देते हैं 2 आदमियों को
1: जी,
2: कि वहाँ उस गली में चले जाओ,
1: इधर
2: कोई प्रोग्राम है या गंदगी है, तो वो आते हैं।
1: अच्छा, जो गाँव वाले लोग होते हैं उनका क्या योगदान रहता है? जो गाँव की सफाई होती है, बेचारे दो व्यक्ति नहीं कर पाते,
2: वो नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग खुद ही कर लेते हैं
1: जी,
2: अपने आगे है
1: होना भी चाहिए,
2: हम लोग खुद ही अपने अपना साफ कर देते हैं।
1: सहयोग पूरा पूरा रहता है?
2: हाँ, पूरा पूरा अपना, हम लोग अधिकतर अपने ही आप करते हैं
1: जी।
2: अगर कोई लंबा काम होता तो आ जाते हैं
1: जी। अब गांव में थोड़ी सी बातचीत करें बिजली के विषय
2: जी,
1: तो बिजली आती है?
2: हाँ, लाइट आ रही, और अभी तार हर जगह टूट गए थे, हमारे यहाँ भी टूट गए
1: अभी पिछले दिनों, जो बहुत ज्यादा तेज आंधी आई है, अभी रास्ते में हम आ रहे थे, बहुत सारे वृक्ष भी टूटे पड़े थे, तार भी काफी जगह टूट गए हैं, खंबे भी मुड़ गए हैं, तो उनको ठीक होने में थोड़ा समय भी लगा,
2: लेकिन समय लगा, लेकिन तब भी उन्होंने जल्दी की,
1: बहुत जल्दी की जी।
2: हाँ, खंबे में टूट गए, लगाए उन्होंने लाइट, उन्होंने जल्दी से जल्दी इतनी लाइट सही कर देते हैं, उतनी लाइट दे देते हैं
1: जी।
2: हाँ, ऐसा नहीं कि सब सबकी रोक दें
1: जी,
2: अगर आज यहाँ 11 की सही हो गई तो 11 लाइट दे दी, सिमरा की सही कर रहे हैं
1: जी,
2: तो वो काम है जाली
1: जी। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया है कि गाँव के विषय में जो जो सुविधाएं हैं। अब बात करें क्या करते हैं, खेती बाड़ी
2: जी? हम खेती करते हैं।
1: खेती में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगा रहे हैं?
2: हम गन्ना भी करते हैं, धान भी करते हैं, बाजरा भी करते हैं, और मूंग भी करते हैं।
1: अच्छा,
2: इस साल मूंग भी लगाई है
1: जी। खड़ी है इस समय?
2: हाँ, इसमें खड़ी है
1: इन दिनों में।

0: ये मूंग की फसल में देखा जाए तो हमारी गेहूं की फसल कटती है, खेत खाली होते हैं, तो बहुत सारे जो कीट पतंगे होते हैं वो हमारे जायद में जो हमने उर्द मूंग की खेती की उस तरह की ओर आकर्षित होते हैं अधिकतर की
1: जी।
0: क्या उपाय करते हैं?
1: ऐसा है कि हमने मूंग लगाई
0: जी,
1: और मूंग जहाँ थोड़ी थोड़ी 20 दिन की या 10 दिन की हुई उसमें तुरंत ही आप कीटनाशक अपनी दवाई लगाए
0: जी,
1: और ये ना देखें कि अभी हमारे हमारे में नहीं लगी है। जब तक आप देखेंगे आज नहीं लगी है, कल जाएंगे तब तक काम हो जाएगा
0: जी।
1: तो उसमें आप पहले ही लगा दो।
0: अच्छा,
1: हम लोगों ने पहले ही लगा दी थी
0: जी, जिससे कि जिन्होंने
1: हाँ नहीं लगा, एक हमारे पड़ोस में उन्होंने नहीं लगाई थी तो उनका नुकसान हो गया
0: जी। अब बात करें तो ये जो मूंग की खेती आपने उस बीच में ली है जिस समय खेत लोगों के खाली पड़े हैं, आपके खेत में फसल खड़ी है, तो क्या फायदा मिल जाता है इससे?
1: इसमें हमारा धान भी हो जाएगा
0: जी,
1: मूंग अभी कट जाएगी, हमारा धान भी हो जाएगा, इसमें गेहूँ काट लिया हमने
0: जी,
1: और मूंग भी काट लेंगे और धान भी हो जाएगा
0: जी। जमीन खाली नहीं रहेगी,
1: जमीन खाली नहीं रहेगी,
0: उसका लाभ हमको मिलेगा,
1: हमको मिल जाएगा लाभ।
0: अब कम से कम इतना तो हो जाएगा कि जो मूंग से हमारी बचत होगी वो धान में लग जाएगी,
1: धान में लग जाएगी,
0: धान की खेती से हमें पूरा पूरा फायदा मिल जाएगा,
1: पूरा पूरा फायदा मिल जाएगा।
0: तो होना भी चाहिए कि हमारे जो किसान साथी हैं वो लगातार इसी तरीके से खेती करें। आप पशुपालन करते हैं
1: जी,
0: तो ये बताइए कौन कौन से पशु हैं आपके पास?
1: भैंस भी है, गाय भी है, बैल भी है।
0: अच्छा, खेती बैलों से हो रही
1: है? बैलों से करते हैं खेती।
0: तो हल कौन कौन से होंगे
1: हमारे पास? सभी हल हैं, तिफारा भी है, गन्ना जोतने वाला भी है।
0: अच्छा,
1: और पलटा भी है।
0: अच्छा, सभी हल रखते हैं। तो कितना खेत जोत लेते होंगे एक दिन में?
1: 8 से 10 बीघा तक।
0: आपने एक तो हल बताया था पलटा, एक कल्टीवेटर बताया जिसको तिफारा कहते हैं, 3 खुरपी होती है इसलिए तिफारा
1: जी, जी, जी।
0: और भी हल होंगे
1: जी।
0: देसी हल तो अब हमारे किसान भाई इस्तेमाल नहीं करते,
1: अब तो नहीं।
0: तो पलटा हल और तिफारा जो हल है उसमें क्या अंतर है?
1: पलटा हर जो है उसमें घास जो है नहीं होती है।
0: अच्छा।
1: और उसकी नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है,
0: घास नीचे दब जाती है,
1: घास नीचे दब जाती है,
0: सड़ जाती है,
1: वो सड़ जाती है
0: जी।
1: और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है
0: जी,
1: और उससे हमारी फसल में जो भी हम लगाएंगे वो नई फसल वो मिट्टी मिल जाती है
0: जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई थी। अब बात करें इस समय खेती हमारे जो किसान साथी हैं वो बैलों से नहीं करते हैं
1: जी,
0: सब खेती मशीनों से होती है, ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, लेकिन फिर भी आज बैलों से खेती कर रहे हैं
1: जी।
0: तो बैलों की देखरेख
1: अच्छी तरीके से
0: जी होना भी चाहिए,
1: अच्छी तरीके जैसे हम तुम बच्चे करते हैं, इंसान की करते हैं उसी तरह करते हैं, क्योंकि हमको उसी कमाई खानी है।
0: आज के समय में जो युवा साथी हैं क्या वो आपकी तरह जुताई कर सकते हैं?
1: सब नहीं कर पाएंगे
0: जी,
1: कुछ लोग हैं वो कर लेंगे, पुराने लोग हैं
0: जी,
1: अब
0: वो
1: जो
0: तो कर लेंगे।
1: अब जो गुड्डू भैया हैं, जो हमारे गांव कुछ लोग ऐसे हैं, ये गन्ना हमारे बैलों से जोत लेते हैं
0: जी,
1: क्योंकि और मजदूर नहीं मिले तो हमसे कहें बैल दे दो तो गन्ना भी जोतते हैं
0: जी।
1: उससे हमारे गन्ने के लिए मजूरी कम जाती है और टाइम बढ़ जाता है, जैसे जब गेहूं कटाई होती है तो मजदूर नहीं मिलते हैं गन्ना खुदाई के लिए, तो हम बैलों से गन्ना जोत लेते हैं अपना।
0: बहुत बढ़िया, जिससे समय की बचत,
1: समय की बचत हो जाती है और समय हमें मिल जाता है, फिर आगे लेबर खाली हो जाती है फिर हमें मिल जाती है
0: जी। इस तरीके से जो है खेती बाड़ी का काम काज आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, पूरी तकनीकी के अनुसार कर रहे हैं और पारंपरिक तरीकों को इस समय अपना करके आप अपनी खेती कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खेती के विषय में और गांव के विषय में जानकारी देने के लिए। कन्हैया भैया
2: जी,
0: कृषक भाइयों से बातचीत करते करते क्या रहा हमें पता ही नहीं लगा कितना समय हो गया, और काफी समय हो चला है और अपने लोगों की बातचीत भी काफी हो चुकी। अपने सभी किसान भाइयों से अब अनुमति लेते हैं और पुनः लौटते हैं आकाशवाणी केंद्र की ओर
2: जी।
0: तो इन्हीं सब ढेर सारी बातों के साथ फिर कभी मुलाकात होगी अपने क्यारा के किसान भाइयों से। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को हम लोगों की राम राम, राम, राम। कन्हैया भैया
2: जी,
0: हमारे ग्राम क्यारा के किसान भाई कितने बढ़िया है और बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने खेती बाड़ी के विषय में जानकारी दी
2: और गांव विकास के बारे में बताओ भैया। अब अपने पिटारे से कहाँ निकाल रहे हैं भैया?
0: अब मनोरंजन की बारी है।
2: अच्छा, कहाँ सुनवा रहे हो आज?
0: एक बहुत ही मधुर लोकगीत लेकर के आए हैं और इस लोकगीत को सुनने के लिए कार्यक्रम में सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से कुछ साथी भी जुड़े हैं, उनके नाम ले लेते हैं। आप हैं ग्राम बा पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, रिचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव और परिवार के सभी सदस्य। आप हैं कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य और उनके परिवार के सभी सदस्य। आप हैं चर डोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू और परिवार के सभी सदस्य। तो सुनवा दें अपने भैया बहन को एक प्यारो से लोकगीत
2: जी,
0: पद्मा गिडवानी व सखियों के स्वर में।

0: कन्हैया भैया
1: जी,
0: अभी हमारे भैया बहन ने बहुत ही मधुर लोकगीत सुनो, हमें उम्मीद है जरूर पसंद आओ हेगो। और कार्यक्रम के शुरू में एक सवाल पूछो हमने।
1: हाँ भैया, जो हमारे कृषक साथी हैं वो हरी खाद के लिए कौन कौन सी जो फसलें हैं उनकी बुवाई कर सकते हैं?
0: तो मिलान करवा दें।
1: बिल्कुल,
0: कुछ हमारे भैया बहन हैं उन्होंने भी हमको संदेश भेजा है और सवाल को उत्तर लिख करके भेजे हुए, वो हैं प्रवीण कुमार। इन्होंने उत्तर सही हमको भेजा है कि हरी खाद हेतु सनई ढेंचा की खेती कर सकते हैं और साथ में उड़द और लोबिया की खेती भी कर सकते हैं।
1: जी, और अगर वहीं बात करें हेडलपाल भैया अपने कार्यक्रम में आज की नसीहत की, तो बकार आएगी
0: वो यही रहेगी भैया कि खेती के साथ साथ हमारे जो भैया बहन हैं वो कोई दूसरा व्यवसाय जो खेती पर आधारित हो उसे अवश्य करें, जिससे हमें अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती रहे।
1: और भैया पीछे घड़ियों की तरफ तो देख लो क्या कह रही है।
0: घड़ी तो भैया अब टिक टिक करके इशारा करने लगी है कि अनुमति लेने की बेल आ चुकी है।
1: जी, लेकिन बात से पहले अपने सभी किसान साथियों से जब कहना चाहेंगे कि अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ एक नई जानकारी को लेकर के उनके बीच में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अपने भैया कन्हैया
0: और अपने भैया हेडलपाल सिंह को दीजिए अनुमति और कीजिए स्वीकार हम दोनों की।
1: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: और अब सवाल जो उठ जाता कि सोच में और मन में बदलाव कैसे ला मैं भैया।
1: बदलाव ऐसे लागे कि आज के समय में खेती बाड़ी तो हमारे भैया बहन करते ही हैं,
0: जी
1: तो खेती पर आधारित बहुत से ऐसे स्वरोजगार हैं जिनको हम अपना सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन है, पशुपालन है, जाके साथ साथ मछली पालन है और मधुमक्खी पालन है।
0: और वहीं अगर हम बात करें स्वरोजगार की, तो जो हमारे पढ़े लिखे युवा साथी हैं वे अक्सर पढ़ लिख के हताश और निराश हो जाते हैं। मैं सोचा था कि अरे यार पढ़ाई लिखाई हमने करी लेकिन हमारे कोई काम नहीं आई। यहाँ पर उनको थोड़ा मनन और विचार करने हुए, हमने कही ना थोड़ा मनन करने हुए विचार करने हुए कि हम कर का सकते हैं और जाके लय साथ ही साथ में हमारी सरकार के माध्यम से जिस चीज में आप निपुण हैं, जिस चीज के जिस काम की आपकी इच्छा कर रही है बाको पूरी तरीका से वहां में निपुणता हासिल करने के लिए पतो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलो हेडलपाल भैया,
1: कौन सो
0: कौशल विकास प्रशिक्षण।
1: बिल्कुल सही बात है। और जाके साथ साथ हमारे जो भैया बहन हैं वो भैया बर्मी कंपोस्ट भी अपने खेतों पे अपने घर पे बना सकते हैं, और नेडप कंपोस्ट है, इन खादों को बना करके बिक्री भी कर सकते हैं।
0: बात बह आएगी भैया, हमें थोड़ा मनन और विचार ही तो करने हैं और जिस चीज में हमें निपुणता हासिल करने बाकी ले हमारे सरकार सहयोग के लिए तैयार है।
1: बिल्कुल। तो भैया बातें तो अपने कार्यक्रम में और भी होंगी। कार्यक्रम में एक जानकारी है, जानकारी ये है कि कृषि विभाग द्वारा जो कृषि के यंत्र हैं वो अनुदान पर हमारे भैया बहन प्राप्त कर सकते हैं।
0: देखो भैया जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बात है और बामे सहयोग काउ से मिल जाए, हमारे किसान साथी अपने ट्रैक्टर के साथ अपने हाथ से बहुत कोशिश करते हैं कि हम सब चीजें खेती बाड़ी की जुटा लें, लेकिन कहीं ना कहीं धन के अभाव में बिनको भैया मन बनाए करके ही रह जाते हैं।
1: तो वाकई है भैया, हमारी जो सरकार है वो अनुदान पे कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है, इस विषय में जान लेते हैं मनोज कुमार जी से। किसान भाई, प्रतिदिन कार्यक्रम में हम आपको कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आते हैं। आज भी हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं कार्यक्रम में। हमारे जो किसान साथी हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, और आज के समय में जो खेती बाड़ी होती है उन सभी में कृषि यंत्रों का प्रयोग होता है। हमारे जो किसान भाई हैं अपनी खेती की बुवाई से लेकर के कटाई तक विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो आज इसी संबंध में बातचीत करते हैं। हमारे साथ में हैं उत्तर प्रदेश डास्प विभाग के एक कर्मचारी हैं, बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम?
2: मनोज कुमार।
1: मनोज कुमार जी, हमारी और आपकी जो बातचीत हो रही है वो कहाँ हो रही है?
2: ये क्यारा मस्किन में पशुपालन क्लिनिक।
1: क्यारा पशुपालक क्लिनिक में हो रही है। तो ये जानकारी चाहेंगे कि आपके विभाग से हमारे किसान भाइयों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं।
2: हमारे विभाग में सर रूटावेटर यंत्रों की छूट आती है।
1: अच्छा, कौन कौन से कृषि यंत्र हैं?
2: जैसे रूटावेटर है,
1: जी
2: थ्रेसर है
1: जी,
2: और मल्चर है,
1: अच्छा
2: ट्रैक्टर रीपर।
1: रीपर है। रीपर तो भूसा बनाने के काम
2: ना
1: आता
2: ट्रैक्टर
1: है,
2: रीपर वो आता है गेहूँ काटने वाला,
1: जो गेहूं काटने के काम आता है, और रोटावेटर जुताई के काम आता
2: जुताई काम
1: है
2: आता है, सुपर सीडर है गेहूँ बुवाई के
1: जी,
2: लिए।
1: सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है। तो इस तरीके के जो कृषि यंत्र हैं वो आपके यहाँ उपलब्ध होते
2: उपलब्ध
1: हैं,
2: होते हैं।
1: तो किस तरीके से हमारे किसान भाई इनको ले सकते हैं?
2: पंजीकरण कराना पड़ता है,
1: वो पंजीकरण कहाँ कराना होगा?
2: ऑनलाइन कराइए, कहीं भी करा सकते हैं आप।
1: अच्छा, जनसेवा केंद्र पे हो जाएगा।
2: हाँ
1: पंजीकरण करा दिया। पंजीकरण कराने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए?
2: आधार कार्ड, बैंक की किताब,
1: अच्छा
2: खसरा खतौनी।
1: जी, ये चीजें चाहिए। और पंजीकरण कराने के बाद फिर क्या होता है?
2: फिर ये बैठक होती है पीएमजी के लोगों की,
1: अच्छा
2: उसमें
1: कहाँ होती है ये बैठक?
2: ये बरेली होती है।
1: तो क्या उसमें कोई हमारा किसान भाइयों का टोकन निकलता है?
2: हाँ टोकन निकलता है इसमें।
1: अच्छा, पंजीकरण होने के बाद
2: पंजीकरण होने के बाद
1: क्या
2: में
1: प्रक्रिया रहती है?
2: इसके बाद में एक सूची आती है बनके
1: जी,
2: ऊपर से,
1: अच्छा
2: सूची में आप फंसेंगे
1: जी,
2: नाम आपका, तब आपका टोकन जनरेट होगा।
1: अच्छा, फिर हमारा टोकन निकल आएगा,
2: टोकन निकलेगा।
1: फिर हमें पता लग जाएगी कि हमने जिस कृषि यंत्र के लिए अप्लाई किया था, अपना जो पंजीकरण कराया था, वो हमारा मिल जाएगा।
2: मिल जाएगा,
1: तो कितने दिनों में फिर मिल जाता है? वो
2: करीब 30 से 35 दिन लगभग
1: मिल जाता है। तो इसके लिए क्या ये अनुदान पर मिलता है? कितनी धनराशि किस हिसाब से हमारे किसान भाइयों को देनी होती है?
2: अनुदान पे
1: कितने कितने प्रतिशत कृषि यंत्रों पर अनुदान रहता है?
2: इसमें 40% है,
1: अच्छा
2: 35% है
1: अच्छा
2: और 50%।
1: यानी 3 तरीके का अनुदान रहता है। ठीक, तो हमारे जो किसान भाई हैं जिनके लिए आवश्यकता है अपनी खेती बाड़ी के कामकाज करने के लिए, चाहे वो रूटावेटर है, सुपर सीडर है, मल्चर है, इन कृषि यंत्रों की, तो उनको हमारे किसान भाई ले सकते हैं। अच्छा, ये

0: ग्राम जगत कार्यक्रम में एक बार फिर सब भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। और आज कार्यक्रम में मैं हिडलपाल सिंह
1: और मैं कन्हैया।
0: कन्हैया भैया
1: जी,
0: ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो रोजगार के अवसर बहुत हैं।
1: अरे भैया, बहुत की बात करो ना तो थोड़ी बात आ जाती है कि हमें उसमें थोड़ी सजगता और अपनी सोच में बदलाव लानी जरूरत है।
0: बिल्कुल,

0: सब यंत्र जो होते हैं वो ट्रैक्टर चालित होते हैं?
1: हाँ, ट्रैक्टर चालित होते हैं।
0: कुछ ऐसे यंत्र भी आपके यहाँ उपलब्ध होते हैं जो हमारे छोटे किसान भाई हैं जो हस्तचालित होते हैं?
1: है,
0: कौन कौन से हस्तचालित?
1: ये अपना ट्रैक्टर ही पर आता है जो छोटा वाला गन्ना जोतने वाला, वो आते हैं।
0: अच्छा, तो उससे क्या काम होता है?
1: उससे गन्ना जोत लो, थोड़ा बीघा दो बीघा अपना खेत जोत लो उससे अपना।
0: अच्छा, वो हाथ से ही चल जाता है?
1: हाथ से चल जाता है।
0: अच्छा, तो ये तो पेट्रोल आदि से चलते होंगे?
1: पेट्रोल डीजल,
0: डीजल पेट्रोल से चलते हैं। मनोज कुमार जी, एक बात और जानना चाहेंगे, यहाँ पर हमारे जो कृषक साथी हैं, चाहे वो ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र हों या फिर हस्तचालित कृषि यंत्र हों, जनसेवा केंद्र से वो अपना पंजीकरण कराते हैं, तो ये बताइए आपको कैसे पता लगता है कि किसी किसान साथी ने पंजीकरण कराया है?
1: एक साइड हमारी चलती है जो
0: जी,
1: उस पर अपलोड हो जाते हैं ये फॉर्म।
0: अच्छा,
1: इसके बाद वहाँ से एक सूची बन के आती है, यहाँ इसके बाद बैठक होती है
0: जी
1: बरेली में, उसके बाद जो किसान साथियों किए हैं वो लोग जमा करते हैं आके हमारे यहाँ, फॉर्म जो जमा करते हैं वो यहाँ पर जमा होते हैं।
0: मनोज कुमार जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जो कुछ किसान साथी ऐसे हैं जो ऑनलाइन मान लो नहीं करवा पाते हैं, तो क्या ऑफलाइन प्रक्रिया भी रहती है?
1: ऑफलाइन नहीं है।
0: अच्छा,
1: जैसे आपको रूटावेटर लेना है, आप डीलर के पास गए
0: जी,
1: आपने ले लिया, उसको कागज दिया, वो ऑनलाइन करा देता है वो
0: जी,
1: डीलर करा देते हैं कुछ लोग।
0: अब जानना चाहेंगे कि जो प्रक्रिया होती है वो हमारे किसान साथी पूरा कर लेते हैं और उसके बाद उनका टोकन भी मिल जाता है, और आप बता रहे हैं कि 35% 40% 50% अनुदान पर ये कृषि यंत्र उपलब्ध होते हैं, तो जो कृषि यंत्र होता है उसकी पूरी धनराशि हमारे किसान भाइयों को देनी होती है?
1: अच्छा, छूट उनके खाते में आती है?
0: वो छूट खाते में आ जाती है। कितने दिनों में आ जाती है?
1: एक डेढ़ महीने में लगभग आ जाता है।
0: पहले जब कृषि यंत्र को उसने खरीदना है तो पूरा पैसा देना है?
1: हाँ, पूरा देना पहले।
0: अच्छा, तो आपकी ये कंपनियों से डीलरशिप होती होती?
1: ना, डीलर्स नहीं, हम तो सीधे हमारे बिल पास होते हैं बरेली से
0: जी,
1: इसके बाद जाते हैं हेड ऑफिस हमारे बिल।
0: अच्छा,
1: वहाँ से पैसा पड़ता है।
0: अच्छा, तो लगभग एक महीने में उनकी अनुदान राशि उनके खाते में आ जाती है। हमारे जो किसान साथी हैं उन्होंने पंजीकरण कराया, उनको टोकन मिल गया, उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरीके से उनको जो यंत्र हैं वो प्राप्त हो पाते हैं? अनुदान लेने से पहले ही उनको कृषि यंत्र मिल जाता है या अनुदान लेने के बाद?
1: अनुदान लेने के बाद में।
0: किस तरीके की प्रक्रिया रहती है
1: इसमें? अनुदान में इसमें एक टोकन आता है
0: जी,
1: वो किसान सत्यापन करते हैं।
0: अच्छा, ठीक,
1: फोटो साथ में खिंचवा के सत्यापन होता है, इसके बाद बिल हमें चाहिए
0: जी,
1: इसके बाद बिल पे जो नंबर पड़ा हुआ होता है जैसे रूटावेटर थ्रेसर, वो बिल पे नंबर चढ़ता है
0: जी,
1: इसके बाद बिल हम अपने ले लेते हैं विद फार्म के साथ में
0: जी,
1: इसके बाद हम पास करवा के भेज देते हैं हेड ऑफिस।
0: अच्छा, और फिर उनको
1: अनुदान मिलता है?
0: अनुदान मिल जाता है और उसके बाद में वो अपना कृषि यंत्र खरीद लेते हैं। मनोज कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने किसान भाइयों के लिए कृषि यंत्रों के विषय में, अनुदान पर कृषि यंत्रों के विषय में जानकारी देने के लिए। हमारे जो किसान साथी हैं वो जरूर लाभान्वित होंगे हमारी और आपकी बातचीत को सुनकर, वो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें कृषि यंत्र अनुदान पर मिल सकते हैं, किस तरीके से मिल सकते हैं और फिर उसका पूरा पूरा फायदा वो अपनी खेतीबाड़ी में उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका।
1: धन्यवाद।
2: हेडलपाल भैया, देखो मनोज कुमार ने अब बताओ हो कि हमारे जो किसान साथी हैं वो किस तरीका से कृषि यंत्र खरीद करके और वापस छूट यानी अनुदान ले सकते हैं।
0: और कन्हैया भैया
2: जी,
0: अब अपने भैया बहनों को मनोरंजन करवा दें।
2: अरे, मनोरंजन की बात जहां आ जाता ना है तो थोड़ी मन में गुदगुदी होने लगती है।
0: अच्छा,
2: हाँ,
0: तो फिर शुरू करें गुदगुदी।
2: बिल्कुल,
0: ये चिट्ठी पत्री भी आई है लोकगीत सुनने के लिए, शामिल कर ले।
2: किन किन की है भैया, जल्दी पढ़ दे।
0: ये पहली चिट्ठी हमको मिली है ग्राम दूरीनगर जिला बदायूं से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल, संगम, विभू, आदर्श, आदित्य, कुमकुम, निव्या, सरता और अंतिमा। आप हैं सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़। और ये हमें संदेश मिलो है चर डोंगरी पिपरिया जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, कुमारी साहू, इंद्राणी माया और परिवार के सभी सदस्य। और आप हैं धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौसाल सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू।
2: तो इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुन लेते जो लोकगीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: और कन्हैया भैया, अब समय आया है अपने भैया बहनों से और अधिक बातें करी जाए या फिर जानकारी शामिल करी जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने भैया हेडलपाल सिंह
7: और कन्हैया को दीजिए अनुमति। श्रोताओ
6: राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया। आइए अब आपको बता दें कुछ खोए हुए व्यक्तियों के बारे में। आप हैं कुमारी फिजा, पुत्री नाजिम, निवासी भटौली, थाना दातागंज, जनपद बदायूं। फिजा की उम्र 17 वर्ष है, लंबाई 5 फीट है, हिंदी बोलना जानती हैं। फिजा का रंग गोरा और नाक का औसत है, काले बाल हैं। फिजा ने पीला सूट, पैरों में हवाई चप्पल पहनी है। फिजा के बारे में अगर कोई भी जानकारी आपको मिले तो आप प्रभारी निरीक्षक थाना दादा जी बताइयों को संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, प्रभारी निरीक्षक थाना दादागंज जिला बदायूं को संपर्क कर सकते हैं। आप हैं कुमारी प्रियांशी, पुत्री रामकिशोर, निवासी नरखेड़ा, थाना विनावर, बदायूं। प्रियांशी की उम्र लगभग 13 वर्ष है, लंबाई 4 फीट है,

हिंदी बोलना जानती है प्रियांशी। प्रियांशी का रंग गेहुआ, चेहरा गोल, आंख नाक का औसत है, काले बाल हैं, एक गहरा जिस्म और प्रियांशी ने टॉप व नीली जीन्स पहनी है। प्रियांशी के बारे में अगर कोई भी जानकारी आपके पास हो तो आप इनके पिताजी के मोबाइल नंबर 7668222817 पर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, मोबाइल नंबर आप दोबारा लिख लें। इनके पिता का मोबाइल नंबर है राम किशोर जी का 7668222817, या फिर थाना बिनावर जिला बदायूं को संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बेली पार्क क्षेत्र स्थित ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

0: हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
1: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में बीसीसीआई की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
1: आज का दिन हम सब के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी, देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
0: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए सीएसआर फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया है। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसमें इंडोर खेलों की सुविधाएं मिलेंगी। ये स्टेडियम कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बाद प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होगा। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर कल प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपए है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऊर्जा बचत की अपील के मद्देनजर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये पहल न केवल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का परिचायक होगी बल्कि आर्थिक अनुशासन और ऊर्जा बचत के दृष्टिगत समाज में सकारात्मक संदेश भी देगी।

0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सपा नेता मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में आज रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और 20,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
1: बहुत पुराना कॉलेज है आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ। तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, और इसपे मेरा प्रयास रहेगा।
0: चित्रकूट नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि चित्रकूट में 90 करोड़ रूपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे।
2: उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए आज चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए इस 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
0: वट सावित्री का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी में सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग और पति के दीर्घ स्वस्थ जीवन के लिए वट सावित्री निर्जला व्रत रखा है। व्रती महिलाओं ने विधि विधान से सावित्री माता की पूजा के बाद बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर अटल सौभाग्य की कामना की। प्रयागराज में व्रती महिलाओं ने आज सुबह संगम में पवित्र स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ की पूजा कर अपने सुहाग की सलामती और लंबी उम्र की प्रार्थना की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मॉनसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मॉनसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। सिंचाई और जल संसाधन की ओर से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ये कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। इनके जरिए जल स्तर की रियल टाइम निगरानी और आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ सुरक्षा समितियां तैयार की जा रही हैं। इनमें संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर, ग्राम प्रधान और लेखपाल सहित स्थानीय लोगों को जोड़ा जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। इस कार्यक्रम में आज विषय है समय से पूर्व जन्म बच्चे अथवा प्री टर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप अंगवार, तो सुनते हैं ये।
2: इस कार्य

0: कार्यक्रम के प्रायोजक
1: गंगवार हॉस्पिटल निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
2: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
1: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
2: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
1: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर HFNC और ईयर वो मशीनें,
3: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए
4: बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
1: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
2: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM बेड साइड इको अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
1: साथ ही बच्चों में पीलिया सेप्टिक इन्फेक्शन निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD
1: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
2: गंगवार हॉस्पिटल
1: निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
3: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
5: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मुकेश कुमार पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, आज रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: सभी श्रोताओं को पांडे जी आपको मेरा नमस्कार।
5: जी डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता हमेशा उत्सुक रहते हैं कि कब डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए और कब उन्हें कोई नई जानकारी मिले। हालांकि विषय हमारा पुराना ही है आज भी, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि हमारे श्रोता कुछ नया जान पाएंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से। डॉक्टर साहब, आज का विषय हमने एक बार पुनः रखा है, समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता। क्योंकि समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की बात है, तो ये भी जान लेना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब कि समय से पूर्व पैदा हुए बच्चे किन्हें कहा जाए।
6: जी देखिए, जो नॉर्मल गर्भा पीरियड है,
5: जी गर्भकाल,
6: गर्भकाल है 37 वीक से,
5: यानी 37 सप्ताह से 42 सप्ताह का जो समय है,
6: जी वो नॉर्मल एक गर्भकाल का इंसान का है
5: जी।
6: तो लेकिन जो 37 सप्ताह से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं,
5: अच्छा,
6: वो प्रीमेच्योर बच्चे कहलाते हैं
5: जी, जी।
6: तो प्रीमेच्योर में भी अलग अलग कैटेगरी है
5: जी,
6: जैसे कि लेट प्रीटर्म जो 37 से 32 सप्ताह के बीच में,
5: अच्छा,
6: जो 32 सप्ताह से और पहले पैदा हो जाते हैं वो प्रीटर्म,
5: अच्छा,
6: और जो मान लीजिए 28 वीक्स या उससे पहले पैदा हो जाते हैं वो वेरी प्रीमेच्योर।
5: तो क्या डॉक्टर साहब ये संभव है 28 सप्ताह से पहले जो बच्चा पैदा हो रहा है वो स्वस्थ जीवन जी पाएगा?
6: देखिए, इन बच्चों को जो परेशानी है वो इस वजह से है कि ये समय से पूर्व पैदा हुए
5: जी।
6: समय से पूर्व पैदा होने में क्या होता है, हमारे शरीर के जो अंग है
5: जी
6: वो उतने विकसित नहीं हो पाते जितने विकसित हो जाने चाहिए।
5: अच्छा अच्छा।
6: तो इसलिए हर अंग शरीर का अपने आप में एक कठिनाई पैदा करता है
5: जी, जी।
6: जो बच्चा समय से पूर्व पैदा है, जो सर्वाइवल संभव है आज की तारीख में
5: जी, जी, अच्छा।
6: और वो बच्चे हमारे यहाँ बच जाते हैं 25 वीक्स एंड 26 वीक्स के
5: जी, जी।
6: तो उससे कम जो और पहले के पैदा हुए बच्चे हैं उनमें अभी परेशानी आती है, लेकिन कुछ जगह रिपोर्टेड है कि 24 वीक्स ऑनवर्ड्स बच्चे बच जाते।
5: अच्छा डॉक्टर साहब, जो गर्भकाल 9 महीने का कहा जाता है, 9 महीने 9 दिन 10 दिन इस तरह से, उसकी जगह आप बता रहे हैं कि 6 महीने यानी जो 26-24
6: 9 महीने 7 दिन गर्भकाल नॉर्मल माना जाए,
5: नॉर्मल माना जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आप गर्भकाल बता रही है तो 6 महीने 6.5 महीने
6: का ही बच्चा? जी जी जी, 6.5 महीने के जो बच्चे, 6 महीने के बच्चे जैसे 24-25 वीक्स के जो बच्चे पैदा होते हैं
5: जी,
6: तो उनमें एक तो सबसे अधिक जो कॉमन समस्या आती है कि लंग्स उतने मेच्योर नहीं होते,
5: अच्छा, फेफड़े उतने मजबूत,
6: हाँ मजबूत नहीं होते कि वो ऑक्सीजनेशन कर, जब तक बच्चा या प्रीटर्म बेबी माँ के गर्भ में है
5: जी,
6: तो उसको ऑक्सीजन हुआ, बाकी सारी न्यूट्रिशनल सप्लाई हुई या जो कुछ भी उसको चाहिए वो सब माँ से मिलता है थ्रू ब्लड। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उसके लंग्स काम करना शुरू करते हैं और वो उसको ऑक्सीजन अपने आप उतनी बनानी पड़ती शरीर में कि जो उसका काम चल सके
5: जी, जी।
6: जब लंग्स इमेच्योर होते हैं, खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों के, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज या नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम,
5: अच्छा,
6: तो न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है तो उसकी सांस तेज चलना शुरू करती है, क्योंकि बच्चा कंपनसेट करने की कोशिश करता है उस प्रीमेच्योरिटी को या लंग की उस इनसफिशिएंसी को जल्दी जल्दी सांस लेके,
5: यानी जो फेफड़े के सिकुड़ने और फैलने की क्षमता है वो नेचुरली
6: नहीं, क्षमता तो कम है ही
5: जी,
6: जिसको हम बोलते हैं कंप्लायंस कम है। दूसरा, उस चीज को बच्चा पूरा करने की कोशिश करता है उसे जल्दी जल्दी टैकिपनिया करके,
5: अच्छा,
6: मतलब सांस की गति बढ़ा के
5: ऑक्सीजन की जो जरूरत
6: रिक्वायरमेंट पूरा करने की कोशिश करता है
5: जी।
6: लेकिन अगर सर्फेक्टेंट कम है, जिसको कि बोलते हैं न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी NRDS या HMD हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, अगर प्रीमेच्योर बच्चे में

0: वो है, तो आपको सर्फेक्टेंट एक दवाई होती है या एक पदार्थ या मटेरियल है जो कि आपको उसके फेफड़ों में डालना होता है, जिससे कि वो जो उसकी कमी है उस सब्सटेंस की, उसको बाहर से पूरा किया जा सके।
1: डॉक्टर साहब, क्या कुदरती तौर पर ये फेफड़े में मौजूद होता है
0: ये
1: सल्फेक्टेंट?
0: सर्फेक्टेंट कुदरती तौर मौजूद होता है, लेकिन
1: अच्छा,
0: जब बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं तो
1: उनमें ये कम
0: उनका
1: होता है?
0: उनमें कम होता है।
1: अच्छा
0: ये 28 वीक ऑनवर्ड्स बनना शुरू होता है अच्छे से,
1: अच्छा
0: और जो बच्चे 30 वीक्स या 32 वीक्स के ऊपर निकल जाते हैं उनमें इतना जरूरत नहीं रहती।
1: जी,
0: लेकिन जो बच्चे 32 वीक्स हैं उनमें हमेशा एक डर रहता है, मतलब ये पता लग चुका है कि अगर इन मदर्स को जिनके बच्चे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समय से पूर्व पैदा होंगे, उनको एंटीनेटल स्टेरॉइड यानी बिटामेथासोन या डेक्सामेथासोन दिया जाए
1: अच्छा
0: प्रॉपर डोजेज में,
1: जी,
0: तो लंग्स की मेच्योरिटी बढ़ जाती है।
1: ये जो आप बता रहे हैं दवाइयां, बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन, तो ये माँ को दी जाती हैं
0: ये
1: या?
0: माँ को इंजेक्शन द्वारा दी जाती है।
1: अच्छा,
0: अगर जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको ये अंदेशा होता है कि बच्चा समय से पूर्व पैदा हो सकता है, तो डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन इंजेक्शन 2 दिन का कोर्स है उसको करके, तो उसमें लंग्स की मेच्योरिटी बढ़ जाती है और इस बात के चांस कम हो जाते हैं कि बच्चे को एनआरडीएस यानी हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो या सर्फेक्टेंट की कमी पड़े।
1: यानी जो स्त्री
0: इस
1: रोग विशेषज्ञ हैं वो ये फैसला लेती हैं?
0: वो फैसला लेती है
1: अच्छा
0: कि अगर उनको ये रहता है कि इसमें जल्दी डिलीवरी हो सकती है तो वो
1: जी
0: माँ को ये लगाते हैं।
1: अच्छा
0: और इसके लगाने के ये तो फायदा है ही लंग्स की मेच्योरिटी, और भी फायदे हैं जैसे कि गट की मेच्योरिटी बढ़ती है और ब्रेन की भी मेच्योरिटी बढ़ती है। और ब्रेन पूरी तरह से मेच्योर नहीं होगा तो हमेशा एक डर रहेगा कि ब्रेन को इंसल्ट ना हो जाए। दूसरी चीज ब्रेन में हेमरेज होने का, जिसको बोलते हैं IVH इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज,
1: जी
0: वो होने का डर बहुत ज्यादा रहता है।
1: जी जी
0: जी
1: जी डॉक्टर साहब, जो आप दवाइयां बता रहे हैं स्टेरॉइड कहा जाता है, और
0: जी
1: स्टेरॉइड ये कहा जाता है कि बहुत नुकसानदायक होते
0: नहीं
1: हैं?
0: नहीं ये तो कोर्स ही ना, पर्टिकुलर डोजेस दी जाती है
1: अच्छा
0: वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए।
1: अच्छा
0: तो ऐसे जैसे स्टेरॉइड नुकसान करते हैं ब्लड प्रेशर में, शुगर में,
1: जी
0: लेकिन ये स्टेरॉइड बच्चे को आपको हेल्प करने जा रहे हैं। और अगर माँ को शुगर है या माँ को ब्लड प्रेशर है तब भी ये स्टेरॉइड दिया जा सकता है और देना चाहिए,
1: अच्छा
0: जिससे कि बच्चे को फायदा दे सके।
1: यानी अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ ये तय करती है कि जो गर्भवती माता है उसे स्टेराइड के रूप में बीटामेथासोन डेक्सामेथासोन दिया जाना है, तो ये उचित है,
0: जी
1: ये बच्चे के हित में है?
0: अभी एक दवाई जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट,
1: जी जी
0: वो भी एक्लेम्सिया के मदर्स को पहले देते थे। अब
1: जी
0: जहां पे हमें सस्पेक्ट, हमें डाउट, अंदेशा रहता है कि बच्चे को ब्रेन इंसल्ट हो सकती है, बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है या बच्चे को बर्थ एनोक्सिया हो सकता है, ये डर है कि बच्चा पैदा होने के बाद सांस लेने में कोई दिक्कत करे, तो उन मदर्स को
1: जी
0: मैग्नीशियम सल्फेट भी दिया जाता है, जिससे कि बच्चे में जब पैदाइश होती है तो उनके दिमाग को नुकसान कम होता है।
1: अच्छा, ये बर्थ एस्फिक्सिया और ये जो नाम आप ले रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर हमारे श्रोता जानना चाहें इसका मतलब क्या होता है?
0: देखिए, बर्थ एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया का मतलब दम घुटना,
1: अच्छा
0: है ना। तो बच्चा पैदा होते समय किसी कारण से अगर ठीक से सांस नहीं ले पाया, जैसे कि पैदाइश में ज्यादा टाइम लग गया
1: जी,
0: या गर्भ में वो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, पानी कम हो गया
1: जी,
0: या बच्चे ने कई बार पॉटी पेट में कर ली
1: जी,
0: लैट्रिन पेट में कर ली तो वो सांस में ले ली, या बच्चे को ब्लड सप्लाई कम हो गई, फीटल डिस्ट्रेस होने लगा
1: जी। डॉक्टर साहब, ये वाकई में बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर हमारे श्रोता इस बात को ध्यान से सुन रहे होंगे तो कई ऐसी बातें हैं जो कि शिशु पैदा हुआ है उसे देख करके वो समझ सकते हैं इसकी आवश्यकता क्या है। और जहां तक इलाज की बात है, एक योग्य चिकित्सक ही इन परिस्थितियों में बच्चे की जान बचा सकता है। जहां तक डॉक्टर साहब चिकित्सा की या इलाज की बात है, तो माँ के पेट में जो बच्चे को माहौल मिलता है, जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, ऐसी परिस्थितियां अगर इन बच्चों को नहीं मिलेंगी जो कि 24-25 सप्ताह में पैदा हो रहे हैं, तो क्या ये बाकी इनका जो विकास होना है, शारीरिक विकास होना है, अंगों का विकास होना है, वो संभव हो पाएगा? और अगर हो पाएगा तो किस तरह की मशीनों की आवश्यकता होती है, उनकी क्या भूमिका होती है?
0: जी, अब पंडित जी आपका ये बहुत अच्छा सवाल है।
1: देखिए,
0: कुदरत की बराबर इंसान तो नहीं कर सकते
1: जी।
0: जो माँ से देखभाल मिलती है एक नवजात शिशु या प्रीमेच्योर बच्चे को, वो मशीनों के द्वारा इंसान की कोशिश तो होती है, डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि हम वैसा माहौल वो चीज दें
1: जी,
0: लेकिन नियर नॉर्मल पहुंच जाते हैं, एब्सोल्यूट तो उतना नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल।
0: तो प्रीमेच्योर बच्चों को रखने के लिए जो हमें मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जो इंक्यूबेटर्स हैं, जो ऐसी मशीन है जिनमें कि हम लोग केयर करते हैं ह्यूमिडिफाई जो आद्रता है उसको कंट्रोल करते हैं और टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं,
1: यानी जो नमी
0: ह्यूमिडिटी, हाँ, नमी को और टेम्परेचर तापमान को।

0: दोनों को कंट्रोल करते हैं। और इंक्यूबेटर के बाद एक और दो मशीन है जिनमें डुअल सिस्टम होता है, जो एक पर्टिकुलर कंपनी की जिसको ओमनीवेट बोलते हैं या जिराफ बोलते हैं, उसमें आप एज ए ओपन सिस्टम भी काम कर सकते हो, मतलब उसे खोल के भी और दूसरा उसको एज ए इंक्यूबेटर भी यूज कर लेते हैं।
1: जी आपने बताया डॉक्टर साहब कि जिराफ ओमनीवेट, ये शब्द सुना सुनाया सा हो गया हमारे श्रोताओं के लिए। जिराफ के विषय में ये कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को अपने पेट में ही रख लेता है वापस, जो एक खाल सी होती है लटकती रहती है, शायद वही आशय होगा इस मशीन से भी।
0: जी जी बिल्कुल ठीक कहा है। और उसी तरह से जैसे कि जिराफ के अंदर एक पॉकेट होती है और उसमें बच्चे को वो अपने, उसका जिराफ का बच्चा भी बहुत छोटा बच्चा होता है, बहुत प्रीमेच्योर बच्चा होता है, और उस थैली में बच्चा वो रहता है सुरक्षित, माँ उसको दूध पीता रहता है, उसका तापमान कंट्रोल रहता है और माँ उसका ध्यान रख पाती है।
1: जी जी
0: तो उसी को शायद ध्यान रखते हुए इस मशीन का इन्होंने नामकरण किया।
1: जी डॉक्टर साहब, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रयास आप बता रहे हैं कि किया जाता है, जैसा माँ के पेट में गर्भ में बच्चे को जो माहौल और जो वातावरण मिलता है वही वातावरण बच्चे को बाहर मिल पाए, ये प्रयास किया जाता है और प्रयास में सफलता भी मिलती है। एक श्रोता इसी बीच लाइन पर आ गए, डॉक्टर साहब इनकी बात सुन लेते हैं।
0: हेलो
1: जी, रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं। जी जी, आकाशवाणी बरेली से आपकी बात हो रही है, डॉक्टर कुलदीप गंगवार हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। जी जी जी मुन्नालाल जी, आपकी कॉल का इंतजार रहता है हमें भी और हमारे श्रोताओं को भी हमारे इस कार्यक्रम में।
0: बड़ा रेगुलर श्रोता है ये आपके?
1: जी
0: नियमित श्रोता।
1: जी जी, आज क्या प्रश्न है आपका?
2: हमारा सवाल ये था, जो प्रीमैच्योर जो बच्चा है वो किसे कहेंगे प्रीमैच्योर बच्चा है, पहली बात तो।
1: जी जी
0: जी, चलिए एक सवाल। दूसरा
2: दूसरा सवाल ये सर, प्रीमैच्योर बच्चों की देखभाल के लिए किन किन मशीनों की आवश्यकता पड़ती है?
0: अच्छा, इसके अलावा और कोई सवाल आपका?
2: सर एक और जानकारी लेना चाह रहे हैं, प्रीमैच्योर बच्चों में नाइट्रिक ऑक्साइड मशीन की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है?
0: चलिए चलिए, देखिए आपके तीन सवाल आपने पूछे। तो प्रीमेच्योर बच्चा कब कहते हैं? जब बच्चे का जो जन्म है वो अगर गेस्टेशनल टाइम है या गर्भा पीरियड है वो 37 वीक से यानी 37 वीक से कम का है तो उस बच्चे को प्रीमेच्योर यानी समय से पूर्व पैदा हुआ बच्चा कहते हैं। दूसरा सवाल था इनका पांडे जी कि क्या क्या समस्याएं आती हैं,
1: मशीन कौन
0: जो, हाँ मशीनें कौन सी आती हैं? वो तो है ही, समस्याएं इन बच्चों को इसलिए आती हैं कि इनके जितने अंग हैं वो उतने विकसित नहीं हो पाते जितने समय के साथ हो जाने चाहिए। अब जब ये विकसित नहीं हो पाते तो हर अंग अपनी दिक्कत देता है, जैसे कि फेफड़ों में दिक्कत आती है सांस लेने में, जिसको कि HMD बोलते हैं, ब्रेन के अंदर दिक्कत आती है, कई बार हेमरेज होने का डर रहता है, ऐसे आंतों में दिक्कत आती है दूध पचाने में, खासतौर से अगर माँ का दूध ना दिया जाए, इन बच्चों को ऊपर का दूध दिया जाए तो NEC यानी नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस होने का डर रहता है। फिर इनको मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और मॉनिटर्स चाहिए होते हैं। इसके बाद इनको अक्सर बच्चों को जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस के लिए फोटोथेरेपी वगैरह जरूरत होती है। फिर बच्चों को इनको आपका अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो फिर वेंटिलेटर्स की जरूरत, वेंटिलेटर्स भी न्यूनेटल डेडिकेटेड वेंटिलेटर, मतलब जो सिर्फ नवजात शिशु में ही इस्तेमाल होते हैं, खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों में ही इस्तेमाल होते हैं, वही वेंटिलेटर्स इन बच्चों को प्रयोग में लाने चाहिए, जैसे कि बेबी लॉक वेंटिलेटर्स है, VN500 है, जिनमें कि 1 ML टाइडल वॉल्यूम आप नापते हो, क्योंकि जो बच्चा 600 ग्राम का पैदा हुआ है उसको टाइडल वॉल्यूम चाहिए आपको 2.5 ML 3 ML का, क्योंकि जो 6 ML पर KG के हिसाब से टाइडल, तो 2.5-3 ML एक्यूरेट एयर को नापना एक मशीन के लिए भी चैलेंज होता है। तो जो मशीन न्यू डेट्स में ही इस्तेमाल होती है वो मशीन की आवश्यकता होती है। फिर इन बच्चों को टेम्परेचर कंट्रोल करने स्पेशल वेंटिलेटर्स जो कि डेडिकेटेड है आपके न्यूनेटल केयर के लिए। और जहां तक आपने सवाल किया है, इनको सर्फेक्टेंट की जरूरत पड़ती है, कई बार आपका इकोकार्डियोग्राफी वो मशीन होना चाहिए बेड साइड, जिसमें कि इन बच्चों को अक्सर समस्या होती है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस की यानी PDA की, तो PDA हुआ, NEC हुआ, फिर अब बाद में इनको जरूरत पड़ती है आंखों के चेकअप के लिए या हियरिंग की जरूरत पड़ती है, हियरिंग इनकी स्क्रीनिंग होना चाहिए जिससे ये पता लगे कि इनकी हियरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको ROP होने का डर रहता है, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी, इनको खून की कमी होने का डर रहता है, इसको बोलते हैं एनीमिया और प्रीमेच्योरिटी। तो ये इस तरह तरह तरह की समस्याएं आती है इनको कि डिफरेंट मशीन, जहां आपने सवाल किया INO का, INO प्रीमेच्योर बच्चों में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये INO जो इस्तेमाल होती है नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी वो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक कंडीशन होती है उसके लिए इस्तेमाल होती है। जो कि

0: खासतौर से उन बच्चों में जो जिनकी पैदाइश मुश्किल से हो, जिसको हम बोलते हैं बर्थ एनोक्सिया, बर्थ एस्फिक्सिया, उन बच्चों में जरूरत पड़ती है, या उन बच्चों में जो कि फेफड़ों में गंदा पानी ले लें, जिसको बोलते हैं मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। अगर तो बर्थ एस्फिक्सिया और मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के बच्चों में ये मशीन की जरूरत पड़ती है। तो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन का जो नवजात शिशु वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि फ्लक्चुएटिंग होता है उसका ऑक्सीजन लेवल, आप उसे टच करो या उसका सैंपल लो तो उसकी ऑक्सीजन गिरने लगती है, और उसको कई बार ऑक्सीजन उसका SpO2 लेवल मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो लंग्स को ब्लड जा रहा है वो बहुत कम जाता है, लंग्स की तरफ इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से लंग्स को ब्लड कम पहुंचता है तो शरीर को ऑक्सीजन कम मिल पाती। तो ये सिलेक्टिव पल्मोनरी वैसो डायलेटर है, मतलब ये लंग्स के जो ब्लड जा रहा है उन ब्लड वैसो उन धमनियों को और नसों को चौड़ा कर देता है, जिससे कि लंग्स को ब्लड ज्यादा जाता है और बच्चे को ऑक्सीजन बढ़ाने में आसानी होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी जो अक्सर प्रीमेच्योर बच्चों में कभी जरूरत पड़ती है, वरना ज्यादातर टर्म बेबी में और उन बच्चों में जो पैदा होने के समय जिनको मुश्किल आती है, या उन बच्चों में जो पैदा होने से पूर्व या पैदा होते समय फेफड़ों में गंदा पानी ले लेते हैं।
1: जी, और कोई प्रश्न है मुन्नालाल जी?
2: एक प्रश्न और है सर, जो अखबार में निकलता है ना बगैर खून लिए फ्लोरमिन का, तो वो सर कौन सी मशीन है जो बगैर खून लिए ही सीरम फ्लोरमिन हो जाता
0: है? वो उसके लिए एक मशीन आती है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्यूटेनियस बिलोनोमीटर। तो आपका स्किन से या फिर ईयर लोब्यूल से आप उसको अगर रीडिंग वहां से नाप सकते हैं, उससे आपको एक पीलिया कितना ये आइडिया लगता है, लेकिन उस मशीन से ये पता नहीं लगता है कि इसमें डायरेक्ट कितना है इनडायरेक्ट कितना है। अच्छा, और तो प्रीमेच्योर बच्चों की जो समस्याएं ये होती है, और एक बहुत बड़ी समस्या प्रीमेच्योर बच्चों में होती है इन्फेक्शन होने की, खासतौर से सेप्सिस होने का डर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से तरह तरह के इन्फेक्शन बड़ी जल्दी होते हैं, और कई बार इन बच्चों को फंगल इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है।
1: जी
0: ठीक है,
1: जानना है,
2: बहुत बहुत जानकारी देने के लिए डॉक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे प्रश्न हमेशा पूछते हैं जो एक साधारण व्यक्ति के शायद समझ से परे हों, लेकिन आप उनके उत्तर जान लेते हैं, प्रश्न भी बता देते हैं। डॉक्टर साहब, इसी बीच एक और श्रोता लाइन पर है, इनकी समस्या सुन लेते हैं।
0: जी,
1: रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए अपना प्रश्न बताएं।
0: हेलो,
3: हम राजपुर कला से बोल रहे हैं साहब।
1: बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: जी, आज हम जानना चाह रहे हैं, जैसे हमने रेडियो पर सुनी ही कि रेडियो हेल्पलाइन में समय से पहले पैदा भाई बच्चन के बारे में बताई जाएगी।
1: जी,
3: तो हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे बच्चा 8 या 7 महीना को जन्म हो जाए,
1: जी,
3: तो बाकी मतलब सही तरीका से घर पर ही जन्म हो है, और वो मतलब सही सांस वास सही ले रहे हो, लेकिन अच्छी तरीका से जैसे तंदुरुस्ती ना बच्चा एकदम बढ़वार पर सही हो रहा है बना है खा रही है, तो जाके अब हमें क्या करने हो, जो डॉक्टर साहब से थोड़ी सलाह लेना चाह रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब लाइन पर है, अगली आवाज डॉक्टर साहब की।
0: जी, ऐसे है जो आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा समय से पूर्व पैदा हो गया है, तो इसका वजन कितना कितना समय से पूर्व पैदा हुआ?
3: लगभग 8 महीना को जन्म है होगा।
0: और वजन कितना है इसका?
3: वजन तो ऐसी हो जा मेरी ना चाहे 120 के करीब।
0: देखो, जो बच्चे 1 किलो 600 ग्राम से कम वजन के होते हैं वो अपने आप दूध पीने में सक्षम नहीं होते हैं, तो इन बच्चों को दूध आपको पिलाना पड़ेगा या तो चम्मच कटोरी से, या फिर हम लोग कहते हैं NG फीडिंग यानी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से। तो तीसरा तरीका है कि इनको पलैदी से दूध पिला सकते हैं, तो माँ का दूध ही इनको पिलाना चाहिए, अगर ऊपर का दूध पिलाएंगे तो आप संकट में फंस जाएंगे। तो माँ का दूध अगर 1 किलो 1.25 किलो का बच्चा है, तो इसको आप करीब कितने दिन का हो गया?
3: लगभग 22 दिन को।
0: 22 दिन का हो गया, तो इसको करीब 1 किलो पे 160-180 ml दूध आपको पिलाना है 24 घंटे में, तो आपको करीब 20-22 ml 23 ml दूध पिलाना है और डेली दूध बढ़ाना है। तो ये बच्चा अपने आप तो दूध पी नहीं पाएगा माँ से डायरेक्ट, तो आपको या तो दूध माँ का निकलवा के चम्मच कटोरी से पिलाना होगा या पलादी से, या आप किसी हॉस्पिटल में तो आपको NG डलवा के NG फीडिंग करा सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि आप NG इसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पड़वा लीजिए और घर पे फीड करिए, बाकी इसके तापमान का ध्यान रखिए, इसको इन्फेक्शन ना होने पाए उसका ध्यान रखिए, और अगर 20-25 काल ले गया बच्चा तो बच्चा स्वस्थ हो जाना चाहिए।
3: जी डॉक्टर साहब, आप तब तो ठीक है, लेकिन जो गाँव में निप्पल ना आते वो प्लास्टिक वाली
0: ना, उससे दूध नहीं पिलाएंगे, निप्पल वाले आप

0: दिक्कत में आ जाएंगे अगर उससे दूध
1: अच्छा
0: पिलाएंगे तो।
1: शुरू शुरू में साहब रूई से मतलब जो है घर में गांव में पिलाए दो, अब वो निप्पल से देना शुरू कर दो है, तो अब पी तो निकलो लेकिन समस्या क्या है कि वो उतनी तरीका से जैसे ना बच्चा एकदम हिच को सोच चलवाता तंदुरुस्त उस तरीका की वहां
0: देखिए,
1: कुछ
0: निप्पल से दूध
1: दिखाई नहीं दे रही है।
0: पिलाएंगे तो दिक्कत ये आएगी, बच्चा निप्पल से दूध पीने में ताकत का इस्तेमाल करता है और जो अपनी ताकत वो दूध पीने में लगा देगा तो वो ताकत उसको वजन बढ़ाने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप नली से दूध पिलाएंगे या चम्मच कटोरी से दूध पिलाएंगे तो उसकी वो ताकत बचेगी और वो ताकत भी उसको वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो आप अगर निप्पल से दूध पिलाएंगे तो कई खतरे हैं, एक तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा डर है, दूसरा उसको वजन बढ़ाने में दिक्कत आएगी। अच्छा
1: तो साहब आप की सलाह के अनुसार चलो दूध की बात जो होगी लेकिन बाघो सही तरीका से तंदुरुस्ती मिले जागे ले हमने कहा सुनने पड़े हो।
0: देखिए, दो तीन चीजें हैं, अगर बच्चे का वजन 1 किलो आप कुछ बता रहे हैं तो एक तो उसको एक बार डॉक्टर दिखा के, एक उसको विटामिन डी, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और आयरन, ये दवाइयां चलनी चाहिए। अच्छा, पर्याप्त मात्रा में दूध पिलाना चाहिए। तीसरा, उसके बच्चे का तापमान हमेशा, आप अगर बच्चे को छुएं तो बच्चा आपको गर्म लगना चाहिए, अगर बच्चे के हाथ पैर आपको छूने पे ठंडे लग रहे हैं तो बच्चे को मतलब तापमान कम हो रहा है, और बच्चे की अगर बॉडी भी ठंडी लग रही है, आपको शरीर भी ठंडा लग रहा है, तो इसका मतलब तो तापमान बहुत कम हो गया। तो इसके लिए एक तरीका ये भी करते हैं जिसको हम लोग कंगारू मदर केयर बोलते हैं, केएमसी केयर। तो माँ या घर में कोई और है सदस्य है जो बच्चे को हमेशा अपनी छाती से बिना कपड़े के लगा के रखे, जैसे माँ गाउन पहन सकती है और अपने दोनों छातियों के बीच में बच्चे को लगा के रखे लगातार जितना ज्यादा से ज्यादा समय हो, तो माँ के तापमान से बच्चे का तापमान नियंत्रित रहता है। तो और दूसरा, उसका एक दूसरा फायदा है कि माँ दूध पिलाने में भी उसको दूध कम नहीं होगा कभी। तीसरा, आने वाले समय में माँ उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में आसानी रहेगी।
1: अरे सब जो आप जानना चाह रहे जैसे अभी तो माँ के दूध केले और बाकी जो हलवा वगैरह आते हैं और जे मतलब भैंस को या बकरी को दूध है जो आगे चले कितने समय बाद हम बात चलाना शुरू करें?
0: 6-7 महीने तक, 6 महीने तक आप कुछ नहीं देंगे, सिर्फ माँ का दूध, शहद, गुट्टी, पानी, ऊपर का दूध, बकरी का दूध, शहद या गाय भैंस का दूध, ये कुछ भी नहीं देंगे 6 महीने तक आप।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ भाई, जो पड़ोस में है जैसा कह रहे कि बकरी को दूध दे, लेकर कोई बात ना है तो साहब अगर देंगे तो नुकसान दे तो
0: नहीं, बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए नहीं है।
2: जी
1: बिल्कुल सही बात है साहब,
2: धन्यवाद कॉल करने के लिए आपका, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, 6 महीने तक माँ के दूध की सिफारिश की जाती है, लेकिन एक बात और भी है डॉक्टर साहब, जब अस्पताल में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य है, और
0: अमृत तुल्य है, अमृत है
2: जी, वो अमृत ही पिलाना चाहिए।
0: और हर माँ का दूध बच्चे के हिसाब से होता है, जिस माँ का बच्चा 26 वीक का है उसका दूध उसके बच्चे के हिसाब से।
2: अच्छा, ये बात।
0: और अगर जिसका बच्चा टर्म बेबी है, जिसका फुल टर्म बेबी है, उस माँ का दूध अलग होता है।
2: अच्छा।
0: तो ये टेलर मेड होता है, जो नवजात शिशु है उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी माँ को दूध होता है, और उतना ही होता है जितना जरूरत होती है। तो आप ऊपर का जब दूध पिलाने की कोशिश करते तो माँ का दूध कम हो जाता है, एक चीज। और इसलिए एक माँ दूसरी माँ को दूध, अगर प्रीमेच्योर बच्चा है तो उसको उसी माँ का दूध चाहिए जो उसकी रियल में माँ है।
2: अच्छा,
0: या उसी उतने हफ्ते की डिलीवरी हुई है,
2: यानी जिसके गर्भ से बच्चा उत्पन्न हुआ है उसी माँ का दूध उसके।
0: हाँ, वो टेलर मेड है, जैसे आप दर्जी के पास जाते हो तो आपके हिसाब से पैंट शर्ट बनाता है, रेडीमेड नहीं है ये, है ना
2: डॉक्टर साहब। ये और बताइएगा, कई बार महिलाएं कहती है जो प्रसव के उपरांत दूध नहीं आता माँ को, तो ये बात वाकई में सत्य है? विज्ञान क्या कहता है इस विषय में?
0: देखिए, ये सिर्फ इंसानों की सोच है कि और कोई प्राणी तो ये सोचता ही नहीं है
2: जी।
0: कि दूध कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सब माँ के दूध पे पूरी कुदरत चल रही है, कोई ऊपर प्रकृति ने कोई कहीं छेड़छाड़ नहीं करता। इंसान थोड़ा समझदार हो गया, वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, वो अपने फालतू सोचने की कोशिश करता है कि माँ को दूध नहीं हो रहा, कम हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, लेकिन माँ को दूध पर्याप्त होता है। हर माँ को, जिस माँ के 2 बच्चे होते हैं उसको, उस माँ को 2 बच्चे के हिसाब से दूध होता है
2: जी।
0: और जब बच्चे का जैसे शुरू का दूध अलग होता है तो बोलते हैं कि शुरू के 7-8 दिन जो दूध होता है वो अलग होता है
2: जी।
0: और शुरू के 2-3 दिन बिल्कुल दूध अलग होता है, जिसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं
2: जी।
0: और बच्चा जब 15 दिन को जाता है तो वो दूध अलग हो जाता है।
2: अच्छा।
0: तो वो हर दिन के हिसाब से दूध का क्वालिटी बदलती जाती है, उसमें प्रोटीन कंटेंट, मिनरल कंटेंट, वो सब चेंज होते जाते हैं
2: बच्चे की आवश्यकता के अनुसार।
0: जो प्रीमेच्योर

0: प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि उनको ग्रोथ करनी होती है, उनको विकसित होना होता है।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चूंकि अभी भी बातें बहुत सी ऐसी हैं जो कि हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते थे, लेकिन समय सीमा हमारे सामने है, फिर भी हम चाहेंगे आज के रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के माध्यम से कोई खास संदेश, हालांकि कई ऐसे संदेश हैं जो हमारे श्रोताओं को आज जरूर मिले होंगे, फिर भी आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे?
0: देखिए, मैं कहना

0: जनते क्या कहना चाहेंगे हमारे?
1: देखिए, मैं कहना चाहूंगा, एक तो जब भी कोई जो प्लानिंग हो आपकी गर्भ धारण करने की, तो इट शुड नॉट बी एक्सीडेंटल।
0: अच्छा।
1: ये नहीं कि साहब माँ गर्भ धारण कर लिया मैंने, आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। माता पिता दोनों को डॉक्टर से अपने मिलके प्लान करके बच्चे को आप लाएं दुनिया में। दूसरी चीज, माँ का रेगुलर चेकअप कराएं, अपने लेडी डॉक्टर को समय समय पर जब जब आपको बुलाए, माँ को समय से टीके लगवाए, माँ का ब्लड प्रेशर, माँ की यूरिन, माँ की शुगर, माँ का थायराइड और जो भी आवश्यक हो वो जांच कराए, है ना। फिर उसके बाद उसका जो जन्म है वो एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन तुरंत मिल जाए। बच्चा अगर प्रीमेच्योर पैदा होने का अंदेशा है तो माँ को स्टेरॉइड कोर्स के हिसाब से लगना चाहिए, बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन। और बच्चा अगर प्रीमेच्योर पैदा हो गया है, उसके बाद उसे देखभाल ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे उसे प्रॉपर उचित देखभाल मिल सके। सिर्फ नर्सरी में रख देने से किसी बच्चे की परवरिश नहीं होती, उस बच्चे को क्या दिया जा रहा है, और उसको जब हम बचा के दे रहे हैं तो उसका सर्वाइवल इंटैक्ट है या नहीं, उसको हम बच्चा अगर जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी कोई विकलांगता नहीं होनी चाहिए, बच्चा हमारी कान सही होना चाहिए, उसकी हियरिंग सुनने की क्षमता ठीक होनी चाहिए, उसकी देखने की क्षमता ठीक होनी चाहिए, उसका IQ सही होना चाहिए, वो फिजिकली मेंटली बिल्कुल फिट होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि आप एक ऐसी जगह एक ऐसे सेंटर पे इलाज कराएं जहाँ पे सारी सुविधाएं हों। आप अगर ये सोच के कि नर्सरी में हमने बच्चा रख दिया, सब जगह नर्सरी एक सी है, सब जगह एक सा इलाज होता है, ये गलत एक धारणा है, इस धारणा से बचें। तो और हर बच्चे को शुरू के 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, समय से उसको टीके लगवाएं और उसकी सफाई का ध्यान रखें, और कोई घर में अगर किसी को खांसी बुखार है वो बच्चे से दूर रहे,
0: बना के रखे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम शिक्षित हैं तो हमें शिक्षित होने का प्रमाण भी देना चाहिए। जो बातें आपने बताई हैं, अगर हमारे श्रोता ध्यान रखते हैं तो उनके नवजात शिशु एक अच्छे युवा, हम ये कहेंगे कि
1: देश के लिए एक अच्छे नागरिक,
0: देश के लिए अच्छे नागरिक बन करके आगे आएंगे,
1: और माँ का दूध पिलाएं तो 2-4 आइंस्टीन भी पैदा होंगे देश में।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता के विषय में विस्तृत जानकारी दी। स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार पांडे जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
2: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
3: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
2: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
3: सांस नियंत्रण के लिए CPAP वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें,
2: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
3: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
2: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM, बेड साइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
3: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD,
3: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
2: गंगवार हॉस्पिटल,
3: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
4: शुक्रम, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन, विषय था आज समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्रीटर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर अन्य मशीनों की भूमिका। मेहमान थे डॉक्टर कुलदीप गंगवार, आपसे बातचीत कर रहे थे मोजमर पांडे। हम अब जोड़ रहे हैं आपको आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
5: विचार और सामाजिक सरोकार के साहित्यकार पद्मनारायण राय को हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा में अनेक ऐसे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को दिशा दी है। इन्हीं साहित्यकारों में पद्मनारायण राय का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। वो केवल लेखक नहीं थे बल्कि एक सजग चिंतक, संवेदनशील नागरिक और समाज के प्रति उत्तरदायी साहित्यकार थे। पद्मनारायण राय का व्यक्तित्व सादगी, विचारशीलता और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण था। उनका जीवन अनुभवों से भरा हुआ था और यही अनुभव उनकी रचनाओं की आत्मा बने। वो मानते थे कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करना और मनुष्य को मनुष्य के करीब लाना है। उनका स्वभाव सहज, सौम्य और विनम्र था। वो जीवन के छोटी छोटी घटनाओं में भी गहरे अर्थ खोज लेते थे। यही जीवन दृष्टि उनके साहित्य को विशेष बनाती है। पद्मनारायण राय ने हिंदी साहित्य में अपनी लेखनी के माध्यम से सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदनाओं

नैतिक मूल्यों को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में आम जन जीवन की पीड़ा, संघर्ष, आशा और विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और भाव प्रधान है। वो अलंकारिकता और शब्दाडंबर से दूर रहकर भाव की सच्चाई को प्राथमिकता देते हैं। उनके लेखन में कृत्रिमता नहीं बल्कि जीवन के स्वाभाविक अनुभूति दिखाई देती है। पद्मनारायण की रचनाओं की प्रमुख विशेषता है सामाजिक चेतना, मानवीय संवेदना, सरल और प्रभावशाली भाषा, जीवन के यथार्थ से गहरा जुड़ाव। वो समाज की विसंगतियों पर चुप नहीं रहते थे। उनके लेखन में अन्याय, असमानता और संवेदनहीनता के प्रति मौन विरोध दिखाई देता है, लेकिन ये विरोध कटु नहीं बल्कि विचारोत्तेजक होता है। हिंदी साहित्य में पद्मनारायण राय का स्थान एक ऐसे लेखक के रूप में सुरक्षित है जिसने साहित्य को जनसामान्य से जोड़ा। उनका लेखन पाठक को सोचने पर विवश करता है और आत्ममंथन की ओर प्रेरित करता है। उन्होंने साहित्य को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे जीवन की धड़कनों से जोड़ा। पद्मनारायण राय केवल लेखक नहीं थे, वो संवेदनाओं के सजग प्रहरी थे। उन्होंने शब्दों को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बनाया बल्कि उन्हें समाज की पीड़ा, संघर्ष और आशा की आवाज दी। उनकी रचनाओं में मानवता की सच्ची पुकार सुनाई देती है। पद्मनारायण राय का साहित्य आज भी प्रासंगिक है क्योंकि उसमें मानवता की आवाज है। वो उन रचनाकारों में से हैं जिनकी लेखनी समय के साथ और अधिक अर्थपूर्ण होती जाती है। उनका जीवन और साहित्य हमें ये सिखाता है कि सच्चा साहित्य वही है जो मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने की प्रेरणा दे। पद्मनारायण राय हिंदी साहित्य की उस परंपरा के प्रतिनिधि हैं जहां शब्द केवल शब्द नहीं रहते बल्कि समाज का दर्पण बन जाते हैं।

0: पद्मनारायण राय की लेखनी, उनके विचार और उनकी संवेदनाएं सदैव हमारे साथ रहेंगी। वो शब्दों में नहीं, हमारे चेतना में जीवित हैं। समय और संवेदना के रचनाकार पद्मनारायण राय। अभी आप यह विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। अब इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का यह अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बस यही कहता है कार्यक्रम नई उड़ान। सुनिए हर रोज शाम 5:45 से 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो।
2: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़, न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
3: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गजलें। कलाकार हैं प्रतीक्षा मिश्रा।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रतीक्षा मिश्रा की आवाज में गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडिया वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक एस जे पी जी आई एम एस और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम

इस कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के गीत सुने उनके नाम हैं फूल बने अंगारे, माई लव और उम्र कैद, और आवाज़ थी मुकेश की। इसी के साथ चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय

0: को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। शर्मिली फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: हम दोनों फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, जयदेव का संगीत था।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का। लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल और आज के फनकार हैं इनके बेटे जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

विकी कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विकी कौशल को फिल्मों का माहौल गुट्टी में मिला था।

विकी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल, जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक

थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और इसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाए। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

0: वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।
1: खो गए हैं दिन जो वो कहां है।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में

उनकी सह कलाकार थीं भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज

0: प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबळे।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।

0: गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
1: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
0: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गीतों की महफिल सजेगी, हम साथ साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, मेरी बातों के संग महसूस करेंगे प्यार का एहसास। रेशमी चुनर से ढका तेरा चांद सा चेहरा, न जाने कब से तेरे दीदार की ख्वाहिश लिए बैठा हूँ। काश हवाओं का एक झोंका एक पल को चुनर हटा दे, तो जरा मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए।
1: Kumar grew up has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gaurav has been honored with more than 200 awards worldwide.

0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरो अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पियासे, द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: That was राग दुर्गा। Now you will listen to राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: दैट वॉज राग अभोगी विद दैट

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले

0: जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashvani, the ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister